0: अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है। पहला इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है। वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90-95% रखी जाती है, जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है। नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज़ के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है। तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से, कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है। और

0: आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता आकलन करने की क्षमता ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए जितना भी दुनिया तरक्की कर ले लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं जवाब देता है,
1: उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
0: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो AI जब कदम रख रहा था तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझें, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी, इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एलनीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके ज़रिए आपको मौसम की के जो मिजाज हैं उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं।

0: है कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ के क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
1: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है, उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, AI से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और ट्रिपल IT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड

0: करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पे आप जाएं, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है, डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद

0: सकता है।
1: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सबको जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा, और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाए।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
1: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है, बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है, या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, चूँकि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियाँ जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
0: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है।

0: इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
1: देखिए, एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है, इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं।

0: टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाए, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में AI को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर AI के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहे, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से AI का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप AI का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास AI का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी AI के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं, तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप AI वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए AI से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो, लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में एआई की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में एआई के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि एआई किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह एआई का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने, निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो एआई एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में एआई एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो एआई है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में एआई का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि एआई का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब एआई बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो एआई स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो एआई जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए एआई नया है, तो उनके बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। एआई जॉब खा जाएगा, एआई हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो एआई इसका एक नया वर्जन है, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि एआई को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन ना समझें, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी।

0: इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीजों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था, पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में, अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
1: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, AI से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।

0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, मतलब और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल संस्मरण लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और जरूरत

0: पड़ने पे ही सिंचाई करें। ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें। लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं, वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है, और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है, वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है, और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है, और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें, ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि AI से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टीलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो AI कंट्रोल कर लेगा, और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब AI मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी AI कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए AI अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उस

0: का मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, चूँकि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पे होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियाँ भी होती है, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती है उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते कि जो 1700

0: 57 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहां पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहां 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा। यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया। यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उससे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई की एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है।

0: और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई। आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओ। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं।

0: जी।
1: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है।
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
1: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी,
1: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
0: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और

0: शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती
0: हैं।
1: जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
0: जी।
1: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी।
1: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
0: जी।
1: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
0: तो आराम कर लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
0: जी हाँ जी।
1: तो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
0: जी, जी।
1: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
0: जी,
1: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।

0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
0: मनोबल
1: बढ़ता है
0: जी।
1: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
0: तालमेल
1: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है
0: जी।
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार
0: जी,
1: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
0: जी,
1: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए,

0: कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना।
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करने और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना।
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाए टाइम टेबल, हम एक बनाए उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-4-4-8-4-4-0-6-3-2 8-4-4-8-4-4-0-6-3-2 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-4-4-1-6 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थी इसका अधिक

0: अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
5: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूँकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं। इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
4: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
5: जी जी।
4: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
5: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और

0: अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहां कहां खेती होती है, कहां कहां इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में भी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंदनाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति kg बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति kg बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम प्रति केजी 20 दर से, ये भी

0: बंगमारी से, बंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती, तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है। एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से। एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे। ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1-1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है, तुड़ाई के बाद भुट्टो को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बा

0: भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहां हम जिस मंडी में पहुंचाएं या जहां भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवर की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबीकॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहुउपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
2: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुउपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
2: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून

0: इनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हाँ इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है रोग के कारक है वो सभी एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं पैथोजन है उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है
0: जी।
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर एक किलो बीज है तो एक किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर, फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है, फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम

0: बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसे बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति है कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से जो नवीन तकनीक है इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप

0: के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
1: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
0: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहां से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण के तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार

0: के उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ही है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है। उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम, आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का, जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज। और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं, तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं, हम प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे

0: मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया, ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगे?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा. दोस्तों आपका स्वागत है विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. इस साल का बजट पेश हो चुका है और बजट में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीजें थी. कुछ चीजें फायदेमंद रही और कुछ चीजें जिस पर विचार किया जा सकता है. लेकिन किसानों के लिए क्या है, खेती गृहस्थी इस बार बजट में किस स्थान पर रही है और खेती गृहस्थी को कितना तवज्जो दिया गया है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे. और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर. आप हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैम. सभी श्रोताओं को नमस्कार. और जैसे मैडम ने बताया, जो हर साल हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट पास करते हैं, जो पूरे साल भर जो कितना हमारा किस विभाग में कितना खर्चा करना है, उसमें से जो बिहार जैसे देश स्तर पे देखा जाए तो भारत, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को हमेशा ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है. और ये कुछ ऐसे सेक्टर है जो कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाता है.
0: बिल्कुल.
1: उसमें इस बार जो 2026-27 में जो केंद्रीय बजट पास हुआ है उसमें कृषि एवं उससे रिलेटेड जो क्षेत्र है, संबंध क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछले साल के अपेक्षा 7% अधिक है इस बार जी. और उसमें जो कुछ विशेष बातों को जो इस बार ध्यान दिया गया है, उसमें जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो जिसको हम ऐसे कृषि मंत्रालय बोलते हैं, उसका जो बजट 1.07 लाख करोड़ है और जो पिछली जो थी वो पिछले से 5.3% की ज़्यादा वृद्धि हुई. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में इस बार 9% की वृद्धि की गई.
0: तो अच्छी बात है.
1: हाँ, जो कि पहले बहुत कम था, इस बार 9% की वृद्धि के साथ इस बार 10,797 करोड़ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को दिया गया. और जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हम लोग जैसे कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और जो हम लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है जो कृषि शिक्षा का भी इसमें उत्थान होगा और किसानों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा. उसके बाद जो कृषि बुनियादी ढांचा कोष है, जो अलग से एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसमें रोड है कि वेयर हाउसेस है, अलग अलग फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि बुनियादी ढांचा के लिए इस बार 1.64 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. उसमें जैसे आप कुछ विगत वर्षों में देखिए तो हमारे बिहार में भी जहाँ फसलें नहीं होती थी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण से, जैसे मक्के का जो संग्रहण के लिए स्टोरेज के लिए जो सरकार ने उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया, उसके कारण से काफ़ी किसानों को लाभ मिला है और बहुत ज़्यादा मक्के का वृद्धि मतलब उत्पादन में वृद्धि देखा गया है. और जो कृषि क्रेडिट है, मतलब कृषि क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चर में जो लोन, इस बार 25 लाख करोड़ कर दिया गया, जो इस बार स्पेशली एग्रीकल्चर लोन, जो क्रॉप लोन जो खेती के लिए दिया जाएगा वो 25 लाख करोड़ है. फिर कुछ आजकल नए नए खेती में जो कृषि में व्यवसाय के लिए काफ़ी भारत सरकार और बिहार सरकार नए नए व्यवसाय के लिए प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को, और किसान जो परंपरागत ढंग से खेती कर रहे हैं उनको भी काफ़ी स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उसके लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 नए स्टार्टअप्स केंद्र सरकार ने तय किया है, जो नए 5,000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रेरित और गठित किया जाएगी. उसमें आगे जो है नेशनल मिशन जो नेचुरल फार्मिंग पर काफ़ी जोर दी जा रही है, कुछ राज्य पहले से नेचुरल फार्मिंग कर रही है और अभी जो है बिहार सरकार और भारत सरकार पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती पे जोर दे रही है, जिसके लिए इस बार 600 करोड़ आवंटित की गई है. फिर आजकल आप देखिए सब कुछ कंप्यूटराइज होते जा रही है, आप खेती में अब रोबोट से आप फर्टिलाइजर या मतलब खाद जो रसायन हम

0: डालते हैं, छिड़काव करते हैं, वो आप रोबोट से कर सकते हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए, उसके लिए नया एक मतलब एक नया विभाग बनाया गया, जिसको डिजिटल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई, जिसमें 100 नए प्रयोगशाला बनाए जाएंगे। उसमें 1,00,000 KCC को जोड़ा जाएगा, जो किसान कॉल सेंटर्स है उनको इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें किसान कॉल सेंटर से आप लोग जो भी किसान भाई बंधु हैं आप अगर सुन रहे होंगे तो आपको किसान कॉल सेंटर जो है उसमें टॉल फ्री होता है। आप सभी के पास फोन है, आप कभी भी उसमें आप ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो डायरेक्ट बात भी हो जाएगी कोई भी जानकारी चाहिए तो। और अगर कभी भी शाम के बाद आप कॉल करते हैं तो आप कॉल आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपको जो भी समस्या है, कल बारिश की क्या संभावनाएं हैं, कितना बीज डालना चाहिए, क्या दाम है अभी मार्केट में, इस तरह की सारी जानकारी। इसके लिए आप चाहे तो नंबर नोट कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है, आप किसी भी नंबर से अपने मोबाइल से फोन करेंगे तो इस पर कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। 1800 180 1551, एक बार और आप सुन नोट कर लीजिए, 1800 180 1551, इसको 1800 180 1551, ये किसान कॉल सेंटर का फ्री नंबर है, जिसके लिए इस बार और भारत सरकार इस पे जोर दे रही है। आप कभी भी कहीं से भी कॉल करके किसी भी फसल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, खेती से संबंधित और मार्केट से संबंधित कोई भी। फिर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा स्कीम है, जिसमें 6,000 रुपया सभी किसान भाइयों को दिया जाता है साल में 2,000 के 3 बार, वो इस बजट में भी जारी रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 100% प्रीमियम सब्सिडी छोटे किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनको 100% प्रीमियम छूट दी जाएगी। उसके बाद मिलेट मिशन, जो पहले जो जिसको मोटे अनाज या श्री अन्न बोलते हैं, उसके लिए 2025-26 में बढ़ावा देने के लिए और सरकार आगे और प्रेरित कर रही हैं। उसके लिए राष्ट्रीय चावल सुरक्षा मिशन इस बार अलग से एक जो लागू किया गया, लॉन्च किया गया, उसमें 1.95 करोड़ हेक्टेयर इसके अंतर्गत कवर करना है, राष्ट्रीय चावल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। फिर एक है कृषि अवसंरचना कोष, इसमें 1,00,000 करोड़ दिया गया है। फिर राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2 करोड़ किसानों को जोड़ना है, सहकारी संघ जिसको कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाना है, उसमें 2 करोड़ किसानों को जोड़ना है। फिर उसके बाद है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत लोग जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे खेत में खाद डालते हैं, रसायन डालते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके खेत में कितना, उसमें ज़रूरत कितना है। हो सकता है जो आप यूरिया डालते हैं और उसमें पहले से ही यूरिया और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो अगर आप डालेंगे तो उल्टा वो मिट्टी के लिए और पौधे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक साबित होगा। तो इससे अच्छा क्या है, पहले आप मृदा जाँच करवाएं, उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं। इस बार 25 करोड़ कार्ड, नए कार्ड वितरण किए जाएंगे। ये जो ये कुछ नए स्कीम्स और पुराने स्कीम्स को जो और विकसित किया गया है, ये कुछ मूल जो केंद्र बिंदु रहा इस बार और इस पे जोर दी गई। ये पहल किसानों की आय दुगुना करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और टिकाऊ खेती, जैसे टिकाऊ खेती मतलब उनको आमदनी बराबर बनी रहे, जैसे एक फसल से आमदनी कम हुआ तो दूसरे फसल से, तो इस तरह से एक सम्यक स्कीम और इस तरह से ध्यान रखा गया है जिससे किसानों की आमदनी बढ़े।
1: इसके अलावा और क्या क्या है हमारे बजट में?
0: हाँ, इसके अलावा जो है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग है, जो ICAR जिसको बोलते हैं, और देखिए हमारे विश्वविद्यालय में भी ICAR आने वाली भी है। हाँ। तो उस वो पहले भी जैसे बताया, उसके लिए अनुसंधान पे जोर, जिसमें बिहार जैसे राज्यों के लिए मृदा मानचित्र एवं जलवायु अनुकूल फसलें, जैसे आप सभी को मैं बता दूँ, बिहार और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ये पूरे भारतवर्ष में पहली विश्वविद्यालय है जिसको भारत सरकार ने 62 करोड़ रुपए की एक योजना

0: मानचित्र बनाए जाएंगे, सैटेलाइट से उसके फोटो और सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे। फिर उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर भी इस बार 1.71 लाख करोड़ किसानों को, इतना मतलब इतना रुपया, 1.71 लाख करोड़ रुपया किसानों को सस्ती खाद सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने दिया है, जो जिससे मतलब जो कंपनी बनाती उनको दिया है, जिससे खाद की दाम कम किया जाए। फिर कृषि क्रेडिट में, जैसे पहले भी मैं बताया, जो 25 लाख करोड़ रुपया इस बार छोटे किसानों को केसीसी, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके अंतर्गत दिया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नई पहलें और जो मिशन है उसमें भारत विस्तार, भारत विस्तार एक मिशन है जिसमें बहुभाषी एआई टूल, मतलब अगर आपको भोजपुरी आप बोलते हैं या आप मैथिली बोलते हैं, या यहाँ पर अपने यहाँ भागलपुर में अंगिका बोला जाता है, तो किसान जिस भाषा में वो मतलब कंफर्टेबल हैं उससे बात कर सकते हैं। इसमें एआई टूल होगा और किसान उससे बात कर सकते हैं। उसमें है एग्री स्टैक और आईसीआर के एक मतलब एकीकृत प्रयास से इस तरह का एआई टूल बनाया गया है, जो उसके लिए 150 करोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद है कुछ विशेष फसलें हैं जिनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था की गई, जैसे तटीय पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तटीय मतलब जो समुद्री इलाके हैं, कुछ पूर्वोत्तर जो हम लोग जहां आते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई। पहाड़ी एरिया के लिए जैसे हिमाचल और उत्तराखंड, उस सब के लिए। तो जैसे उसमें मुख्य फसल जो है नारियल, काजू, कोकोवा जिसे चॉकलेट बनता है, चंदन, बादाम, अखरोट, इन सब के लिए अलग से परियोजना लाई गई, जिसके इन सब फसल का उत्पादकता बढ़े और उत्पादन बढ़े। उसमें नारियल संवर्धन योजना, पुराने पेड़ों को उच्च उपज वाली किस्मों से प्रतिस्थापित कर रही। मतलब उसमें क्या, जैसे कुछ जैसे आम में भी होता है, हाँ, पेड़ अगर
1: पुराने
0: हो गए तो उसमें फसल कमी होती जा रही है, तो उनको काटने के लिए और मतलब उनको वहां से हटा के उच्च और ज्यादा उत्पादकता वाली वेराइटी वहाँ लगाई जाएगी। ये जो है नारियल के लिए विशेष कर दिया गया। फिर प्राकृतिक खेती मिशन के लिए भी, जैसे मैं बताया था, इस बार 750 करोड़ रुपया दी गई, जो इससे रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहन मिलेगी। फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पिछले साल सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ सीधे किसान को सहायता दी जाएगी।
1: अच्छा
0: जी, उसमें उसके बाद जैसे पशुपालन एवं मत्स्य पालन में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, दूध के लिए आधुनिकीकरण, एफपीओ की वैल्यू चेन शामिल, ये सब जो है विशेष महत्व मतलब इस बार जोर दिया गया। और अगर बिहार की बात करें, उसके लिए इस बार जो बजट में 50% अनुदान से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मखाना, उसमें मखाना भी होगा, जिसके लिए बिहार सरकार को 11,440 करोड़ आवंटन दिया गया है। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बाजार उत्पादों मृदा मानचित्र के लिए 60 करोड़ जैसे मैंने बताया था, और स्टार्टअप जैसे सब एग्री से जोड़ता है इसके लिए, जिससे क्या होगा, ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा और सिंचाई पर अतिरिक्त फोकस भी इस बार दिया गया है, जिससे ये मानते हैं और ऐसा हमारा विश्वास है, जिससे और किसान को लाभ होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी और देश की जो ओवरऑल जो उत्पादकता है और उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। धन्यवाद।
1: तो आपने बजट को बहुत अच्छे से समझाया कि साल 2026 के बजट में क्या कुछ किसानों के लिए नया है और क्या जो चला आ रहा है उसे और जारी रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाई बहनों को बजट के बारे में सरल भाषा में समझाया, शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद।
1: आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में. किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है. इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए. आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से. मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार.
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
1: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है. तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं. एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं. एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं. उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं. और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की. तो ये कुछ तकनीकें होती हैं. अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं.
0: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए.
1: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं. तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है. एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है. सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं, और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं. तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे. तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं. और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं. वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं. और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की. अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं. तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं. और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर. तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है. जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं. जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में. दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि. तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं, तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20

0: से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़े काफी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो, और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डेपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डेपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपॉग नर्सरी से वो काफ़ी

0: बच्चे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25 मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20-25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1-2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10-14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं, भी जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3-5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2-5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी

0: होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुवाई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है, अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली तीन तरीके की होती है, एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे एक से एक 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग, मतलब जो जूट के बैग होते हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे, 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डिपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डिपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, अभी मौसम चल रहा है जब हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो कर चुके हैं, लेकिन कई सारे किसान भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि पानी की समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमें सीधी बुआई करनी चाहिए। सीधी बुआई क्या है, किन बातों का इस दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर SS आचार्य सर, हैं सस्य विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू
0: सर। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सीधी बुआई, जिसे कि DSR भी कहते हैं, वो क्या है।
1: अगर सीधी बुआई के बारे में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जो धान लगाते थे, जो धान की खेती करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले नर्सरी तैयार करते थे, फिर पौधे की रोपाई करते थे और खेत को कीचड़ युक्त करके उसके बाद रोपाई करते थे। इसमें क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धान की रोपाई, ठीक। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आज आप लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं है, बारिश की बहुत कमी है। अगर देखा जाएगा बिहार में 40-50% अभी तक बारिश हुई है, तो इसीलिए कम पानी अगर है तो आप फील्ड को कीचड़ कैसे कीजिएगा। तो कीचड़ करने के लिए तो आपको तो पानी चाहिए, आइदर आपके पास सिंचाई के साधन हो, नहीं तो बारिश हो। तो ये दोनों जब नहीं है तो आप फील्ड में अगर धान लगाना चाहते हैं तो आपका एक नया टेक्नोलॉजी जो हुआ कि सीधी बुआई, उसको आप लोग कर सकते हैं। इसको अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये है पानी को बचाएगा, मजदूरी की जो लागत है उसको घटाएगा और फिर अच्छा उपज देने के लिए भी मदद कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीधी बुआई, कि मतलब बिना जो कि फील्ड प्रिपरेशन, जैसे कि कीचड़ युक्त नहीं करके, अगर डायरेक्टली हम ट्रैक्टर चला के, जब मानसून आने से पहले हम फील्ड में ट्रैक्टर चलाएंगे, जैसे गेहूं की बुआई जैसे करते हैं, सेम स्टाइल में हम लोग धान का बुआई करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि मानसून आने से पहले, जब अभी तक भी मानसून ठीक से आया नहीं अभी तक, तो जब फील्ड में हल्का सा नमी हो या नमी भी ना हो, इसी समय में हम लोग फील्ड में जुताई करेंगे, 2-3 बार जुताई करेंगे। ऐसे जुताई करेंगे कि 2-3 बार के बाद, जैसे कि अगर जब हम धान का सीड वहाँ पर बुआई कर रहे हैं, तो सीड और जो मिट्टी, उसके साथ मिट्टी के साथ सीड पूरा एकदम मिल जाए, पूरा कॉन्टैक्ट में आ जाए, और जिसके बाद जब बारिश होगा तब क्या होगा, उसमें से अंकुरण निकलेगा और उसमें से जो धान का पौधा निकलेगा उसको हम बोलेंगे सीधी बुआई।
0: तो सीधी बुआई के और क्या क्या फायदे होते हैं,
1: पहले हम लोग अगर देखेंगे सीधी बुआई, पहले मैं अभी बोल चुका हूं कि खेत को पहले ठीक से तैयार करना है। जब तैयार करना है उसमें पहला जो फायदा है कि पानी कम लगेगा, कम पानी, मतलब अगर आप देखिएगा कि एक फील्ड को पडलिंग या जो कीचड़ युक्त करने के लिए 200 से 250 मिलीमीटर का जो पानी है उतना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। वो पानी अगर 2-3 दिन में बारिश होगा, जोर से ढेर से बारिश होगा, तब जाके हो सकता है, नहीं तो आपको उतना पानी देना पड़ेगा, तब जाके आप फील्ड को ट्रैक्टर रोटावेटर पानी भर के, उसके बाद ट्रैक्टर रोटावेटर चला के फील्ड को कीचड़ युक्त करेंगे, उसके बाद जाके रोपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको कुछ भी पानी का जरूरत ही नहीं है, सूखा में आप धान का बुआई कीजिएगा। और वहाँ पर क्या होगा ना, आप जब सूखा में बुआई कर रहे हैं तो आप जब बारिश होगा, बारिश होने के बाद आपका धान का जो अंकुरण हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत पानी को बचा लिए। और एक चीज हुआ, और एक फायदा हुआ, जो कि धान में, धान का रोपाई के लिए बहुत सारे लेबर लगते हैं। अगर देखा जाएगा 1 एकड़ में 15-20 लेबर आपको लगाना पड़ेगा धान का रोपाई के लिए, प्लस 250 मिलीमीटर रेनफॉल का या इरिगेशन चाहिए। तो ये दोनों से बच जाएगा अगर आप सीधी बुआई किए तो।
0: तो सर, सीधी बुआई कब करनी चाहिए किसान भाई बहन?
1: अगर सीधी बुआई का सही समय देखें तो मानसून आने का 7-10 दिन पहले,

0: क्यों? क्योंकि अगर मानसून एक बार फुल फेज में आ गया, पानी भर जाएगा फील्ड में और सीधी बुआई नहीं हो पाएगा। इसलिए जब फील्ड सूखा है या फील्ड में आप जानते हैं कि 7 दिन के बाद मेरा बारिश होने वाला है, बारिश का तो फोरकास्टिंग हो जाता है, उसी समय आप फील्ड को तैयार करके बुआई कर दीजिए। अगर 2 दिन 3 दिन ऐसे फील्ड में सूखा रहा, नो प्रॉब्लम, उसमें जब बारिश होगा उसके बाद वहाँ से वो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होके पौधा बड़ा होगा और वहाँ पर इसीलिए सबसे बोला जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 10 दिन पहले। तो जैसे कि बारिश होने के समय उसका जड़ मजबूत हो जाना चाहिए मिट्टी में, तब दैट इज द राइट टाइम।
1: जी सर। सर आप एक बार हमें विस्तार से बता दीजिए कि किस प्रकार से कैसे सीधी बुआई करनी चाहिए।
0: पहला है कि सीधी बुआई अगर देखेंगे, मैं जुताई के बारे में बोलूंगा। जुताई 2 टाइप का है, एक है कन्वेंशनल जुताई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि परंपरागत जुताई, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को गेहूं के टाइम में जैसे हम लोग खेत को तैयार करते हैं उसी तरफ हम लोग धान का खेत को भी तैयार करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको बढ़िया करके रोटावेटर चला के इसको उसके बाद यहाँ पर हम लोग धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। और एक हुआ, अगर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, जो कि शून्य जुताई या जीरो टीलेज। आपको पहले आपका फील्ड में तो घास या खरपतवार तो होगा ही, तो 10 से 15 दिन पहले आपको जो ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट हो सकता है नहीं तो पैराक्वाट है, वहाँ पर अप्लाई कर देना है, वहाँ पर स्प्रे कर देना है। 15-20 दिन पहले अगर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा तो आप पूरा फील्ड घास मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा बारिश या थोड़ा सा जब बारिश होगा या बारिश नहीं भी होगा तो उसी समय आप डायरेक्टली हम लोगों का जो सीड ड्रिल हम लोग बोलते हैं उसी में आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जुताई का। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिजाई का समय हम बोल दिए हैं 7 से 10 दिन पहले। इसके बाद हो गया कि अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे बुआई करें, तो हम लोगों का जो सीड है या बीज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे गहराई में रहना चाहिए और उसके ऊपर एक मिट्टी थोड़ा अगर हम लोग दे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा ना, वो जो जड़ है, जड़ अंदर में मजबूत रहेगा, चिड़िया भी खाएगा नहीं और आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। दूसरा चीज हुआ कि हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग बोलते हैं पंक्ति में शक्ति, मतलब कि अगर हम लोग लाइन सोइंग करेंगे तो लाइन में बुआई करेंगे तो वो और अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो लाइन से लाइन या जो पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी में हम लोग अगर बुआई करेंगे, और जो अगर पौधा से पौधा देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर, हम लोग ऐसे रोपाई के टाइम में हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग लेते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्पेसिंग अगर लेंगे तो वही हमारा सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि बीज, किसी भी बीज हो, बीज को हम लोग उपचार कर लेना चाहिए, बीज को हम लोग बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज को शोधन कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बेंडाजिम हो या थीराम हो, कैप्टन हो, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति एकड़ प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिला के उसके बाद अगर बुआई करेंगे तो वहाँ पर रोग आने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि धान में बहुत तरह का रोग आते हैं। तो उसको अगर हम लोग बीज को शोधन करेंगे या बीज को उपचार करेंगे तो हमारा वहां पर रोग आने का चांसेस कम रहेगा।
1: सर, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या उपाय करने चाहिए?
0: जो हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, मतलब हम लोगों का खाद, सीधी भाषा में बोलेंगे तो हम लोगों का खाद कब देना है, कितना देना है, उसके बारे में बोलेंगे तो शुरू में धान का जब बुआई करेंगे उसी समय हम लोग खाद देंगे नहीं, उसका 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद हम लोग खाद देंगे। तब क्या करेंगे कि हम लोगों का अगर देखा जाएगा तो 1 हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, 1 हेक्टर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। ठीक, 120 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, इतना ही अगर हम लोग देंगे तो हम लोगों का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और इसमें अगर देखेंगे पूरा फास्फोरस और पटास

0: विकास को हम लोग शुरू में जो कि हम लोग बोलते हैं आधार खाद, बा जब हम लोग जो 10 से 14 दिन में बोला उसी समय हम लोग दे देंगे, थोड़ा जब उसका जड़ बन गया है उसी समय हम लोग उसको देंगे। और नाइट्रोजन को अगर देखेंगे बा नेत्रजन को अगर देखेंगे 120 किलो से 60 किलो नाइट्रोजन, मतलब कि 50% को हम लोग 10 से 14 दिन के अंदर में देंगे, बाकी जो 50% बचा उसको अगेन दो भाग करेंगे, एक करेंगे जब टीलरिंग आ रहा है, जो जब उसका जो जो उसका जो कल्ले निकल रहे हैं और जो बाली जब निकल रहा है उसी समय, ये दो टाइम उसका सबसे संग माने पोषक तत्व के लिए संकट समय है, उसी समय अगर हम उसको आप देंगे खाद को छिड़काव करेंगे तो वो हमारा उपज ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि फॉस्फोरस पोटास को आधार खाद और 50% नाइट्रोजन, मतलब कि 60 kg नाइट्रोजन आपका आधार खाद, और जो बाकी 50% या 60 किलो बचा उसको दो भाग में भाग करके आधा देंगे कल्ले निकलने के समय और आधा देंगे बाली निकलने के समय, ऐसे अगर देंगे तो हमारा अच्छा उपज हो सकता है।
1: और अगर खरपतवार नियंत्रित करने की बात करें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं?
0: ये एक फसल है, इसमें खरपतवार इतना होगा, बहुत सारे खरपतवार होंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग सीधी बुआई किए हैं, जैसे कि धान को मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए, खरपतवार को भी मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए। रोपाई का एक प्लस पॉइंट है कि रोपाई के समय जब हम कीचड़ कर देते हैं पूरा फील्ड को, तब क्या होता है खरपतवार ऐसे ही नियंत्रण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण इसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों को एक से दो बार हाथ से निकाल देना है, लेबर लगा के निकाल देना है, नहीं तो मैं कुछ दवाई का बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो जो दवाई है बिस्पेरीबैक सोडियम, याद रखिएगा बिस्पेरीबैक सोडियम, जो कि बाजार में बहुत सारे नाम में आता है, एक नाम है नोमिनी गोल्ड। सो बिस्पेरीबैक सोडियम को अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ 250 ml, एक हेक्टर के लिए 250 ml, और याद रखिएगा 500 लीटर पानी चाहिए, एक हेक्टर के लिए 500 से 600 लीटर तक पानी चाहिए, उसमें अगर 250 ml अगर हम देंगे तो छिड़काव करेंगे, कब छिड़काव करेंगे 20 से 25 दिन समय, जिस समय जो खरपतवार है उसका 2 से 3 लीफ स्टेज है, जो पत्ता निकला है उसी समय हम अगर अप्लाई करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण होगा। और कुछ दवाई बोल रहा हूं, एक हुआ साइहालोफॉप ब्यूटाइल प्लस पेनेक्सुलाम, इसको 1000 ml अगर एक एकड़ के लिए 1000 ml और एक हेक्टर के लिए देखिएगा तो 2.5 liter अगर हम अप्लाई करेंगे वही 20 से 25 दिन में तो हमारा खरपतवार भी नियंत्रण हो सकता है। और है अगर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा खरपतवार है तो 2,4-D 1 लीटर पानी में 3 ml करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो पूरा चौड़े पत्ती वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी सकरे पत्ती वाले मरेंगे नहीं, इसीलिए जहां पर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा हैं वहां पर 2,4-D आप जो कि सबसे लो कॉस्ट हर्बिसाइड है उसको दे सकते हैं। और कुछ दवाई बोल रहा हूं, जैसे कि फेनोक्साप्रॉप प्लस इथॉक्सीसल्फुरन, मेटसल्फुरन मिथाइल प्लस क्लोरीमुरन इथाइल, ये सब दवाई भी दिया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है।
1: जी सर, और जल प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे किया जा सकता
0: है? जल प्रबंधन देखिए, ये है धान की सीधी बुआई अगर देखेंगे शुरू में तो पानी बारिश का पानी में ही जब हम बुआई कर दिए, बुआई के बाद 7-8 दिन के बाद जब बारिश होगा उसी पानी में हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको ये जो कल्ले निकलने के समय, जिस समय बोला कि फर्टिलाइजर देने का जो खाद देने का समय था वही समय एक है, और उसके बाद हर 7-8 दिन अंतर अंतर में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा मैंने बारिश नहीं हुआ तब मतलब कि आपको पानी का थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा हम लोग पानी को ऐसे ही करेंगे कि 4 से 5 cm का पानी हर टाइम जैसे फील्ड में बने रहे, तब क्या होगा आपका घास कम निकलेगा, इसीलिए उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग सिंचाई करेंगे तो हमारा अच्छा उपज होगा।

0: और एक चीज बोल रहा हूँ कि रोपाई को, रोपाई में जो 250 mm हम बोले थे कि 250 mm पानी लगता है कि कीचड़ करने के लिए, वो हर लेकिन यहाँ पर पूरा बच गया। इसीलिए यहाँ पर रोपाई के बाद जो कि ट्रांसप्लांटेड राइस में रोपाई के बाद जितना पानी लगेगा यहाँ पर भी उतना पानी लगेगा, लेकिन रोपाई और रोपाई से पहले जो पानी वह यहाँ पर बच जाएगा।
1: जी सर, और अगर हम DSR तकनीक में कुछ नवीनतम तकनीकों के बारे में बात करें तो किन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहन को करना चाहिए?
0: हाँ, देखा जाएगा कि कुछ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम तो कुछ टेक्नोलॉजी जैसे बोले कि ये सीधी बुआई एक ही न्यू टेक्नोलॉजी है, और एक है सीधी बुआई के साथ हम लोग अगर फील्ड में अगर खेत को हम लोग थोड़ा ज़्यादा उर्वर करना चाहते हैं तो, और जहाँ की नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको अगर कम करना चाहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं हरी खाद या भूरी खाद। जैसे कि हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योरिंग, धैंचा एक का धैंचा को अगर हम धान लगाने से पहले, धैंचा को दो टाइप का किया जा सकता है, एक हुआ 45 दिन पहले हम धैंचा को फील्ड में छिड़काव कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ कभी कभी कभी थोड़ा पानी मानसून पानी ये वो करके वहाँ पर वो अच्छा सा उसका उसके लिए भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और वो क्या होगा जब 45 दिन का हो जाएगा उसी समय हम उसी फील्ड में उसी धैंचा को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब कि जुताई कर देंगे, और उसमें से हमको एक अच्छा खासा नाइट्रोजन मिल सकता है। नाइट्रोजन जो कि धान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अगर हम हरी खाद के हिसाब में हम हरी खाद धैंचा को का हरी खाद वहाँ पर उगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को भी बचा सकते हैं। और एक हुआ भूरी खाद जिसको बोलते हैं ब्राउन मैन्योरिंग, वह क्या हुआ कि धान जब हम लोग बुआई कर रहे हैं उसी समय धान के साथ भी और एक जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग धैंचा को ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, मतलब धान का बुआई भी हुआ धैंचा का ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ, उसके बाद क्या होगा तो धान वहां पर निकला और धैंचा भी निकला, तो 25 दिन के बाद, याद रखिएगा 25 दिन से ज्यादा नहीं रखिएगा, यहां पर 25 दिन के बाद हम लोग वहां पर 2,4-D स्प्रे कर देंगे। 2,4-D जो खरपतवार नाशी है उसको अगर स्प्रे करेंगे तो वहां पर क्या होगा पूरा जमीन से का जो धैंचा है वो धैंचा सब मर जाएगा, मतलब उसका जड़ में जो नाइट्रोजन है वो फील्ड में, उसी फील्ड में वो नाइट्रोजन आपको मिल गया। इसलिए वहां पर भी हम लोग 20 से 25 किलो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा हम लोगों को हरी खाद या भूरी खाद के हिसाब में हम लोगों को मिल जाएगा। यही एक टेक्नोलॉजी है। और एक है कि अगर पोषक तत्व में जब हम बोले थे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके साथ और एक पोषक तत्व जो कि हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व, वो है जो जिंक। जिंक मतलब कि जस्ता जो बोलते हैं, उसको अगर हम 20 से 25 किलो पर हेक्टर में अगर हम देंगे तो धान के लिए वो बहुत जरूरी है, और धान का प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हम जिंक अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि जिंक अगर नहीं रहेगा फील्ड में तो जिंक के लिए कुछ एक रोग होता है जिसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, तो वह अब क्या करता है पौधा को कमजोर कर देता है, पौधा बढ़ नहीं पाता है और उपज घट जाता है।
1: जी सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को अगर कुछ बातें कहना चाहें तो क्या कहेंगे?
0: किसान भाइयों, अभी अगर देखेंगे बारिश जैसे कम हुआ है तो इसी समय आप लोग अगर धान का बुआई चाहते हैं तो आप सीधी बुआई कीजिए। तो कैसे, जैसे कि गेहूं को जैसे बुआई करने के लिए जैसे ही फील्ड को प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइप का आपको खेत को बनाना है, उसके बाद लाइन स्विंग करके 20 सेंटीमीटर में लाइन स्विंग करके अगर आप धान का बुआई कीजिएगा तो भी आपका किया जा सकता है।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और जिन तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में सर ने बताया, उन सारी बातों का आप ध्यान रखें और धान की सीधी बुआई करके भी आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। नमस्कार।

0: उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इसे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
2: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है, और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है, और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है, जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों, पेड़ों, बागीचों आदि

0: में छिड़काव करने का काम आता है और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं वो कितने तरीके मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
0: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की औसत शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुरकाव यंत्र के बारे में। ये भुरकाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुरकाव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुरकाव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
0: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुरकाव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
1: जी,
0: भुरकाव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
1: जी,
0: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
1: जी,
0: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं।

0: यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूँकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहों को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहाँ पे भी अलग से हम
1: डाल सकते हैं। जी
0: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है।
1: जी
0: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनके प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
1: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
1: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
1: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
0: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
1: जी।
0: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए, ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
1: जी डब्बे पे भी लिखा होता है, एक उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद

0: इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वाशर कम से कम अपने पास रखें और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा।
1: जी।
0: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
1: जी ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
1: अगर फंस जाए, अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय।
1: तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई। हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे, जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है, तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके, बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
1: जी।
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से आप पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
1: जी,
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छान कर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
1: जी।
0: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोल कर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, दो तिहाई भाग तक ही भरना चाहिए
1: ताकि प्रेशर बने,
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो दो तिहाई से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें, अगर

0: बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो तो
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेज़ी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें। अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
1: जी।
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर, ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं। अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है, तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा
1: जी।
0: ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
1: जी,
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
1: जी,
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद कर देगा
0: ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जाँच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं
1: जी।
0: वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें। जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर, इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी
1: जी।
0: जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उन पे धूल और मिट्टी को ना जमने दें, ठीक है। अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग, जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है। ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
2: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ ना मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्त चालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान

0: भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रखरखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसैक स्प्रेयर है तो इनका रखरखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
1: जी।
0: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए। ऐसे तो 200 घंटे में मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को चेहरे को इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको उस जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपना कर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाई डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं धान की सीधी बुआई पर खास चर्चा, और इस विषय को हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर AK मौर्य, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान KVK सबौर से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि धान की सीधी बुआई की ज़रूरत क्यों पड़ी?
3: धान की सीधी बुआई

0: की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा का पानी और सिंचाई दोनों के जो है, सिंचाई का पानी भी कम हो रहा है, बरसात भी हमारी अनियमित हो रही है। इस वजह से हमें जो है धान की सीधी बुवाई की आवश्यकता पड़ी। साथ साथ क्या है कि अगर हम रोपाई भी इससे, अगर हम धान के अगर उत्पादन करते हैं जिसको हम लोग यहाँ रोपनी बोलते हैं, तो एक किलो चावल पैदा करने में लगभग जो है हमको 5,000 लीटर पानी खर्चा होता है, जबकि अगर हम धान की सीधी बुवाई से करते हैं तो उसमें 1200-1400 लीटर पानी लगता है एक एक किलो चावल पैदा करने में। अगर एक शब्द में इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके रोपाई के समय कुल धान का जो पानी लगता है उसका एक तिहावा पानी जो है कि रोपाई में ही लग जाता है, और वो पानी को हम धान की सीधी बुवाई करके उसकी बचत कर सकते हैं। दूसरा क्या है, धान के रोपाई में जो हमारे लेबर लगते हैं, जो हमारे श्रमिक लगते हैं, उसकी भी हम जो आज श्रमिक जो कमी होती जा रही उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। साथ साथ उसमें जो हमारा डीजल जलता है और या बिजली कहीं जो है बिजली जो है की खपत है, इसकी भी हम कमी कर सकते हैं पानी की बचत के रूप में और जुताई या खादों के रूप में। उसके अलावा इसके में अगर हम बात करें तो इसके उत्पादन खर्च में भी हमारी कमी आती है। अगर हम इसको देखें तो चाहे वो पानी के रूप में हो या उसमें हमें लेबर के रूप में हो या उसमें डीजल के रूप में हो, ये सब को अगर देखते हैं तो उसमें हमारे उत्पादन खर्चा में कमी आती है। साथ साथ जो है इसमें जो मीथेन गैस है उसका इमिशन भी कम होता है धान की सीधी बुवाई में अगर तुलना की जाए तो रुपाई से। रुपाई विधि में इमिशन गैस की ज़्यादा इमिशन होता है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो इस तरह से हमें जो है धान की सीधी बुवाई पे ही आवश्यकता है कि हम लोग धान की सीधी बुवाई अब आजकल बढ़ चढ़ के आगे को बढ़ाएं।
1: जी, और ये तो बातें हुई कि क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इससे फ़ायदे हैं हमें, और धान की सीधी बुवाई के लिए खेत किस प्रकार होना चाहिए, भूमि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, कौन से प्रभेदों का चयन करना चाहिए, डॉक्टर साहब इसकी।
0: अच्छा, इस चीज़ एक उसमें और क्या आवश्यकता पड़ सकती है थोड़ा और बता दें। अगर हम धान की अगर सीधी बुवाई करते हैं तो हमारी जो है फसल रोपाई की तुलना में 7 से 10 दिन पहले कट जाएगी, जिससे हमारी रबी फसल जो है हम टाइमली से लगा पाएंगे। और अगर बात करें इसकी भूमि की तैयारी तो या उसका किस तरह खेत होना चाहिए, पहले तो खेत जो है हमारा भुरभुरा होना चाहिए, खेत जुताई करके उसमें करें। दूसरा क्या, खेत समतल होना चाहिए। किसान भाई हमारे जो खेत तो समतल करते हैं लेकिन उसको जो है अगर मैनुअली अगर हम समतल करते हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए इस विधि के लिए अगर हम अच्छी खेती करना है तो लेजर लैंड लेवलर से खेती मतलब खेत समतल करके ही, ताकि जो है पानी का एक समुचित प्रयोग हो, एक समान पूरे खेत में पानी लगा रहे और उसके साथ साथ जो है हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा और एट लास्ट हमारी पैदावार अच्छी होगी और उसमें हमारा खाद का या अन्य चीज़ों का सही उपयोग हो पाएगा। इसीलिए जो है हमको खेत का समतलीकरण लेजर लेवल से करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें इसमें धान की सीधी बुवाई के लिए ऐसी प्रभेदों का चयन करना चाहिए जिसका शुरुआती दौर में बढ़वार अच्छी हो, उसका ओज अच्छा हो और उसमें खरपतवार प्रतिस्पर्धी हो और उसकी जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, ऐसी प्रभेदों का चयन करना चाहिए। अगर हम बात करें लंबी अवधि वाली प्रभेदों का तो उसमें अगर हम बात करें तो अभी सबौर संपन्न हमारे यहाँ अच्छी प्रजाति है, सबौर संपन्न लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है ये सांभा मंसूरी लगा सकते हैं, M2703 लगा सकते हैं, राजेंद्र मंसूरी लगा सकते हैं और स्वर्णा सबौन लगा सकते हैं। ये लंबी वाली प्रभेद हैं। और उसके अलावा जो है हमारे जो कम अवधि वाले प्रभेद हैं उसमें राजेंद्र श्वेता लगा सकते हैं, उसके बाद M2001 लगा सकते हैं, उसके अलावा जो है ये सब और श्री लगा सकते हैं, इन वराइटियों लगा सकते हैं। लेकिन कम अवधि वाले के लिए जो है हमारा सहभागी धान है, सब और हर्षित हो गया, उसके बाद सब और दीप हो गया, इन प्रभेदों का हम लोग चयन कर सकते हैं जिसका जो है हमारा शुरुआती दौर में बढ़वा उसका अच्छा हो। लगाने के समय में मुख्य रूप से हम लोग ध्यान ये देते हैं कि हमारा जो है मानसून आने से पहले इन फसलों की बुवाई हो जाए, इन मतलब कि धान की सीधी बुवाई की हम बुवाई कर ले जाएँ मानसून आने के पहले पहले। अगर मानसून आ गया है तो हम लोग सही ढंग से जो है धान की सीधी बुवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये लंबी अवधि का अगर है तो उसको हम 20 मई से बुवाई शुरू कर देते हैं और 20 जून तक उसकी बुवाई हमको कंप्लीट कर लेना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मानसून के पहले पहले। उसी तरह से अगर हमारा मध्यम अवधि वाले प्रभेद हैं जो हमारे 130 से 135 दिन वाले हैं, 1 जून से और 30 जून के बीच पूरा कर लेना है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मानसून आने के पहले हमको पूरा कर लेना है। अगर कम अवधि वाले हैं

0: जो 115 से 120 दिन वाले हैं वो भी जो है हमको जून के मध्य में से लास्ट तक जो है मौसम को देखते हुए उसकी में बुवाई कर लेना है। तीसरा, हम अपने जो है समय पर बुवाई करके और अच्छी उपज ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, धान की सीधी बुवाई में विधियां कौन कौन सी आती हैं?
0: धान की सीधी बुवाई में मुख्य रूप से हम लोग तीन विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो जैसा कि अगर सूखा विधि की बात करें तो उसमें दो विधियां हैं, एक नमी विधि, दूसरा सूखा विधि। और अगर हम गीली विधि की बात करें जिसमें हम कादो करके, अगर बरसात अगर शुरू हो गई, अगर हम इस शब्द में कहें कि अगर बरसात शुरू हो गई तो स्टिपनी के लिए भी एक दूसरी विधि रखी गई है जिसको हम लोग ड्रम सीडर से बुवाई करते हैं। तो नम विधि क्या है, जिसको हम लोग बत्तर बोलते हैं। नम विधि में खेत की मतलब कि पहले सिंचाई कर लेंगे, उसकी तैयारी कर लें और जब हम बुवाई करें उस समय एक अच्छी नमी होना चाहिए ताकि जनरेशन एक अच्छा हो जाए, और बुवाई के लिए हम लोग मल्टी क्रॉप प्लांटर का प्रयोग करेंगे। और सूखी विधि में क्या है कि उस समय जो है खेत में नमी नहीं होती है, सूख हम बुवाई कर देते हैं उसके बाद में सिंचाई करते हैं, या मौसम का इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो, तो बारिश के उपरांत जो है वो जम जाएगा। तो सूखा विधि यह है, सूखा विधि में जब भी बुवाई करेंगे उसमें नमी बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम सूखा हम करेंगे और बुवाई के बाद में हम सिंचाई करेंगे तब उसका जो है जमा होगा, उसमें जर्मिनेशन होगा। इस तरह से हम लोग अपने दोनों जो है सूखा विधि की दो तरीका है, जिसमें नम विधि जिसको बत्तर बोलते हैं, दूसरा सूखा विधि कि जो एकदम सूखा बोते हैं उससे बुवाई का। लेकिन बेहतर होगा किसानों के लिए कि एक नम विधि जिसको बत्तर बोलते हैं उसी विधि का ही हम लोग प्रयोग करें, वो किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसीलिए कहा जाता है धान की सीधी बुवाई वहाँ करना चाहिए जहाँ पर 3 से 4 पानी सिंचाई की आवश्यकता के लिए पानी उपलब्ध हो, इसीलिए नम विधि ही अच्छी है बुवाई के लिए। अगर बरसात अगर शुरू हो गई है उस कंडीशन में, अगर मानसून आ गया है हमको धान की सीधी बुवाई करना है तो जैसा कि हम बताए कि एक स्टिपनी के रूप में हमको ड्रम सीडर से बुवाई करना चाहिए। ड्रम सीडर में क्या है कि एक जो है डिब्बा बना हुआ एक मशीन, छोटी से बहुत छोटी मशीन है, वो आदमी एक किसान अपने आराम से हाथ से खींचते हुए चला जाएगा और औसतन एक एकड़ बुवाई में 30 से 35 मिनट लगता है और बुवाई कर देंगे। उसमें क्या है, बीज को हल्का सी स्प्राउटेड करके और हल्का कादो करके बुवाई कर देंगे, एक स्थान पर 3 से 4 बीज गिरते चला जाएगा और लाइन में बुवाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग उसमें कर लेंगे
1: जी। और इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, उर्वरक प्रबंधन की, और सिंचाई कैसे करें उसकी भी जानकारी दें डॉक्टर साहब।
0: धान की सीधी बुवाई में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है खरपतवार प्रबंधन। जिन किसानों ने अगर खरपतवार का अच्छे से अगर नियंत्रण कर लिया है तो उनको पैदावार लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें बहुत ही लाभ उनको मिलेगा। जो किसान कर भी रहे हैं वो ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, जैसा कि अब बहुत सारी परियोजनाओं के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सबौर ने इस तरह की जो है धान की सीधी बुवाई शुरू किया है, किसान उसका लाभ ले रहे हैं। इसमें धान की सीधी बुवाई के बाद अगर हम ये नम विधि से अगर लगाते हैं और मानसून आने के पहले अगर लगाते हैं तो बोने के तुरंत बाद तो हम पेंडी मेथ्रीन का जो है 1 हेक्टेयर में 1 किलो AI अगर 30% जैसे आ रहा है तो 1 हेक्टेयर में 3.25 लीटर का छिड़काव करेंगे बोने के तुरंत बाद। लेकिन ये मानसून आने के पहले पहले करने की आवश्यकता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर हम इस दवा का छिड़काव कर दिए हैं और मानसून आ गया या सिंचाई कर दिए हैं तो ये पेंडीमेथ्रीन जर्मिनेशन पर बुरा असर डालेगा। इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि जो है धान की सीधी बुवाई में प्री इमरजेंस के रूप में हम खरपतवार नाशी का प्रयोग न करके, शाकनाशी का प्रयोग न करके, हम बुवाई के 15 से 18 दिन पर दो दवाओं का प्रयोग करें। दो हमारा जो हर्बिसाइड है उसका प्रयोग करें, एक है बिक्सपायरी बैग सोडियम, जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़े पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके लिए बिक्सपायरी बैग सोडियम जो बाज़ार में 10% पर उपलब्ध है, एक एकड़ में 100 ml का छिड़काव करें। अगर खेत में अगर मोथा है तो मोथा के लिए भी जो है हम एक आता है पाराजो सल्फ्यूरान, बाज़ार में कई नाम से आते हैं और उसको जो है ये भी 10% का आता है, एक एकड़ में 80 से 100 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। अगर चौड़ी पत्ती सक्रिय पत्ती वाले साथ में अगर मोथा ये सब घास अगर मिली हुई है तो दोनों दवा को बिक्सपायरी बैग सोडियम और पायराजो सल्फ्यूरान को एक ही पानी के टैंक में मिलाकर साथ में हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ड्रम सीडर्स भी लगाए हैं। ड्रम सीडर में तो बुवाई के समय कोई भी दवा बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर बुवाई के समय अगर पेंडामेथ्रीन या कोई गलती से इसमें दूसरी भी दवा का डालता है फिर इमरजेंसी रूप में, तो जर्मिनेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें बुवाई के 15 से 18 दिन बाद ये

0: पायरीबैक्स सोडियम और पायराजो सल्फ्यूरान खरपतवार के देखते हुए इसको छिड़काव कर देंगे 15-18 दिन पर, पानी अपनी आवश्यकता अनुसार। सिंचाई, जैसा कि कहे धान की सीधी बुवाई में किसान के पास में 3 से 4 सिंचाई की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। एक तो बुवाई के पहले जो नम विधि जिसमें हम बत्तर बोलते हैं, बुवाई के पहले एक सिंचाई करके हम खेत की तैयारी कर लेंगे, फिर उचित नमी पर, अच्छी नमी पर हम बुवाई करेंगे। उसके बाद जैसे जर्मिनेशन हो गया खेत को देखते हुए 8 से 10 दिन पर फिर दूसरी सिंचाई कर देंगे। इस तरह मौसम को देखते हुए हमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता शुरू में पड़ सकती है, और उसके अलावा भी बाद में हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई देते जाएंगे। रही बात हम कितना खाद डालें, खाद में अगर हम ऊपरी ज़मीन वाले हैं और कम अवधि वाले प्रभेद हैं तो उसमें हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उस पर प्रयोग करेंगे। अगर हमारे उन्नतशील और अधिक उपज देने वाली प्रभेद हैं तो उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास का हम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। लेकिन जो हमारे सुगंधित धान है उसके लिए 80 किलोग्राम जो उसमें भी जो सुगंधित में जो बौनी वाले हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। उस और सुगंधित में जो लंबी किस्म वाले हैं उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम हमारा पर हेक्टेयर की दर से पोटास का व्यवहार करें। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि अगर हम धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं तो एनपीके के माध्यम से हम फर्टिलाइजर को देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम डीएपी से दे रहे हैं तो पोटास की मात्रा को जो रिकमेंडेड डोज है, जो अनुशंसित मात्रा है, उसको खेत की तैयारी के समय खेत में पहले मिला दें तब हम बुवाई करें। अगर बाद में पोटास मशीन से, क्योंकि वो मशीन में चिपक जाएगी और उससे बुवाई नहीं हो पाएगी, तो ये ध्यान रखें। बाकी खाद की हम जैसे और भी रुपाई की विधि में देते हैं उसी तरह से खाद देते रहेंगे। अच्छा, धान की सीधी बुवाई में कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो उसके लिए क्या है कि खेत का समतलीकरण होना बहुत ज़रूरी है, समय पर उसका बुवाई कर लें। बुवाई 20 मई से मानसून आने के पहले पहले उसकी बुवाई कर लें, और उसमें खरपतवार नाशी का जो शाकनाशी है उसमें हम समय पर जो बिक्सपायरी बैक्सोडियम है, पारा जो सल्फ्यूरान है, उसको समय पर उचित मात्रा में उसको हम प्रयोग कर लें, ताकि और ये भी खरपतवार नाशी के समय ध्यान दें मौसम को देखते हुए कि ताकि जो है मौसम छिड़काव के 6 घंटे से 8 घंटे तक बरसात ना हो, और उसमें खरपतवार भी पानी से डूबा ना हो, घास हमारी भीगी ना हो, उस कंडीशन पे हमको जो है छिड़काव करना है। ये नहीं कि हमारी घास जो खरपतवार बरसात होकर तुरंत निकला है, पूरा पौधा पानी भीगा हुआ है, उस कंडीशन में, उस दशा में अगर हम छिड़काव करेंगे तो खरपतवार अच्छे से नियंत्रण नहीं आएंगे। और अगर उसमें खरपतवार अगर पूरा पानी अगर डूबा हुआ है तो भी हमारी दवा जो है उसमें प्रयोग नहीं होगी, मतलब अच्छे से प्रयोग नहीं होगा। इस तरह करेंगे तो हमारी पैदावार जो है अच्छी होगी, साथ साथ 1 एकड़ में 4 से 5 हज़ार रुपये जरूर, नहीं 6 हज़ार रुपये की बचत होगी, मतलब की तुलना में रुपाई की अपेक्षा। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस विशेष जानकारी के लिए, और हमारे श्रोताओं से आशा करते हैं कि आप इस वार्ता को सुनकर इसका लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है बीएससी सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
1: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम, सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुँचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का। इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है।

0: बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन चैम्बर, इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90-95% रखी जाती है जिससे फल 24-48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज़ के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो

बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारी किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो

0: किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं

0: है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
1: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, AI से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ, या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना

0: ना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज को करने के लिए खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फोटो को सही एंगल के साथ साथ फोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं, वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर

0: मॉइस्चर सेंसर लगा होता है। वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है? इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि AI से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सबको जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टीलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो AI कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
1: बिल्कुल, मतलब AI मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी AI कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए AI अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये AI आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम, तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है।

0: तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती है उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है, तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती हैं या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती है उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहे तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है, तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया।

0: क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल। तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम

0: नमस्ते जी।
1: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और

0: कार्य विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं, उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, कैरियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने

0: श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती
0: हैं।
1: जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी।
1: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
0: जी।
1: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
0: तो आराम कर लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
0: जी हाँ जी।
1: तो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए
0: जी, जी।
1: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई की, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
0: जी,
1: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को

0: जिन्ना और उनके साथ संवेदनशील हो करके उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे

0: ये कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
0: जी।
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
0: जी।
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
0: हाँ, होती है।
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
0: प्रयास
1: वो सफल
0: किया?
1: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
0: जी।
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
0: हाँ, होता
1: तो,
0: है।
1: तो इसका मतलब क्या हुआ
0: जी?
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
0: जी।
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
0: थोप
1: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
0: हाँ, प्रोत्साहित करें।
1: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
0: जी,
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
0: ये
1: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
0: जी,
1: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी

0: के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
5: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है, आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है, इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूँकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न

0: हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद उसको हम फॉडर में यूज करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
0: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है, और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज

0: तीन से चार सेंटीमीटर की गहराई पर बुना चाहिए। मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च

0: ये उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती, तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है। और मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे। ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1-1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है, तुड़ाई के बाद भुट्टो को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए।

0: चाहिए, इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहां हम जिस मंडी में पहुंचाएं या जहां भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबीकॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
2: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
2: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो

0: डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोलैसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है
0: जी।
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है, और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो, और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या

0: और इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडी बर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
2: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम, अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
1: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल दें कि ये बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
2: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल
1: जाए। जी बिल्कुल।
2: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव नियंत्रण कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
2: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: കൃഷി. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक. उन्नत कृषि. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान. दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं. तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना. तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति. डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं. तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा.
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए.
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है. इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके.
0: यस मैम. मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है. लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं.
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना. इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं. इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञ का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना. मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है.
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है. तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10

0: लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
1: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
0: बिल्कुल आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहां से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जब

0: यहाँ पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ही है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है। उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहाँ पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का, जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज। और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं, तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 18 से 22 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है।

मुइनावादा और गया जिलों में एक या दो स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर लीजिए। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और हर 10 से 15 दिन में नर्सरी में निराई गुड़ाई करते रहें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इनकी सीधी बुआई भी की जा सकती है। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई कर लें। श्री यानी की खेती यानी की मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का ही चयन करें। मड़वा के बकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती करने वाले किसान भाई बहन उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देव की शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, सब्जियां जैसे कि मिर्च, अगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है और गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर दें। कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके अगर नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ध्यान रखें कि वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताएं।

0: करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं, परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों

0: में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं।

0: इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।

समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते

है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में है तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज़ करना वो रिस्की होता है, और ख़ास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज़ करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखा कर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले, उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है, तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है, पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था,
तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इररेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया

0: किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, होती हैं वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए।

0: तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस एन रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
1: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है। यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट

0: की बबनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, तना भेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: तना कीट भेदक, तना भेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की बढ़ती कोमल में भेदक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
1: जी।
0: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम बताना चाहते हैं, इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना भेदक का बचाया जा सकता है। तना भेदक व्यस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना भेदक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना भेदक की आर्थिक क्षति होने पर कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफुरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
1: जी तो ये बात हो गई है तना भेदक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। अब मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए?
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं वयस्क दोनों ही क्षति पहुँचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक क्षति

0: हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रुपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 मिलीलीटर या थायोमिथोएक्जेम दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जिसके इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या 1 से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोल डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें?
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है जिससे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का वयस्क हल्का बादामी रंग का होता है तथा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। वयस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं

0: फसल ज़्यादा पहुँचाता ज़्यादा हानि पहुँचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेड़ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा क्लोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1,000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का 90.8 MHz पर। मैं हूं अनु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता श्री मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और आज हमें बताएंगी सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन के बारे में। तो क्या महत्व है और कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, बीज बुआई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, सारी बातें आज मैडम से जानेंगे हम। मैडम स्वागत है आपका।
7: धन्यवाद अनु।
6: मैडम, तो सबसे पहले सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दें।
7: किसान भाइयों, मैं आपको जैसा कि अनु बता रहे थे कि इसका क्या महत्व होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले महत्व के बारे में बताती हूँ। सब्जी की नर्सरी तैयार करना सब्जी उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पौध तैयार करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि नर्सरी में पौध तैयार करते समय उचित सावधानी व उन्नत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे तैयार होने वाली पौध व उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। टमाटर, मिर्च आदि फसलों की पौध तैयार करते समय कृषकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखने से तैयार होने वाली पौध में विषाणु जनित बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे मुख्य खेत में पौधरोपण के बाद बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद कृषकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कृषकों को पौध तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रहे कि नर्सरी के लिए ऊंचाई वाला स्थान उपयुक्त रहता है। समतल व अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि श्रेष्ठ होती है, जहां सिंचाई का साधन भी समीप हो एवं सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो। चयनित स्थान यथासंभव प्रतिकूल मौसम जैसे लू, शीतलहर एवं पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भूमि की तैयारी पौधशाला के लिए बहुत महत्व रखता है। भूमि की अच्छी तैयारी के लिए नर्सरी क्षेत्र की गहराई जुताई करें, मिट्टी को ढेले रहित एवं भुरभुरी बनावें व कंकर, पत्थर, खरपतवार आदि अलग करें। अच्छी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सरी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय ऊपरी सतह में मिलावें। पौध तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी छोटी क्यारियां उपयुक्त रहती है। सामान्यतः 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां उपयुक्त रहती है, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी बेड्स की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं हो, ताकि सिंचाई, खरपतवार हटाने एवं पौध संरक्षण आदि क्यार करने में सुविधा रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र

एक बटा 20 भाग में नर्सरी लगाई जाती है। टमाटर की संकर किस्मों की एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर तैयार क्षेत्र में पौध लगाई जाती है, जबकि एक हेक्टेयर प्याज, बैंगन, मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। तैयार क्यारियों में बीज की बुआई से पूर्व भूमि जनित बीमारियों व कीटों आदि से पौधों को बचाने के लिए 4 से 5 ग्राम थायराम या कप्तान व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% कण प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। नर्सरी में बुआई हेतु बीज में आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एवं सही किस्म का स्वस्थ बीज होना चाहिए। अतः बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए क्षेत्र विशेष के लिए उद्यान विभाग व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई किस्मों के बीज को ही बुआई के काम में लें। साथ ही बीज कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। बीज की बुआई ठीक समय पर करें। विभिन्न सब्जियों के लिए बीज की बुआई का समय अलग अलग होता है, जैसे कि टमाटर फसल के लिए वर्षा मौसम में बुआई हेतु जून जुलाई में करना चाहिए तथा 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वसंतकालीन टमाटर हेतु बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है तथा 150 से 250 ग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन बैंगन हेतु बुआई जून से जुलाई में करें तथा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। वर्षाकालीन तथा वसंतकालीन मिर्च की बुआई का समय मई जून होता है तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगेती फूलगोभी की बुआई का समय मई जून तथा बीज की आवश्यकता 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की होगी। प्रति हेक्टेयर मध्य फूल गोभी बुआई हेतु 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी तथा बुआई का समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। पछेतु फूल गोभी के लिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रखें तथा 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी का बुआई का समय सितंबर दिसंबर है तथा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। रबी प्याज की बुआई अक्टूबर नवंबर में करें तथा इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ प्याज की बुआई जून माह में करें तथा इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की बुआई से पहले उसे उपचारित करना आवश्यक होता है। उन्नत किस्म का बीज लेकर बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कप्तान प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। तैयार नर्सरी बेड्स में बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए, जिससे निराई गुराई, उर्वरक प्रयोग एवं पौध संरक्षण कार्य आसानी से किए जा सके व अच्छी स्वस्थ पौध तैयार हो। ध्यान रहे, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होवे। बहुत छोटे बीजों का उनकी मात्रा से दुगनी रेत मिलाकर बोना चाहिए ताकि क्यारियों में इनका वितरण सामान्य रूप से होए। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। इसके लिए बीज बोने के पश्चात उनके ऊपर खाद एवं रेत 1:1 के मिश्रण की हल्की परत बिछा दी जाती है ताकि सिंचाई करते समय बीज इधर उधर नहीं फैल पाए। बीज बुआई के तुरंत बाद झारे से सिंचाई करें। सर्दियों में कम तापक्रम के समय बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए क्यारियों को हल्के घास फूस से ढक देना चाहिए, परंतु अंकुरण होते ही इसे तुरंत हटा देना अच्छा होता है। अब सिंचाई की बात करें तो सब्जी नर्सरियों
की

0: क्यारियों में सिंचाई सामान रूप से तथा धीरे धीरे फुहारे से करना चाहिए, जिससे मिट्टी बहे नहीं। पौध बड़ी होने पर नर्सरी बेड्स के चारों तरफ छोड़ी हुई खाली जगह में सिंचाई के लिए पानी को नर्सरी क्षेत्र से बाहर रोककर क्यारियों में पानी धीरे धीरे जाने दें। तेज हवा बहाव के साथ सिंचाई ना करें। सिंचाई करते समय नर्सरी बेड्स के ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। सिंचाई के बाद मिट्टी में पपड़ी आने पर गुराई करें, इससे जड़ों में वायु संचार बढ़ता है व खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। पौध संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में बीजों की बुआई के 10 से 12 दिन बाद जड़ गलन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए कप्तान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों की जड़ों के पास झाड़े से छिड़काव करें। बीज बुआई के 18 से 20 दिन बाद रस चूसने वाले कीड़ों से पौध को बचाने के लिए डाइमेथेट 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। टमाटर मिर्च आदि में विषाणु रोग के से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलते हैं, अतः नर्सरी तैयार करते समय पौध को इसके प्रकोप से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा रोगों का संक्रमण होने पर बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बाद भी इन रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका प्रकोप कम करने हेतु नर्सरी में नायलॉन जाली का उपयोग प्रभावी पाया जाता है, जिससे बेड्स को बीज की बुआई उपरांत 50 मैश की नायलॉन नेट से ढक दिया जाता है। इसके लिए नर्सरी के दोनों तरफ अर्धचंद्रकार तार लगाकर उस पर 50 मैश का नायलॉन जाली से नर्सरी की बेड्स को ढक लेते हैं, या फिर नर्सरी के चारों कोनों पर खूंटे गार कर उन पर 50 मैश की जाली बिछाकर ढकने से ऐसी व्यवस्था करें कि जाली उड़े नहीं व हमेशा पौध क्षेत्र को ढकी रहे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जाली चारों तरफ से जमीन में दबी रहे, ताकि रस चूसने वाले कीट जो उपरोक्त विषाणु जनित रोग फैलाते हैं का प्रवेश ना हो सके। अब पौध का स्थानांतरण। पौध लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या फिर 4 से 6 पत्तियों की हो जावे, तब इसे मुख्य खेत में लगाएं। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि में यह अवस्था सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में आ जाती है, जबकि प्याज की पौध लगभग 8 सप्ताह में तैयार होती है। पौधे को मुख्य खेत में लगाने से पूर्व उसकी हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। इससे पौधे मजबूत हो जाते हैं व उनमें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए पौध तैयार होने के 4 से 5 दिन पहले नर्सरी में पानी बंद कर दें, लेकिन पौध उखाड़ने से 24 घंटे पहले बेड्स में अच्छी तरह पानी देवे, जिससे पौधे उखाड़ने समय जड़ों को कम से कम नुकसान हो। रोपाई से पूर्व पौध की जड़ों को फसल की सिफारिश अनुसार कीटनाशी रसायन में 15 से 20 मिनट तक डुबें। तैयार पौधे को मुख्य खेत की बनी हुई क्यारियों में फसल विशेष की सिफारिश के अनुसार निर्धारित फसलों पर कतारों में लगाएं व पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौध रोपाई का कार्य शाम के समय करना ठीक रहता है, जिससे रात की ठंडक में पौध स्थापित हो जाएं। इस प्रकार कुशल नर्सरी प्रबंधन से अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों व अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, यहाँ पर आपने आज जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन आपको किस प्रकार करना चाहिए, तो आशा करते

0: हैं। आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा, धन्यवाद।
1: उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 18 से 22 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जमुई, नवादा और गया जिलों में एक या दो स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर लीजिए। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और हर 10 से 15 दिन में नर्सरी में निराई गुड़ाई करते रहें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इनकी सीधी बुआई भी की जा सकती है। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई कर ले। श्री अन्न की खेती यानी कि मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का ही चयन करें। मड़वा के बकुला KMR 316, GPU 67, BL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8, RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती करने वाले किसान भाई बहन उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम

ग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देव की शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, सब्जियां जैसे कि मिर्च, अगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है और गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर दें। कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके अगर नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ध्यान रखें कि वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: प्रसाद और अखिला प्रसाद
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
0: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
0: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं।
1: जी
0: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
0: जी
1: तो बिमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
0: अजीत जी आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला?
0: जी
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
0: जी
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
0: अजीत जी ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है?
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: विमलेश जी लेन देन तो होता था लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लों के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे हुए अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए

0: श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वलरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा
4: आजा। नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
0: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
2: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ।

0: सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
2: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
1: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
3: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
3: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
0: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
3: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
3: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
0: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
5: हैप्पी संकेन।
6: हैप्पी संकेन।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
7: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
7: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
0: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
8: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है।

0: और साथ ही साथ सांकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. अरब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, आज

0: जब फार्मिंग की बात करें हम, तो इसमें कुछ नए नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, कुछ नए नए तरीके आ रहे हैं खेती करने के, और उसी में एक बहुत ही अच्छा तकनीक है, वो है टिश्यू कल्चर। और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, और हमारा विषय जो है बहुत ही अच्छा है, केले के टिश्यू कल्चर से पौधे लगाने के फ़ायदे। बिल्कुल, और ये जो बातें हैं, जो चर्चा हैं, वो लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर तुषार रंजन जी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। ये सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बता दीजिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है।
1: देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में ढेर सारा पौधा तैयार करते हैं
0: जी।
1: अगर हम बोलें तो इस विधि में हम पौधे के किसी भी अंग को, चाहे वो अंग उनका पत्ती हो, तना हो, जो भी हो, पौधे के किसी भी एक पार्ट को, एक अंग को हम कांच के एक पात्र में एक न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं, और अच्छा। उस पर हम पौधे का गुणन करते हैं, मीन्स पौधे की संख्या को बढ़ाते हैं।
0: अच्छा, तो ये इस तरीके से टिश्यू कल्चर के तरीके से जो है उसके उनको बढ़ाया जा सकता है, और बिना मिट्टी के जो पौधे हैं वो तैयार किए जा सकते हैं।
1: हम लोग एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इस पर हम लोग पौधा को तैयार करते हैं और विकसित करते हैं।
0: और ये आपने अभी जिस तकनीक के बारे में बताया, प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक, तो इसे कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं वो भी बता दीजिए।
1: हाँ जी, इसमें हमें एक बहुत ही स्टेराइल इन्वायरमेंट और लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, जो कि बिल्कुल कंटामिनेशन एवं माइक्रोब से फ्री एवं मुक्त होते हैं। साथ ही साथ पौधों की तैयारी एक न्यूट्रिएंट मीडियम पर की जाती है, और यह न्यूट्रिएंट मीडिया ही पौधों को भोजन प्रदान करती है एवं हेल्दी रखता है। इस तरह हमें खाने के लिए हमें कुछ भोजन की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली यहाँ तो हम पौधों को मिट्टी में तो उगाते नहीं हैं, तैयार करते नहीं हैं, हम लोग एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे पौधे को हम लोग तैयार करते हैं, और यही मीडिया पौधे को हेल्दी रखती है और उसे बड़ा करती है और उसे भोजन प्रोवाइड करती है। और प्लांट टिश्यू कल्चर की एक बड़ी खासियत यह है कि इस तकनीक में हम प्लांट के छोटे से पार्ट से एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। जैसा भी हमने आपको बताया कि चाहे वो कोई भी अंग हो, पत्ता हो, चाहे फ्लावर का छोटा सा पार्ट हो, तना हो, अगर कोई भी एक हम प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले, अंग ले, और उसको अगर हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखें और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखें, और चार से पाँच महीने तक अगर हम उसमें रखें, तो ये हम उससे एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। और यह छोटा सा पार्ट प्लांट का कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बताया सकर भी हो सकते हैं, सॉफ्ट तना हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, कोई भाग, उत्तक, और कोई भी अंग, कुछ भी हो सकता है।
0: तो ये कुछ तकनीक है जिससे कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक को अपनाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। और जब अब हमारा जो विषय है जो है कि इस टेक्निक को अपनाने से क्या फ़ायदे मिलेंगे हमारे सभी किसान भाइयों को, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर वो अपनाते हैं, इससे पौधे अगर विकसित करते हैं तो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं।
1: हाँ जी, अगर प्लांट टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे की बात हम करें, अभी हमारी बिहार सरकार या फिर भारत सरकार, सब लोग बिकॉज हमारे यहाँ अगर देखें तो जलवायु काफ़ी बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन की दौर में जो भी टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित किए गए पौधे होते हैं वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो प्रायः टिश्यू कल्चर से जो भी पौधे बनाए जाते हैं
0: जी,
1: वो डिजीज से फ्री होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग मुक्त होते हैं। ऐसे पौधे प्रायः वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से कम्प्लीटली फ्री होते हैं। अगर हम रोग की बात करें तो पौधे में रोग बेसिकली तीन चीज़ों से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है, और वायरस से होती है। तो जो भी हमारे टिश्यू कल्चर विधि या तकनीक से पौधे तैयार होते हैं, ये पौधे कम्प्लीटली डिजीज से फ्री होते हैं। अगर बात बीमारी की उठी है तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर केले की एक बहुत प्रमुख बीमारी है जिसे हम पनामा विल्ट बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: और ये फ्यूजेरियम नामक फंजाई से होता है, और ये फंजाई प्लांट के रूट से होते हुए बेसिकली ये सॉयल में ये फंजाई प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ये सॉयल से होते हुए आपके रूट से होते हुए पौधे के तना तक पहुंच जाते हैं। और आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉयल से न्यूट्रिएंट मिलती है, तो जो और इनको न्यूट्रिएंट प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, सॉयल से मिलती है। तो ये फंजाई क्या करते हैं, प्लांट्स को सॉयल से न्यूट्रिएंट अपटेक करने में बाधा डालते हैं।
0: अच्छा।
1: और अंततः पौधा मर जाता है। तो अगर हमारे किसान बंधु अगर शक्कर का यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली अगर बात करेंगे कि अगर हम लोग टिश्यू कल्चर तो अभी आए हैं और हमारे किसान बंधु बहुत केले की खेती बहुत पहले से होती आ रही है, तो पहले कन्वेंशनल

0: फार्मिंग कन्वेंशनल खेती की बात करें तो पहले किसान हमारे शकर, आप देखते होंगे केले के बगल से जो निकलता है एक छोटा सा, उसको मतलब शकर बोलते हैं। तो अगर प्लांट, अगर किसान बंधु इस शकर का यूज करते हो और शकर में खुदा ना खास्ता अगर वैसे फंजाई प्रेजेंट हो, उसे कोई बीमारी या कोई भी, चाहे वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, और किसान बंधु अगर वैसे शकर का यूज करें तो आगे चलकर हमारा जो पौधा होगा वो हमारा सही पौधा, हेल्दी पौधा नहीं होगा। तो यही मैं इस चीज़ पर मैं बार बार जोर देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो भी इस टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर से जो भी पौधे तैयार किए जाते हैं केले के, वो बेसिकली डिजीज फ्री होते हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है, ये तो रही एक फायदे की बात। अगर दूसरे फायदे की हम बात करें तो इस विधि से तैयार किए गए सारे पौधे समान कुल एवं एक समान होते हैं। अच्छा। जिसमें वेरिएशन की संभावनाएं कम होती है। तो वेरिएशन, अगर हमारे किसान बंधु शकर लेंगे, अगर आप देखेंगे शकर कोई कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो अगर उसको किसान बंधु डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें वेरिएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हमारा, हमारे तकनीक जो टिश्यू कल्चर से जो हम लोग पौधे तैयार करते हैं उसमें वेरिएशन की संभावनाएं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर की तरह होती है। तो इससे फायदे क्या होते हैं, सारे पौधे एक ही साथ फूल देते हैं और एक ही साथ फल देते हैं। मीन्स फ्रूटिंग एक साथ होती है, फ्लावरिंग एक साथ होती है, जिससे किसान बंधुओं को नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। इससे प्रायः ऐसा देखा गया है टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए गए पौधे कम समय में मैच्योर एवं जल्दी ही फूल फल देता है। अतः इसकी तुलना अगर हम कन्वेंशनल खेती से करें तो ये सारे के सारे पौधे, ये सब, ये सारे फायदे हैं जो कि किसान बंधुओं के इनकम को दोगुनी कर सकती है। साथ ही साथ अगर टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित पौधे, जो हमने बताया कि ये रोगमुक्त होने के कारण अधिक मात्रा में अधिक शाखा, जिसको हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं, अधिक शाखा फूल एवं फल का उत्पादन करते हैं, और इस तकनीक के द्वारा हम किसान बंधुओं में प्लांटिंग मटेरियल बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदान कर सकते हैं या उपलब्ध करा सकते हैं। अगर हम, जैसे हमने बताया कि अगर हम कन्वेंशनल खेती की बात करें जहाँ किसान बंधु केले की खेती शकर से करते हैं, तो शकर में आप, ये एक लिमिटेशन हो जाती है फार्मर्स के लिए कि कहाँ से इतना शकर मिलेगा, इतनी शकर कहाँ से मिलेगी। तो जो हमारी ये तकनीक है, इस तकनीक से हम, जैसा कि हमने बताया, एक तो बहुत कम समय लगते हैं हमें, और हमें, हमारे पास हम ढेर सारा प्लांटिंग मटेरियल हम लोग इस तकनीक से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं।
1: जी, तो एक बात और मुझे पूछना था डॉक्टर साहब कि जब आपने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर पौधे के हम तने या फिर पत्ते उसे चूज करके हम उस पर ही एक नया पौधा विकसित कर सकते, तो क्या वो जो पर्टिकुलर पौधा जो हम चूज़ करें तो उसमें भी कुछ चीज़ें देखनी होती है कि उसमें एक पर्टिकुलर फीचर्स होना चाहिए, या फिर आपने कहा कि रोग मुक्त, अगर हम कहते हैं ना कि बीज अगर हमारा सही होगा तभी हमारे पौधे अच्छे होंगे, तो क्या कुछ उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं?
0: जी बिल्कुल सही बोला आपने। हमें जो, हम लोग जो पर्टिकुलर एक कोई पार्ट लेते हैं पौधे का, जो भी एक अंग लेते हैं हम लोग, जो भी शकर यूज करते हैं या लीफ जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग वो सिलेक्शन के टाइम, चूज करने के टाइम हम लोगों को ये सावधानी बरतनी होती है कि ये शकर उस पौधे में किसी भी तरह की बीमारी ना हो।
1: अगर तो ये, वो क्या आपके मतलब लैब में टेस्टिंग की जाती है उस?
0: हाँ जी, हमारे पास जो प्लांट बनाए जाते हैं, हम लोग प्लांट, अगर जो भी इस टिश्यू कल्चर विधि से जो भी हमारे प्लांट तैयार होते हैं, हम लोग उसकी जेनेटिक फाइडेलिटी करते हैं, और जेनेटिक फाइडेलिटी करके हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा ये जो भी हमारे लैब से जो भी प्लांट्स निकल रहे हैं, इसको एक टेस्ट बोलते हैं, जेनेटिक फाइडेलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि अगर जो भी प्लांट हमने टिश्यू कल्चर से बनाया हुआ है, अगर उसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, किसी भी टाइप का अगर उसमें डिजीज लगा हुआ है, तो ये फाइडेलिटी टेस्ट के, जेनेटिक फाइडेलिटी टेस्ट के थ्रू वो हमें कंफर्म करती है।
1: अच्छा।
0: तो हमारे पास जो भी प्लांट निकलते हैं वो जेनेटिकली फाइडेलिटी इस टेस्ट से ये सर्टिफाइड होते हैं और कि इसमें किसी तरह के डिजीज नहीं है।
1: तो इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है तब जाकर के प्लांट टिश्यू कल्चर विधि से एक पौधा तैयार होता है। तो इसलिए हमारे सभी किसान भाइयों को, हमारे सभी श्रोता जो इस विधि से अपने पौधे लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल रोग मुक्त होगा। और भी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं इससे जुड़ी फ़ायदों के बारे में, तो आराम से आप इस विधि को अपना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। गेटिंग देम vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best.

0: And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था इसकी यही प्रॉब्लम है
3: कब से
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक
2: खांसी
3: हाँ
2: इसको तो एक आध महीना हो गया
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर खांसी तो है
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है
2: टीबी
3: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए
2: ठीक है
3: टीबी किसी को भी हो सकता है अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए अब फिट हो जाइए नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है समझ गए भाई साहब आप आइए दो हफ्ते से ज्यादा खांसी तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए टीबी हारेगा देश जीतेगा
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मखाना में पत्तियों पर खाद का छिड़काव एवं ड्रोन आधारित फोलियर स्प्रे तकनीक के बारे में और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भवानी प्रसाद मंडल सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर भागलपुर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में
5: धन्यवाद मैम
4: सर आपसे सबसे पहला सवाल कि मखाना में फोलियर स्प्रे की जरूरत क्यों पड़ती है
5: हाँ मैम बहुत अच्छा प्रश्न है सभी किसान भाई बहनों को मेरे तरफ से नमस्कार पहले ये जो मैम ने क्वेश्चन मुझे पूछे फोलियर स्प्रे या पत्ती के ऊपर छिड़काव क्यों जरूरत होता है मखाना एक ऐसी फसल है जिस जो तालाब या कोई जल भराव वाली जमीन में उगाया जाती है और इसी समय अगर कोई खाद डाला जाए तो उसका बहुत सा हिस्सा पानी में बह जाता है या कोई दूसरा जगह चला जाता है तो नुकसान होता है इसीलिए हम अगर देखा जाए जो मखाना का पत्ती का है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है तैरती होता है पानी के ऊपर तो उसके ऊपर अगर हम मतलब डायरेक्ट छिड़काव करें खाद का तो वो बड़ा बड़ा पत्ती तेजी से उस खाद का जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करती है और इससे नुकसान नहीं होता है इसीलिए छिड़काव करना पत्ती के ऊपर सबसे बेहतर टेक्निक माना जाता है
4: सर अगर हम ये सवाल करें कि स्प्रे कब करना चाहिए
5: जी मैम ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है कि कब करना चाहिए स्प्रे देखिए मखाना का कोई भी क्रॉप का हो खासकर मखाना की अलग अलग वृद्धि अवस्थाओं में अलग अलग पोषक तत्वों का छिड़काव करना चाहिए इसी लिए लगभग ऐसे देखा गया है रिसर्च में कि मखाना लगाने की 35 से 40 दिन के बाद 1% यूरिया का सॉल्यूशन और साथ में 0.5% जिंक सल्फेट का अगर छिड़काव किया जाएगा ये उसके ग्रोथ के लिए मतलब वृद्धि के लिए मखाना की वृद्धि के लिए अच्छी होती है
4: और जब पौधे में फूल आने लगते हैं तब भी किसान भाई बहन बड़े चिंतित रहते हैं कि अब क्या करें आगे क्या करना चाहिए तो ऐसे में जब पौधे में फूल आए तो किसान भाई बहनों को क्या कदम उठाने चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए
5: जी मैम फूल आने के समय कोई भी फसल के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उस समय पौधे को खास करके मखाना को पोटाश और बोरोन का आवश्यकता होता है इसीलिए पोटास का कोई मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है जैसे पोटासियम नाइट्रेट उसका 1% सॉल्यूशन और 0.1% बोरिक एसिड खास करके बोरिक एसिड बहुत मतलब फायदेमंद होता है इसी को स्प्रे किया जाए 1% पोटासियम नाइट्रेट के साथ 0.1% बोरिक एसिड सॉल्यूशन तो इससे क्या होता है फूल झड़ने का जो समस्या है वो कम हो जाता है और दाना बनने का प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है
4: सर और अभी आपने दाना बनने की बात की तो दाना बनने की जब अवस्था होती है तो ऐसे में आप किसान भाई बहनों को क्या सलाह देंगे
5: दाना बनने के समय चाहिए उसको मैग्नीशियम मतलब एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है तो 1% मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहे जिंक हो मैंगनीज हो उसका 0.5% सॉल्यूशन बना के पत्ती के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है इससे दाने का भराव जो है वो अच्छा होता है गुणवत्ता भी बढ़ती है
4: सर आजकल ड्रोन

0: तकनीक के बारे में काफी जोरों शोरों से बात चल रही है, तो ऐसे में क्या मखाना में भी ड्रोन स्प्रे फायदेमंद साबित होता है?
1: हाँ मैम, जी मैम, क्योंकि आजकल कृषि में हर क्षेत्र में इसको ड्रोन को उपयोग किया जा रहा है। मखाना के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मखाना जो है वो तालाब के होती है और नहीं तो कोई जल भरा वाली जमीन में होता है। कभी बार क्या होता है, उसी जगह पर जाना मुश्किल हो जाता है खाद को छिड़काव करने के लिए। तो उस समय अगर हम ड्रोन को उपयोग करें, ड्रोन कम समय में खेत का हर हिस्से पर समान मात्रा में उस खाद का छिड़काव कर सकते हैं। इससे कम लागत लगता है, कम खर्चा होता है और समय भी बचता है, इसीलिए ड्रोन काफी फायदेमंद है।
0: सर, अगर नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया की क्या आवश्यकता होती है मखाना की खेती में?
1: नैनो यूरिया जो है, आजकल जो फर्टिलाइजर का टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी एडवांसमेंट हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है नैनो यूरिया, और इपको के नैनो यूरिया बाजार में मतलब किसान भाइयों के लिए आसानी से मिल जाएगा। वो अगर 125 ml 10 से 15 लीटर पानी में घुल के एक एकड़ जमीन में हम स्प्रे कर सकते हैं, और इसमें ड्रोन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए। और इससे क्या होता है, वो पौधे के पत्ती के ऊपर आता है और छोटा छोटा होने के कारण मतलब वो बहुत तेजी से मखाना पत्ती उनको ले लेता है और इससे हरा भरा रहता है जो हमारे पत्तियाँ।
0: और अगर हम सावधानियों की बात करें तो किसान भाई बहनों को मखाना की खेती के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए?
1: जी मैम, इसमें बहुत अच्छा है कि हमको स्प्रे कब करना चाहिए, मतलब कौन सा समय को चुनना चाहिए, सावधानी क्या है। तो हम ये बोले कि जैसे अभी बहुत धूप है, इस धूप की बहुत ज़्यादा धूप में छिड़काव करना ठीक नहीं होता है, बहुत तेजी से हवा चल रहा है, उस समय भी किसान भाई लोग उसमें स्प्रे ना करें, और जो बारिश होते हैं तब भी स्प्रे ना करें। और सबसे उपयुक्त समय होता है स्प्रे करने के लिए, वो है सुबह या शाम। इस समय करेंगे तो वो पौधे पत्ते के ऊपर रहने का टाइम मिलता है और पौधा उसको तेजी से अवशोषित कर लेते हैं।
0: सर, अगर हम देखें तो आजकल हमारी जो खेती गृहस्थी है वो काफी आधुनिक हो रही है, तो ऐसे में भविष्य में क्या मखाना खेती भी आधुनिक हो सकती है, और कितनी आधुनिक हो सकती है?
1: बिल्कुल मैम, ये आधुनिक होने का ही बात है कि अगर हम लोग भविष्य में सेंसर आधारित, बहुत सारे सेंसर है, IoT बेस्ड सेंसर और सेंसर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, और ड्रोन के माध्यम से जो स्प्रे अभी बात हो रहा था, ड्रोन के माध्यम से छिड़काव, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके अगर हम लोग उसके ऊपर छिड़काव और अच्छा से करें तो ये काफी हेल्पफुल होगा। जो मैनुअल मतलब मनुष्य से कोई गलती होता है, कोई ऊंचा है, तो वो मशीन से उतना नहीं होगा। और हम इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को यूज करके आधुनिक खेती, मखाना का खेती कर सकते हैं, और मखाना का भविष्य जो है खेती का, वो बहुत तरह से चेंज हो सकता है।
0: यस सर, सर आपने बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आप जाने से पहले किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी मैम, मैं बस जो जितना जानते थे उतना किसान भाइयों के लिए हम बताएं, अभी सिर्फ एक और दो लाइन बताएंगे उनको, उनके लिए ये है कि सही समय पर सही पोषण पत्ती बने उत्पादन का कारण, सही समय पर सही पोषण हर पत्ती बने उत्पादन का कारण, और आखिर में ड्रोन भी यूज कीजिए, ड्रोन से पोषण हर पत्ती में जान, खुशहाल किसान बड़े सम्मान। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है किसान भाई बहनों हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी और आपको काफी कुछ जानने को समझने के लिए मिला होगा। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा।

0: सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 18 से 22 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जमुई, नवादा और गया जिलों में एक या दो स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर लीजिए। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और हर 10 से 15 दिन में नर्सरी में निराई गुड़ाई करते रहें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इनकी सीधी बुआई भी की जा सकती है। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई कर लें। श्रीयानी की खेती यानी कि मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का ही चयन करें। मड़वा के बकुला KMR 316 GPU 67, BL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8, RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती करने वाले किसान भाई बहन उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, सब्जियां जैसे कि मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है और गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर दें। कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x

ढाई मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके अगर नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ध्यान रखें कि वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम गौरव। सेहत सही लाभ गई की श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजे बाबू, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अपने साथ मिलकर समझाना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य

0: दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है?
1: देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप ही सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के

0: थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गाँव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी भी अफवाह यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लें। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गाँव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठाएं, और लोगों की जेब पर भी स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान अपना स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास के वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी, तो उसका असर इंसान पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: भाभी आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आजकल जानकारी तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है, क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, जैसे वैक्सीन के नुकसान होते हैं या कुछ बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर के से सलाह लेनी चाहिए।
0: भाभी ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलनी चाहिए, और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जाँच, इलाज और बाद की देखभाल भी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी यह है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों, और लोगों को उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं?
1: देखिए आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। यह इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सही खान पान एवं व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है सांक्रामक बीमारियाँ, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण या सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जैसे मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियाँ फैलती हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है। और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत के कारण बन चुकी है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन हर राज्य में समान ये नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अंतर है, और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी

0: स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां HO होते हैं, जहां रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है, बहुत ही दवाइयां मिलती हैं और बहुत सी जांचें होती हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जाँच की सुविधाएँ होती है। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोग सिस्टम पर भरोसा होगा तब वो समय पर इलाज करवाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वह जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और सभी कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर आता है जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़ा अस्पताल जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है? इस स्थिति को कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वही जगह है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता, कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है, फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिन्हें सच में गंभीर इलाज की जरूरत होती है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, जहाँ जांच की सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन सरकार लगातार इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों में पहले से ही धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता है, वे बिना कोशिश किए वहाँ जाना ही बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
0: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बड़े अस्पतालों में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है, जिसको दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएँ जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जानकारी और सलाह भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
0: आजकल डिजिटल चीज़ों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
1: हाँ, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब ABHA ID बनाई जा रही है, जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराना इलाज का रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UVN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिसका टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोग समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है।
0: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारियाँ

0: बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
1: हाँ, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैलाई जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे जमाने में टीका तो लगाया ही नहीं, फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
0: तो इन बातों का सच क्या है?
1: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है, तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सकें।
0: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
1: सबसे पहले, किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछे, समझे, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
0: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहीं सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
0: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less,

0: missed a vaccine. Hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे हर रोज के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम उन्नत कृषि है, इसमें हम बातें करते हैं उन्नत बातें खेती बाड़ी की और आज एक ऐसा ही खास विषय जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वो विषय है हमारा आज का सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, सुगंधित धान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे चावल आपके दिमाग में उसके नाम आ रहे होंगे जिसकी खुशबू आपको यूं ही अपनी ओर खींचती होगी कि चलो हम इसे पकाएं घर में और खाएं। तो कुछ ऐसे ही सुगंधित धान की बात करेंगे हम और उसकी वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता दूँ कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैडम।
3: सर, अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो इसकी क्या खासियत है और इसकी खेती कहाँ होती है?
5: मैडम, धान की विभिन्न किस्मों में सुगंधित धान का विशिष्ट स्थान है जो उसमें विद्यमान खास गुणों के कारण है। यूँ तो सुगंधित धान की किस्मों में भी काफ़ी विविधताएं हैं, परंतु इसके चावल की क्वालिटी, खुशबू और महक लोगों के आकर्षण का मुख्य वजह बन जाता है। वैश्विक स्तर पर सुगंधित धान के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिकांश सुगंधित धान का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत में सुगंधित धान की खेती कहाँ होती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सुगंधित धान की खेती प्रायः हिमालय के तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में की जाती है और खासकर ये सुगंधित धान जो है ये अपनी खुशबू के कारण काफी
3: प्रसिद्ध है,
5: प्रचलित है और इसी खुशबू के वजह से ये लोगों की चाहत भी बनी हुई है और हर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी हम खेती करें।
3: बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसकी खुशबू जो है वो आकर्षित करती है लोगों को और इसकी खुशबू ही इसे अन्य धानों से अलग करती है, तो वो किस वजह से है इस सुगंधित धान में खुशबू?
5: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि खुशबू से तो लोग वाकिफ हैं लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें खुशबू क्यों होती है
3: जी।
5: तो मैं आपको और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में महक या खुशबू का होना ही उसका सबसे प्रमुख गुण है
3: जी।
5: और इस खुशबू के लिए बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें 2-acetyl 1-pyrrolin कंपाउंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसके अलावे बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो लगभग 12-13 की संख्या में हैं, लेकिन 2-acetyl 1-pyrrolin जिसको संक्षेप में 2-AP भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सुगंधित धान में इस 2-AP की मात्रा

0: असुगंधित धान से लगभग 15 गुना ज्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: और सुगंधित धान में यह 2 AP 0.14 PPM होती है, जबकि असुगंधित धान में इसकी मात्रा 0.009 PPM होती है
1: जी।
0: और अच्छी मात्रा में ये 2 AP का निर्माण हो इसके लिए धान की खेती, खासकर सुगंधित धान की खेती का जो उपयुक्त तापक्रम है और उसका रेंज है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है।
1: तो सर अगर किस्मों की बात करें हम कि सुगंधित धान की हम अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं, तो इन किस्मों के हम नाम जानना चाहेंगे और साथ ही हम उसे कब लगाएं ये भी जानना चाहेंगे सर।
0: जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्में हैं, प्रभेद हैं, उसमें सुगंधा, टाइप 3, भागलपुर कतरनी जैसी अच्छी प्रभेद है जो प्रकाश संवेदी है। और इनमें एक खासियत है कि इनका जो पुष्पन होता है वो खास तापक्रम आने पर ही होता है, और ये किस्में लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब इनकी लंबाई, ये लंबी लंबे पौधे वाली किस्में हैं। और दूसरे किस्म हैं जो प्रकाश असंवेदी हैं, और उन किस्मों में राजेंद्र सुभाषिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सबौर सुरभित आदि श्रेष्ठ हैं, जिनके पौधे बौना किस्म के होते हैं।
1: तो सर अगर स्वस्थ बिचड़े की हम बात करें तो इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए?
0: देखिए, सुगंधित धान को खासकर खुशबू के मकसद से ही लगाते हैं, तो उसका बिचड़ा तैयार करने के लिए भी किसान भाई को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और किसान भाइयों को चाहिए कि सुगंधित धान की खुशबू का संबंध जो है, चूँकि वायुमंडलीय तापमान के साथ है, इसलिए उनको ये चाहिए कि अच्छी खुशबू या सुगंध के लिए पुष्पन का समय जो तापक्रम होता है वायुमंडल का, वह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इसके लिए सुगंधित धान के बिचड़ा हेतु बीज की नर्सरी में बुआई को सोच समझ कर करनी चाहिए, और सुगंधित धान के बीजों की बुआई नर्सरी में जून के अंतिम सप्ताह से 10 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा होता है। और खासकर भागलपुर कतरनी का जो बिचड़ा डालना है उसके लिए थोड़ा आगे का समय आपको लेना है, और भागलपुर कतरनी का बिचड़ा आप या हमारे किसान भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर डालते हैं तो उसमें अच्छी खुशबू प्राप्त होती है।
1: तो कितने दिनों के बिचड़ों की हमें रोपाई करनी चाहिए और कितने दूरी पर?
0: मैडम, यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बिचड़ा को रोपने से पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिचड़े की तैयारी हम अच्छी से करें।
1: अच्छा।
0: और बिचड़ा स्वस्थ हो तभी हमको फसल अच्छा मिल सकता है। तो स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए पहले हमको नर्सरी में बीज को बोना है, और बीज को बोने से पहले उससे हम बीज से उपचारित करेंगे। और किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 1 एकड़ में आपको धान की रोपाई करनी है, सुगंधित धान की रोपाई करनी है, तो उसके लिए नर्सरी का जो एरिया होगा वो लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा। और इसमें बीज बोने से पहले आपको लगभग 2 क्विंटल सरी गोबर की खाद को 10 से 15 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना होगा, और अंतिम कदबा के समय आपको खेत में, यानी 400 वर्ग मीटर की नर्सरी वाले प्लॉट में 3 किलो यूरिया, 2 किलो DAP एवं 1.5 किलो MOP यानी पोटास को समान रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी या राख में मिलाकर नर्सरी प्लॉट में आपको डालना है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिचड़ा जब लगभग 15 दिनों का हो जाए तो उस समय फिर आपको उसमें एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको नर्सरी वाले प्लॉट में लगभग 2 से 3 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और बिचड़ा उखाड़ने से पहले, यानी जब बिचड़ा उखाड़ने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको नर्सरी वाले प्लॉट

0: में पानी लगा देना चाहिए ताकि उखाड़ते समय बिचड़े के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये सावधानी आपको स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए बरतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिचड़े की रोपाई कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान का बिचड़ा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तब उसकी रोपाई करनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि बिचड़ा उखाड़ने से पूर्व नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए ताकि बिचड़ा आसानी से उखड़ जाए और जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और बिचड़ा की रोपाई आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर लगाएं और एक स्थान पर एक से दो बिचड़ा को ही लगाएं, इससे ज़्यादा बिचड़ा नहीं लगाएं, अन्यथा फिर टिलरिंग में कमी आ जाएगी। और बिचड़े को रोपने से पूर्व उसकी जड़ों को जैव उर्वरक जैसे एजोस्पिरिलम, पीएसबी और केएसबी कल्चर के घोल में 15 से 20 मिनट तक आप डुबो कर रखें, यानी धान के बिचड़े के जड़ों को इन जैव उर्वरक दवा के कल्चर के घोल से उपचारित करके ही रोपाई करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
1: सुगंधित धान के लिए ज़रूरी है खाद और उर्वरक की मात्रा जानना, तो कितनी मात्रा दें और इन्हें हम कब डालें?
0: तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में जैसे आप राजेंद्र सुवासिनी या सवोर सुरभित जैसे प्रभेद को लगा रहे हैं, यानी सुगंधित बौनी किस्मों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो उर्वरक डालना है उसे अंतिम कदवा के समय एक एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम डीएपी, 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर समान रूप से आपको खेत में बराबर रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को राख या मिट्टी में मिलाकर अकेले डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, इसको अकेले इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी या राख में मिलाकर उसको कदवा के समय खेत में समान रूप से छींट देना है। और जब फसल 25 दिनों का हो जाए मतलब रोपनी के 25 दिनों बाद आपको पुनः 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पहला टॉप ड्रेसिंग करना है और दूसरा टॉप ड्रेसिंग करना है जब गाभा निकलने की अवस्था आवे तो उस समय फिर 20 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के समय कोशिश ये करना चाहिए कि खेत में पानी लगा हुआ नहीं रहे, और बेहतर हो कि खेत में अगर पानी ज़्यादा लगा है तो पानी को निकाल दें, टॉप ड्रेसिंग करें और टॉप ड्रेसिंग करने के तीसरे दिन फिर खेत में पुनः पानी लगा दें। यहाँ मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में जो हमने बताया है उर्वरक की मात्रा वो राजेंद्र सुवासिनी और सवोर सुरभित के लिए था, लेकिन अगर आप भागलपुर कतरनी लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कदवा के समय आपको डीएपी देना है 25 किलोग्राम, यूरिया देना है 10 किलोग्राम और पोटास देना है 15 किलोग्राम। और जब इसकी टॉप ड्रेसिंग प्रथम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 दिनों के बाद तो उसमें मात्र 10 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करना है पहला, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग फिर गाभा वाली अवस्था में करेंगे तो उसमें भी मात्र 10 किलोग्राम यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो धान में लॉजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो धान के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है।
1: तो ये बातें हो गई सावधानियों की, और डॉक्टर साहब अब ये जानेंगे हम सिंचाई प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह हमें सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए सुगंधित धान की खेती में?
0: मैडम ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान को कहते हैं कि जल ज़्यादा प्रिय होता है, धान के लिए जल प्यारा होता है, और एक कहावत भी है कि धान के खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए। तो धान के खेतों की सिंचाई में ये किसानों को पहले से पता है और उन्हें सावधानी भी बरतनी है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि रोपाई के बाद लगातार 2 सप्ताह तक खेत में पानी लगाकर रखें ताकि खरपतवार का अंकुरण ना हो और अगर आप खरपतवार

0: द्वारनाशी दवा का इस्तेमाल किए हैं तो उस दवा का भी प्रभाव सही ढंग से हो सके। उसके बाद यह ध्यान रखें कि 2 दिनों से ज़्यादा खेत पानी के बिना ना रहे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार ना पड़ने पाए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुष्पन के समय मतलब फ्लावरिंग के समय खेत में पानी की बिल्कुल कमी ना हो, और धान कटाई के 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 दिन पहले अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें। और ऐसा करने से बाद की जो रबी फसल की बुआई आप करने जा रहे हैं उसकी बुआई भी समय से संभव हो पाएगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपके खेतों में किसी भी परिस्थिति में दरार न पड़े। पानी मतलब अगर 2 दिन तक अगर खेत खाली है तो आपको 3रे दिन हर हाल में पानी खेत में डाल देना अनिवार्य है।
1: तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार की समस्या हो जाती है तो उसका निदान कैसे करेंगे?
0: जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और खरपतवार की समस्या से हर किसान रूबरू होते हैं, तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर खेत में आप गोबर की खाद या FYM डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि गोबर की जो खाद आप डाल रहे हैं वह पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ हो, ताकि उसमें खरपतवार के बीज जीवंत रूप में ना रहे, वो बिल्कुल गोबर के साथ ही वो भी सड़ जाएं। तो आपको पूर्ण रूपेण सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि आप जो बिचरा डाले हैं या बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज भी जो है खरपतवार से मुक्त हो, तो आपको ऐसे संस्थान से बीज लेना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसमें खरपतवार के बीज ना हो। तीसरी बात कि कदवा के समय बहुत किसान भाई लापरवाही बरत जाते हैं, जैसे तैसे कदवा कर देते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे खरपतवार खेतों में जिंदा रह जाते हैं। तो कदवा करते समय किसान भाई को चाहिए कि हम कदवा ठीक से करें, ताकि खेत में जो भी खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से उनका जड़ उखड़ जाए और मिट्टी में पूरा लिपट के वो सड़ जाए। तो कदवा की तैयारी भी आपको ठीक से करनी है। और इसके अलावे अगर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आती है तो धान रोपाई के 2रे या 3रे दिन ब्यूटा क्लोर 50 EC या प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1 से 1.25 लीटर दवा को आप 15 से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर 1 एकड़ खेत में समान रूप से छींट दें। और कंडीशन ये है कि जिस समय आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपके खेत में कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी लगा हुआ रहे, ताकि पानी के लेयर के ऊपर ये दवा का लेयर आ जाए और जो भी नीचे से खरपतवार निकलने वाले हों उसको निकलने ना दे, वो खरपतवारनाशी दवा के संपर्क में आकर वहीं मर जाए।
1: जी,
0: तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर उसके बाद भी आपको या किसान भाई को खरपतवार की समस्या नज़र आती है तो धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद पुनः 20 पायरीवैक्स सोडियम नाम 10% के नाम से दवा आती है, और इस दवा का 80 से 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव अगर किसान भाई करते हैं तो उनको खरपतवार से निजात मिल जाएगी और फिर उनका फसल स्वस्थ हो जाएगा। और अच्छी टिलरिंग जब हो जाएगी, उसके पौधे जब घने हो जाएंगे, तो फिर उसके फसल को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा।
1: जी, तो ये तो बातें हो गई खरपतवार की जो समस्या है उसका निदान कैसे करें। और डॉक्टर साहब, अगर कीट और रोगों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं जो धान सुगंधित धान में लग सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
0: देखा जाए सुगंधित धान, जैसा नाम है सुगंध, तो सुगंध सबको प्यारा होता है।
1: जी,
0: तो सुगंधित धान में कीट और रोग के प्रकोप भी काफ़ी होते हैं। और खासकर यह देखा जाता है कि सुगंधित धान में धर छेदक जो कीट हैं उसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। और इसके लिए फसल की देखभाल किसान

0: भाई को नियमित रूप से करनी चाहिए, और जैसे ही उनको ये नजर आए कि 2% से ज्यादा मृत मूल कल्ले अथवा सफेद बालियां नजर आ रही है खेत में, तो शीघ्र उन्हें उचित कीटनाशी दवा का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आप क्लोरपाइरीफॉस्ट 20 EC की 1 लीटर मात्रा को अथवा फिप्रोनिल 80% WG की 15 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे तो धर छेदक कीट से फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई अपने खेतों में फेरोमन ट्रैप 5 फेरोमन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं, या ट्रैको कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बर्ड पर्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कीड़े के प्रवेश को या कीड़े के भक्षण में या कीड़े को मारने में ये कारगर सिद्ध होगा। और दूसरा कीट है गंधी कीट। दूध बनने की अवस्था में गंधी कीट दानों से रस चूस लेते हैं जिस कारण दाने खखरी हो जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मालाथियान 5% धूल या मिथाइल पाराथियान 2% धूल की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिस समय पौधे पर ओस होते हैं उस समय इसका अगर भुड़काव करेंगे तो ये गंधी कीट जो हैं आपके खेतों से भाग जाएंगे और फिर आपके फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कीट से अपने फसलों की बचाव कर सकते हैं। और रोग भी सुगंधित धान में लगते हैं जिसमें खास करके पत्र लांछन जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, झोंका जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं, और जीवाणु पत्र झुलसा जिसे BL भी कहते हैं, और आवरण झुलसा जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक है सुगंधित धान के लिए। तो किसान भाइयों इन रोगों से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार और बिचरा उपचार करें, अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें, और रोग के लक्षण दिखते ही उपचार हेतु संबंधित विभाग के वैज्ञानिकों से अथवा विश्वविद्यालय के किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके फसल में पत्र लांछन रोग लगा है तो इसे बचाव हेतु आप डाइथेन Z78 या मेनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 3 से 4 बार छिड़काव करें, और शीथ ब्लाइट से बचाव के लिए वेलिडामाइसिन नाम की दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 3 बार खरीफ फसल में छिड़काव करें, और BLB से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा की 20 ग्राम मात्रा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो BLB से भी आपके फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे मैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहूँगा, चूँकि फसल की कटाई और तैयारी भी सुगंधित धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, तो सुगंधित धान की गुणवत्ता खुशबू और उत्पादन पर कटनी के समय का काफ़ी असर पड़ता है, और विलम्ब से कटाई करने से दाने झड़ जाते हैं चावल की मात्रा में और उसकी खुशबू में भी कमी आती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि सुगंधित धान के फसल की कटाई 50% फूल आने के 30 से 35 दिनों बाद जिस समय दाना में लगभग 20 से 24% नमी हो उसी समय उसकी कटाई कर लें, और खेत का पानी कटाई के 10 से 15 दिनों पूर्व बाहर निकाल दें। कटाई के दूसरे दिन ही कोशिश करें कि उसकी हम थ्रेसिंग कर लें, और जो थ्रेसिंग करने के बाद आपको धान मिला है उसको सीधा धूप में ना सुखाकर उसको छाया में तब तक सुखाएं जब तक कि उसमें 12 से 14% नमी ना आ जाए। ऐसा करने से मिलिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, और जब इसका भंडारण आप करेंगे तो भंडारण करने से पूर्व आपको ये एश्योर कर लेना चाहिए कि सुगंधित धान का भंडारण हम उस समय करें जब धान में नमी का स्तर 12-14% तक आ जाए और भंडारण गृह की सही ढंग से सफाई और कीटनाशक दवा से अच्छी तरह से वो उपचारित हो, तभी आपको भंडारण करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर सारे सही तरीके को अपनाकर किसान भाई अगर सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और ये पैदावार लगभग 30-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो सकती है और जिसका बाजार भाव भी उनको अच्छा मिल सकता है।
1: तो जैसा कि किसान भाइयों और श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप सही तरीके से सुगंधित धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार और बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। तो ये वैज्ञानिक खेती और इसकी तैयारियां पूरी यहां पर बताई गई हैं, आपको किस तरीके से बिचड़े को तैयार करना है और इसके साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए, कौन सी किस्में सही हैं और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तो वैज्ञानिक खेती आपको यहाँ पर बताई गई पूरी की पूरी सुगंधित धान की। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को सुने और ज़रूर इसे अपनाएं और जब आप खेती कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के

मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था इसकी यही प्रॉब्लम है
4: कब से
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक
3: खांसी इसको तो एक आध महीना हो गया
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर खांसी तो है
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है
3: टीबी
4: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए
3: ठीक है
4: टीबी किसी को भी हो सकता है अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए अब फिट हो जाइए नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है समझ गए भाई साहब आप आइए दो हफ्ते से ज्यादा खांसी तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन आइए जानते हैं मौसम का हाल मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 18 से 22 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है जमुई नवादा और गया जिलों में एक या दो स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभित भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर लीजिए बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और हर 10 से 15 दिन में नर्सरी में निराई गुड़ाई करते रहें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इनकी सीधी बुआई भी की जा सकती है पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई कर लें श्री यानी की खेती यानी की मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का ही चयन करें मड़वा के बकुला KMR 316 GPU 67 BL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं अरहर की खेती करने वाले किसान भाई बहन उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम फास्फोरस 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना जरूरी होता है अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी है अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें सब्जियां जैसे कि मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें ये मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल

है और गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर दे। कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके अगर नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ध्यान रखें कि वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक संतूर, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 5,
3: पेज 105, यूनिट 5, वर्क इज वर्शिप, चैप्टर 9, वोकेशन। देयर इज अ QR कोड गिवन एट द टॉप राइट साइड ऑफ द पेज। Clicking on the QR code will take you to additional information about this chapter. Let us recite. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I met the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There's nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. The image on this page illustrates a cartoon scene of a boy walking home from school with a backpack. He is walking alongside a man carrying bangles on his head in a purple tray. The man is wearing a pink shirt and white dhoti. They are on a road with houses and trees around. The scene depicts a morning moment with sun shining through clouds. Page 106. When at 4 in the afternoon, I come back from the school, I can see through the gate of that house, the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. The image on this page depicts a boy coming back from school.

0: जरूरी है ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
3: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
5: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है, बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं है, और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं, और बैंगन सालों भर चलती है ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है, और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबौर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबौर कृष्णकली भी शामिल है।
3: मैम, अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
5: बैंगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित

0: किस्म की हो। यही पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग लगभग 250 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को। और दो जो जैसे क्यारी बनती है तो दो लाइन के बीच में लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीज क्योंकि बैंगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौधा है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रुपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में जिसकी बुआई करते हैं और 1 महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रुपाई करते हैं।
1: मैम अगर हम बात करें खेत की तैयारी की तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
0: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रुपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से। और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
1: जी। और रुपाई की विधि क्या होती है?
0: बैगन की बिजड़ा जब 1 महीने के लगभग हो जाते हैं उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रुपाई करते हैं। तो रुपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रुपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं। और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है। और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के दूरी रखते हैं तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके 1 महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
1: मैम खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
0: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा

0: मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं, यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रोपाई के 30 दिन 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
0: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
0: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना जरूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे, और जब शरतकालीन जो फसल होता है जब हार्वेस्ट होने लगते हैं फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
1: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है, सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं, तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे एक बार बैगन लगाने के बाद में, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए, हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में तो वो अच्छा रहेगा।

0: इसके अलावा जो है, कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको, तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है, उसके आधा मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसकी छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
1: और मैम, रोग भी काफी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: बैगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का, वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है, तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा, बीज को हम लोग थाइरम या कैप्टन 2, 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बन डाइजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटलाक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं, तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है, तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं, तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है तो उससे वो खत्म हो जाता है, और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पन्नियाँ छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे

0: से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
1: मैम अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए और उपज कितना होता है बैंगन का?
0: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज़ आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज़ यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पर करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है, मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: Yo, what's up?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
8: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक। लेकिन बाजार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
1: सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से। सर आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है?
9: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक, या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलन

0: क्षमताशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं ज़रूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
0: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
1: अच्छा।
0: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे, जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
1: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
0: इनके कई सारे महत्व हैं, मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेजी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है, लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
1: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
0: जी
1: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
0: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो है यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20-25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहाँ पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की, और लागत में भी उसके मुकाबले, पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले इसमें लागत भी कम है। भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है, उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं अपने कृषि प्रणाली में, इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
0: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन, 44% तक फॉस्फरस का पौधों तक पहुँचा सकते हैं फॉस्फरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियाँ अपनाते हैं, जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी?
0: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हो या जल विलय उर्वरक हो, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं। मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसे चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
1: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी है। सर और कुछ?
0: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय क्षति में, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, वहाँ पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
1: सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं।
0: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 18 से 22 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जमुई, नवादा और गया जिलों में एक या दो स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर लीजिए। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और हर 10 से 15 दिन में नर्सरी में निराई गुड़ाई करते रहें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इनकी सीधी बुआई भी की जा सकती है। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई कर ले। श्री अन्न की खेती यानी कि मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का ही चयन करें। मड़वा के बकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8, RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती करने वाले किसान भाई बहन उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, सब्जियां जैसे कि मिर्च, अगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है और गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर दे। कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके अगर नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ध्यान रखें कि वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी

एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दुख का अधिकार।
1: समाज कई बार अलग अलग आधारों पर लोगों को बांटता रहा है, कभी धर्म और मजहब के लिए, कभी सामाजिक और आर्थिक असमानता के नाम पर। अक्सर हमारी वेशभूषा ही समाज में हमारे अधिकारों को तय करती है। एक ओर यह हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल देती है, तो दूसरी ओर जब भी हमारा मन किसी गरीब की अनुभूतियों को समझने की कोशिश करना चाहता है, हमारी पोशाक एक बंधन सा बनकर हमारी संवेदनाओं पर हावी हो जाती है। इस वर्ग संघर्ष की चेतना को यशपाल ने दुख के अधिकार कहानी में बखूबी उभारा है। यह सच है कि दुख की अनुभूति हर व्यक्ति को एक जैसी होती है, उसका दिल टूटता है। मगर यह कैसी मानवीय त्रासदी है कि निर्धन को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता और ना ही उसके पास इसका समय होता है, क्योंकि उसके जीवन का मूल प्रश्न रोटी से जुड़ा रहता है, जिसके सामने संवेदनाओं या भावनाओं की शायद कोई जगह नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है।
2: बाबूजी, बाबूजी, टमाटर ले लो, एकदम ताजे और दाम भी कम है।
3: क्या भाव
2: जी? ये मिल जाएंगे आपको 40 रुपए किलो।
3: 40 रुपए?
4: अरे ये महिला क्यों रो रही है? इसके विलाप का क्या कारण हो सकता है? खरबूजे का टोकरा लिए बैठी है और अपना मुंह घुटनों में छिपाए रोए जा रही है। मन कर रहा है इसके पास जाकर पूछूं, पर लोग क्या कहेंगे, मुझ पर फप्तियां कसेंगे। कहां ये कीमती पोशाक पहने मेरी छवि और कहां ये मलिन कपड़ों वाली स्त्री। चाहकर भी मैं उसका दुख बांटने में असमर्थ हो रहा हूं। ये हमारे समाज की कैसी विडंबना है।
5: अरे बाबूजी, जाइए अपनी राह, सोच क्या रहे हैं? ये तो बड़ी बेशरम है।
3: और क्या?
5: अभी कल ही इसके जवान बेटे की मौत हुई है और आज ये बाजार चली आई सौदा बेचने।
3: सही कह रहे हो।
6: अरे मियां, लाहौल विलाकुवत, क्या जमाना आ गया है, खुदा खैर करे।
7: कलयुग है, घोर कलयुग। इन जैसे लोगों

0: ये कैसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। जरा चलकर आसपास पूछता हूं, आखिर इसके बेटे को हुआ क्या था। इन महाशय से पूछता हूँ। जरा सुनिए श्रीमान
1: जी। बाबूजी,
0: आप बताइए कि इस महिला ने अपना बेटा कैसे खोया।
2: लगता है आप यहाँ नए नए आए हैं। ये बुढ़िया मंडी में हर रोज आती है। इसका लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेतों में सब्जी बोने का काम करता था। इसी से इसके परिवार का गुजारा चलता था। लड़का कभी खुद आ जाता था और कभी खरबूजों की टोकरी उठाकर माँ को दे जाता था। यही सिलसिला बरसों से चल रहा था।
0: तो फिर?
2: फिर क्या, परसों सुबह सुबह जब वो खरबूजे तोड़ने गया तो उसका पैर सांप पर पड़ गया।
0: ओहो।
2: हाँ, और सांप ने उसे डस लिया। बुढ़िया ओझा को बुला लाई। ना जाने उसने कितने मंत्र फूके, पर इन सब उपायों से कुछ ना हुआ। डॉक्टर के पास जाने की हैसियत नहीं थी, सो इसका बेटा भगवाना चला गया।
0: ओहो।
2: अब पूजा की भी तो दान दक्षिणा का मसला भी उठा। घर में जो अनाज था सब दक्षिणा के भेंट चढ़ गया। रह गए रोते कलपते इसके बेटे के 2 बच्चे, पत्नी और खुद ये लाचार बुढ़िया।
3: भला हो समाज के पाखंडी पंडितों ओझाओं का, चाहे कुछ भी हो अपनी झोली भरना नहीं भूलते। किसे परवाह है उस दीन दुखियारी मां की मनोव्यथा की, उन भोले मासूम बच्चों के रुदन की, और उस विधवा की जो कई दिनों से बुखार में तप रही थी। कौन लेगा इन सबकी खबर? इस प्रश्न पर समाज मौन रह जाता है, इनका रुदन गूंजता रह जाता है अनंत दिशाओं में।
4: हे भगवान, उठा क्यों नहीं लेता मुझको, उठा ही क्यों नहीं लेता, उठा ही क्यों नहीं लेता।
3: इस गहन पीड़ा में भी मां को चिंता थी अपने बेटे भगवाना का तन ढकने की, उसके लिए नया कपड़ा लाने की, चाहे उनके हाथों में बजे खुचे मामूली जेवर छन्नी ककना भी क्यों न बिक जाएं। भूखे बच्चों को ढाढ़स भी बंधाना था।
4: लो बच्चों, खरबूजा खा लो, चुप हो जाओ। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
3: और फिर दुस्साहसी बुढ़िया अपने बेटे के लाए हुए खरबूजे समेटकर बाजार में बेचने चलती थी। किसी मानवीय संवेदना की शायद वो हकदार नहीं थी। दुनिया ने उसे निर्मोही और पत्थर दिल करार दिया था, फिर भी वो मुस्तैद थी बेटे को अंतिम विदा देने के लिए। पर इससे भी पहले उसके सामने बड़ा क्रूर प्रश्न था, रोटी का।

कैसा है ये सामाजिक न्याय। अचानक मुझे याद आई अपने पड़ोस में घटी एक घटना की, जिसमें एक संपन्न परिवार की महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। 2.5-3 महीने तक डॉक्टर उसकी सेवा में लगे रहे उसकी मूर्छा को ठीक करने के लिए। उस समय तमाम शहर उसके दुख में दुखी था। वो अमीर थी, उसके इर्द गिर्द एक सभ्य समाज की छत्र छाया थी, संपन्नता ने सब अधिकार उसे सौंप दिए थे। क्या पता इस बुढ़िया जैसी हजारों गरीब महिलाएं कौन कौन सी यातनाओं से आज भी गुजर रही हूं। मेरा मन कितना चाह रहा था कि

0: बुढ़िया के कंधे पर सांत्वना का हाथ रख दूं, उसे भी दुख का अधिकार मिल जाए, पर ऐसा कर ना सका।
1: दुख का अधिकार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, सुनील लोहिया, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। वाचन स्वर परवेज गौहर। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
2: TB?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद। किसान भाइयों जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें।
6: जी बिल्कुल सर। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
8: हाँ मुख्यतः किसान भाइयों आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जी

0: बीजियाँ होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है, तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
1: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
0: हाँ, ये किसान भाइयों, चूँकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है, या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं, तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके, उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके की मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग को मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर 2 बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से 1 महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजीम है, कार्बेंडाजीम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार

0: जगह पे उसको सुखाना है, और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके, और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का, और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके, और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है, तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया, तो पौधा चूंकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है, और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर भी बैगन मिलता है, तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है, तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है, और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं, तो जब उसका

लगभग एक महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है। तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं। दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है इसकी संख्या घट जाती है और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड शूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बोर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका, जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बोर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है, घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो एलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक एलो स्टिकी ट्रैप

या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है एक हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे, तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, ये येल्लो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सम 25WG इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सम 25WG एक टारा के नाम से भी आता है, एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ML मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है, तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में किकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्सम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन में जो है 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको
कैसा कीटनाशक आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेच से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशक इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा

0: प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को, खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन रह जाती है तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीज़ें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगी हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई है, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आए सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
7: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ। पोषण वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका, उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में

0: ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है,
1: या फिर यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी
0: कमजोर हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
1: तो मैम, इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्व से भरपूर। पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है। गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम, जेली, केचप, ये सब बनाया जा सकता है। और जब मौसम नहीं हो इनका तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
1: वैसे देखा गया मैम कि अभी शहरों की भी बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है जैसे नींबू के पौधे हो जाएं, मिर्च के पौधे हो जाएं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतरकर बाहर आकर हम बात करें शहरों के, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं। वैसे छोटे छोटे जो ज़्यादा वज़न वाले जो फल या सब्ज़ी ना हो वैसे पौधे लगाने लगे हैं। अब आप उनके टेरेस पर छत पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वज़न वाले जो फल हैं, जो सब्ज़ी हैं, आप लगा सकते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा कुछ जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ हैं इसके। और मैम, अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
0: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज़्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं, जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है
1: जी।
0: तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुँच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है
1: जी।
0: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके। ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए

0: पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बाड़ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे तीन तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, छप्पन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई चौथी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए। फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए, जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के दो कोनों पर गड्ढों होने चाहिए, जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो, जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए, ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए, जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसल्स स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए, जो कि पोषण तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
1: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज़ कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
1: अच्छा।
0: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
1: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
1: अच्छा।
0: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवे प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी या दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर, अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू, अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट, ककड़ी आदि लगा सकते हैं और जून से अगस्त के बीच में हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छप्पन कद्दू, परवल।

0: मसला मैंने पहले भी बताया को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा लें तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता की एक कुंजी है।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूं कहूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं, अपने घर के आगे जो बची खुची ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल करके इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना। साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
7: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 18

से 22 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जमुई, नवादा और गया जिलों में एक या दो स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर लीजिए। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और हर 10 से 15 दिन में नर्सरी में निराई गुड़ाई करते रहें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इनकी सीधी बुआई भी की जा सकती है। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई कर ले। श्री यानी की खेती यानी की मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का ही चयन करे। मड़वा के बकुला KMR 316 GPU 67 BL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती करने वाले किसान भाई बहन उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, सब्जियां जैसे कि मिर्च, अगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है और गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर दें। कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके अगर नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ध्यान रखें कि वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार

खाए, नियमित जांच कराए और सही उपचार ले। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಮಿಲ್ಲತ್ ಕೃಷಿ. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन. स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें. बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में. तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आर एन गुप्ता. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले. सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं. तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं. अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है. तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती ही है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है. तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा.
1: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए. कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं. और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो. अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्वों का जो प्रबंधन की समस्या हो, उससे ये कमी हो जाती है. तो ये भूमि समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है, इसलिए हमारा जो ज़मीन है जो खेत है वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है. तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जमने की समस्या ये ना हो. तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें. दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब

0: हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
1: जी।
0: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना जरूरी है ताकि जो है इसमें रोग और रोग की समस्या, कीटाणु कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है, तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
1: जी।
0: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा,

0: प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणु या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजिम है जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है जो वीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर उसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुँचता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है 2 क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने के समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो 2 कम से कम आवश्यक रूप से करें ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने जो दाल बने उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है

कुछ कुछ बीमारियां लगती है जो फली में फली मक्खी है, जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है, और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमिडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं, और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी जो अवस्था निगरानी करना जरूरी है, और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरोपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाज़ार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं, और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है, जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं, तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणु जनित रोग होती है, जैसे लीफ क्रिंकल रोग जिसमें पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है, और इसमें बहुत कम फलियां लगती है और यह है पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होती है, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप्स से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियां जो है फफूंद जनक होती है, और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्राय सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन स्विंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियाँ कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं, और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं, पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल

0: के धब्बे बन जाते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सरकोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियां जो है समय से पहले ही झड़ जाती है, इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है, मार्केट में सांप के नाम से भी मिलती है, तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है चूर्णी रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है, ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह का ये बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियां हैं जो पत्तियों पे होती हैं उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजीव और मैनकोजेब मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियां जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जेंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और कालांतर में पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं छिड़काव करते हैं तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और 1 महीने 3 दिन के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। कृषि

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं।

0: कितने दोस्त हैं?
1: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो, तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन माताओं की, जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है, और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज़्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज़्यादा खून बहा हो, उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज़्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज़्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज़्यादा पानी हो या फिर दो बच्चे हों, तो उन्हें भी

इस बात का यानी कि पीपीएच का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है यानी कि एनेमिक है, उन्हें भी पीपीएच का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी पीपीएच होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें पीपीएच का ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें ख़तरा हो सकता है, किस स्थिति में ख़तरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमज़ोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो, तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को पीपीएच हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। वहीं सबसे ज़रूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज़्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या पीपीएच से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है, वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर पीपीएच की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुँचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती

0: माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, और माता का विशेष ध्यान रखें। और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: Yo, what's up?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़वा यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
6: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेसा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15 से 20% जो रेसा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5 से 3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रोगी रागी युक्त आहार

0: में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिसे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
0: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है। इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है। अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें, और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्बेंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई 2 तरह से की जाती है। एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है, एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए, ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की धूप को मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उसे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर

0: जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 केजी नेत्रजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 केजी नेत्रजन, 30 केजी फास्फोरस P2O5 और 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए, और दूसरी जो आधी मात्रा जो शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण। तो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोप्रोट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आधारित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें, और रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
1: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
0: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379 जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में ये मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526। ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी इसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352

0: जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई, इसकी परिपक्वता अवधि ये सौ ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है। औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404 ये BAU रांची से विकसित की गई और RAU8 ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110-115 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं और रोकथाम कैसे करें हम?
0: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तियाँ को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है। इससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियां पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है, जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदनाशक दवा जैसे मेनकोजेब, कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में झुलसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम, कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर की दर से छिड़काव करें और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है। और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएं तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है, जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें ये जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटली रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग। यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं, जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है, वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है, तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्त कीट एक पतंगा होता है, जबकि लार्वा तने को छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेड हट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमिथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुआई करें जिससे कि रोग से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है और बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियाँ रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें

0: और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा, जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
1: जी, तो किसान भाइयों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: 19 कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।

सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज

व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी जरूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांवों और दूरदराज इलाकों में। और जहां उपलब्ध भी होती है, वहां हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है।

0: उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी, और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
1: सिर्फ माँ के स्पर्श से? यह बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?

0: रू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है जो उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है।
1: ओ, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
0: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
1: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
0: बिल्कुल असरदार है। कई शोधे में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
1: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
0: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
1: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
0: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
1: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
0: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
1: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
0: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
1: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
0: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है, उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
1: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बढ़ने लगता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
1: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है।

0: जी हाँ बिल्कुल, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
1: तो साथियों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज़ के साथ कुछ सावधानियाँ भी ज़रूरी होती है। क्या कंगारू मदद केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फ़ोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
1: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए, क्या इसका कोई समय तय होता है?
0: कम से कम 1 घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
1: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
0: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
1: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं।
1: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे

0: यार तभी से।
1: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, और खासतौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं। और पशुओं की देखभाल इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर। सर आप हैं KVK सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए। खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उसका छत कहीं से लीकेज नहीं हो। अगर कहीं से लीकेज वगैरह है तो आप उसको ज़रूर हटा दें, उसको सही दुरुस्त करवा लें। दूसरी बात कि आप अपने इस मौसम में अपने पशुशाला को बिल्कुल ड्राई रखें, पानी जमा नहीं हो, ये नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तीसरा जो हम लोगों को करना है कि उसमें वाटर लॉगिंग, आपके जहां पर भी आप पशु रख रहे हैं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो उसका बेडिंग जो यूज़ करते हैं स्ट्रॉ हस्क वगैरह यूज़ करते हैं आप, उसको आप ज़रूर सूखा बेड मटेरियल उसमें यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को क्राउडिंग नहीं करें, उसका जो एक प्रॉपर स्पेस है उस स्पेस में अपने पशुओं को रखें।
2: सर ये तो बात हो गई रहने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए। अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए?
4: देखिए किसान भाइयों, इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बाढ़ भी का सीज़न आ जाता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि ज़रूर सीख लें पहले, और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो। दूसरा, आप मिनरल मिक्सचर आप ज़रूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए। चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा किए हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
2: सर बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
4: देखिए अभी के मौसम में खास करके खुरा एवं मुंह पका रोग जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये ज़रूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अकरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपनी पशुओं को साल में 2 बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें।

0: दूसरा जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमेक्टिन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है तो थनैला बीमारी आपके पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें और पोटासियम परमैंगनेट जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में एक चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनैल से आप परेशान रहते हैं इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा जो अभी जो मौसम आता है, देखिएगा कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है HS जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है, तो आप ये कोशिश करें। और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD, HS, BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा जो खास करके जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें और दूसरा बरसात ख़त्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
1: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रिन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी। और आपको ज्ञात नहीं है या है ये बता दें कि ये जो बाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, थिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोकन, अठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वह परजीवी इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियाँ हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
1: जी सर। सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में ज़रूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें, बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
0: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से तो उसको अच्छे सीजर से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करें उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें और कम से कम 1 घंटे के बाद, बस जन्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं, बछड़े हों या बाछी हो, उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको ज़रूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है।

0: आप बच्चे के वजन का दसवां भाग एक दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का दसवां भाग कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर काफ़ी खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप वृद्ध बच्चों जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है उससे बचाव के लिए कम से कम उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से ग्रेजिंग से भी बचें। आप अगर उससे उसमें क्या होता है सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है FMDHS BQ इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं और खाने की भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो साइलेज और हे बनाना जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

0: सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
1: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहाँ धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है? और
1: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉडबेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं, BBF से, ब्रॉडबेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत, मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं चीना को, यानी जिसको

0: लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में। तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं के हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है। हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया हैं, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार हो गया। 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
1: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
0: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए। 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ बीबीएफ पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा। जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
1: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
0: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चीना की बात कर रहे हैं, तो चीना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु की हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7, जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7। इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है, हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके

0: ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्न की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,40 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,40 दवा नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,40 हम ले करके जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,40 जो 58% इसी का आता है उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें, और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता, बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैन्युअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों जो भी श्री अन्न की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2 भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए 1 बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद, और अगला 20 किलो बुआई के 40 से

0: 40 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा
1: जा रहा है जी,
0: जी,
1: तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आए कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया।
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर।

होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे। आपको बता दे कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा

RU8 और RU3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में. किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से. तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी. आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू. नमस्कार सभी को.
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है. तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं जैसे धान की बुआई करने के, तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं. पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI. तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी. हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है. अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा. तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी.
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है. तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते. हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है. तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली. एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR. ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई. तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं. आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराए तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए. तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है. तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहले चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई. और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं. मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर. दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं. अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है. एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें. जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना. DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज़ होते हैं ना दाने के, उसी साइज़ से कम हो जाए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं. हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं. तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे. तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है. तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा. तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए. उसके बाद जब

थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरन दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज, हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से

मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी, आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर। तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीजें जो होती है, मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपके सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने। और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बन लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन, 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए। और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 into, मतलब 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप, जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया
कि 220

0: केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहला पहले हमने आधा कर लिया और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है यानी जब उसकी फलियां आती हैं तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमाव होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में वो होती है कि वीडिंग, आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, PUSA RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा

0: कुछ सोचते हैं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं काफ़ी हटकर एक अलग विषय, और वो हमारा विषय है आज सिंदूर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे श्रोतागण हैं वो समझते होंगे भाई, सिंदूर को बस किसी केमिकल या रंग को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी भी खेती आप कर सकते हैं, इसके भी पौधे तैयार किए जाते हैं, और पूरी प्रोसेस को वैज्ञानिक तरीके से कैसे बनाया जाता है सिंदूर, आज वो सारी बातें लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर वी साजिता बानू। और मैडम, मैं आप सभी को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और पूरी जानकारी आज विस्तार से हम उनसे जानेंगे कि सिंदूर की खेती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद अनु।
5: मैडम, बिहार में सिंदूर की खेती की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
7: बिहार में सिंदूर की खेती इसीलिए इसका ज़रूरत हो रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे जो नेचुरल कलर है, जो प्राकृतिक रंग है, इसका आज के डेट पे बहुत ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो भारत में कहीं ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो बंद कर दिया गया है सिंथेटिक कलर उसके, और उसके बजाय सिंथेटिक कलर के बजाय प्राकृतिक रंग को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो जैसे कर्नाटका है, वहाँ पर प्राकृतिक रंग का पूरी तरह से इस्तेमाल करने को कहा गया है। और बिहार में जैसे आप देखेंगे जो सिंदूर है, इसके दो तीन पौधे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन जो है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान पे रखते हुए जहाँ पे ऐसा एक स्टेट जहाँ सिंदूर का इतना महत्व है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मैंने देखा है जहाँ पे सिंदूर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा में सिंदूर की काफ़ी उपयोग होता है, और इसी तरह से होली है जहाँ पे रंग प्राकृतिक

0: रंग की इस्तेमाल की ज़रूरत है। और मेन जो खाने पीने में जो आप रंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अगर आप सिंथेटिक कलर्स यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत तरह की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर उसमें से एक बीमारी है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंदूर की खेती बिहार में हमें शुरू करनी चाहिए। और हम लोगों ने इसको कहीं हद तक हम लोगों ने इस पे काम भी शुरू कर दिया है, पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं।
1: अब हम बात करना चाहेंगे बिहार क्षेत्र की, तो मुख्यतः आपने बिहार क्षेत्र को इसकी खेती के लिए क्यों फोकस?
0: जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऑलरेडी इसकी खेती की जाती है, और बिहार एक ऐसी रीजन है जहाँ पे अब तक इसकी खेती की शुरुआत नहीं हुई है। तो अब समय आ चुकी है जहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसकी खेती को शुरुआती तौर पर शुरुआत करना है।
1: जी, तो अभी तक बिहार में सिंदूर की खेती नहीं की गई थी, लेकिन अब इस पर रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्द बिहार क्षेत्र में भी सिंदूर की खेती की जाएगी। श्रोताओं, अब हम थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। तो पौधा इसका हम कैसे तैयार करेंगे?
0: अच्छा, इसका जो पौधा है, देखिए इसके तो आप मेनली इसको बीज से भी पौधा तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीज से पौधा जो तैयार करते हैं इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे मेन इसकी जर्मिनेशन पे अगर हम बात करें तो इसकी जो जर्मिनेशन है काफ़ी लो है। जो सीड होती है सिंदूर की ये काफ़ी हार्ड होती है और बहुत कम जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो हमें पाया गया है। तो हमने और दूसरे इसका जो है अल्टरनेटिव ढूंढा है, जिसपे हम टिश्यू कल्चर पे भी काम कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने कुछ हद तक सफलता हासिल किया है।
1: अब इसके रखरखाव के बारे में बात करते हैं। पौधे तो हम लगा लेंगे जो भी वैज्ञानिक तरीका है उसे, लेकिन अब इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, तो किस प्रकार हमें इसकी देखरेख करनी चाहिए?
0: जो मेंटेनेंस है, आपको जो इनिशियल टाइम है, जो शुरुआत में क्या होता है, जैसे बीज से आपका पौधा जैसे जर्मिनेट होती है, तो उस समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीज को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो उस वक्त बारिश होना बहुत ज़रूरी है। बरसात के मौसम पे इस बीज को जर्मिनेट करते हैं हम। अगर गर्मियों के मौसम पे ये बहुत जब सीड अगर जर्मिनेट कर भी जाता है तो ये बचता नहीं है और ये डेथ कर जाती है। और इसमें एक बार आपकी सीड अगर जर्मिनेट हो भी जाती है तो कुछ जैसे शुरुआत में आपको इस जैसे कंटिन्यूसली इसको पानी देना, दिन में दो बार आपको इसमें पानी देना पड़ता है, और जैसे एक साल तक तो पूरा इसको मेंटेन करना पड़ता है आपको, और जैसे एक बार जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो आपको इसकी मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस पे भी ये काम करता है, ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है।
1: जी, हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। मैडम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें?
0: जैसे आप अच्छा क्वेश्चन है अनु आपका, तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी का ये मेन जो है हमारा टिश्यू कल्चर है। जैसे सभी को पता है टिश्यू कल्चर जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग इसके प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों और बहनों को जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू जब हम पौधा तैयार करेंगे तो इसे हम कभी भी ये पौधा उनको दे सकते हैं। जैसे अगर हम सीड के थ्रू अगर इसे जर्मिनेट करते हैं तो हमें बरसात के दिनों ही इसको जर्मिनेट करना पड़ता है, तो उस ये सब समस्या हमें नहीं देखना होगा। और हम जो है थ्रू आउट द ईयर साल भर हम पौधा जो है अपने किसान भाइयों और बहनों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और दूसरी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम ये जो प्राकृतिक रंग है प्लांट को प्लांट है उसमें से ना लेकर हम उसको अपने लैब में ही प्रोड्यूस करें, ये भी हमारी कोशिश है जिस पे हम काम कर रहे हैं।
1: और इसके उपयोग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
0: जी, जैसे मैं आपको बता दूं, जो सिंदूर है इसके बीज, ये जो पौधा होता है इसके जो बीज होते हैं इसमें से इसका रंग को निकाला जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है ये मेनली जो है अगर आप देखो तो खाने जो खान पान है आपके उसमें जो प्राकृतिक रंग के इस्तेमाल होता है उसमें ये यूज़ होता है, और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स में जैसे लिपस्टिक में आप इसका यूज़ किया जा सकता है, और जैसे इसका सिंदूर जो आप लगाते हैं वो उसमें, टीका इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: और मेनली अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो जो ये कमर्शियली ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे इसका पूरा इस्तेमाल जो वो करते हैं वो खाने पीने के लिए करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे आप लोग जो अमूल बटर खाते होंगे और जो भी बटर आप खाते हैं यहाँ पर, जो हमारे बिहार में जो सुधा डेयरी काफ़ी फेमस हो रखी है, अगर आप उनके भी बटर अगर आप देखो तो उसमें जो प्राकृतिक रंग की इस्तेमाल हुई है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा पैकेट में एनाटो। एनाटो जो है ये सिंदूर का जो है इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नाम है। जैसे सिंदूर जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम एनाटो के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप कुछ बटर के पैकेट में भी अगर आप देखेंगे जो पीले पीला जो कलर होता है बटर का, वो इस सिंदूर का ही रंग होता है जिसे हम एनाटो भी कहते हैं।
1: तो अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा इससे?
0: देखिए, सबसे पहला तो ये लाभ होगा हमारे किसान भाइयों और बहनों के कि वो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो काम कर रहे हैं, कि वो प्राकृतिक रंग को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप शुरुआती दौर में आपको इसकी मेंटेनेंस है और उसके बाद ये ज़ीरो मेंटेनेंस है, तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पे इसकी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार में खासकर मुझे लगता है कि आप इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको बहुत लार्ज एरिया में अगर कल्टीवेट करते हैं, इसकी फार्मिंग करते हैं, तो इसको हम आगे चलकर कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ में कनेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं जहाँ पे इसकी डिमांड है। हालांकि मुझे लगता है कि बिहार में भी इसका काफ़ी उपयोग है, जहाँ जैसे सिंदूर जो नेचुरल सिंदूर है वहाँ पर, और तो बिहार में ही पहले इसकी इस्तेमाल की जा सकती है और अदर स्टेट में भी दे सकते हैं हम इसको, कुछ फैक्ट्रीज में भी इसको हम कनेक्ट करके दे सकते हैं जहाँ पे आजकल एनाटो जो है ये सिंदूर जो है काफ़ी ग्रोइंग है। पिछले सालों से भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डिमांड है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि ये जो नेचुरल जो केसर का जो रंग है ये केसर को रिप्लेस कर रहा है। तो हम जो ये सिंदूर से हम तीन तरह के रंग को निकाल सकते हैं, जैसे नारंगी, लाल और पीला। तो ये और केसर जहाँ पे बहुत महंगा होता है, ये जो सिंदूर का रंग है ये काफ़ी आपको सस्ते में मिल जाती है
1: जी। और अगर हम इसके फल देने की बात करें तो ये जो पौधा हम लगाएंगे वो कितने साल बाद फल देगा?
0: जैसे अगर आप इसके पौधा लगाते हैं तो 3 साल बाद आप इसका फल को आप ले सकते हैं, और फल से आप उसके जो बीज उसके अंदर होती हैं, जिसमें एक फल में आपको 40 से 50 बीज मिल जाते हैं, तो उस बीज से आप इसका रंग निकाल सकते हैं
1: जी। तो एक पौधा वो कितने साल तक जीवित रहता है, इसकी आयु कितनी रहती है?
0: लगभग 20 साल तक ये पौधा रहता है और जीरो मेंटेनेंस पे ये रहता है।
1: किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आज आपने सिंदूर की खेती के बारे में जाना, किस प्रकार सिंदूर बनता है और प्राकृतिक तरीके से कैसे बनाया जा सकता है सिंदूर, और हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे आय का स्रोत बन सकता है, व्यवसाय का स्रोत बन सकता है। आज पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे बीच लेकर आई थी डॉक्टर वी साजिदा बानू, और ये पूरी जानकारी आप सभी और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हम समय समय पर अपडेट आपको करते रहेंगे सिंदूर की खेती के बारे में। और फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू।

0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर

आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतः रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी

0: प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
1: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
1: तो मैम, खरीफ प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा वेबस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा

0: रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई

0: चाय के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए, जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के एक हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोदकर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में एक हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
4: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
6: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
6: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है, और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है, जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है, तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
7: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर

जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था, अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो

एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है। ऐसा नहीं है, ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है। इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी, और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी।

0: शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है। आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए। आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं, और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है,
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, अब बलगम की जांच कराइए, टीबी हारेगा।

0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस एन रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
1: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है। यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बभनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुँच

0: जाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशकों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, तना भेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: तना कीट भेदक, तना भेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की बढ़ती कोमल में भेदक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
1: जी।
0: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों, जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम बताना चाहते हैं इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना भेदक का बचाया जा सकता है। तना भेदक व्यस्त को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना भेदक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना भेदक की आर्थिक क्षति होने पर कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
1: जी, तो ये बात हो गई तना भेदक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए?
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुँचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्ती

0: कीड़ों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 मिलीलीटर या थायोमिथोएक्जेम दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जिसकी इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से ताकि वयस्क कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या 1 से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोज डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें?
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है जिससे केवल 1 प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का वयस्क हल्का बादामी रंग का होता है तथा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। वयस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं फसल ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेंढ को उगे खरपतवार

0: संसार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या एक वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का 90.8 MHz पर। मैं हूं अनु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता श्री मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और आज हमें बताएंगी सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन के बारे में। तो क्या महत्व है और कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, बीज बुआई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, सारी बातें आज मैडम से जानेंगे हम। मैडम स्वागत है आपका।
7: धन्यवाद अनु।
6: मैडम, तो सबसे पहले सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दें।
7: किसान भाइयों, मैं आपको जैसा कि अनु बता रहे थे कि इसका क्या महत्व होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले महत्व के बारे में बताती हूँ। सब्जी की नर्सरी तैयार करना सब्जी उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पौध तैयार करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि नर्सरी में पौध तैयार करते समय उचित सावधानी व उन्नत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे तैयार होने वाली पौध व उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। टमाटर, मिर्च आदि फसलों की पौध तैयार करते समय कृषकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखने से तैयार होने वाली पौध में विषाणु जनित बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे मुख्य खेत में पौधरोपण के बाद बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद कृषकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कृषकों को पौध तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रहे कि नर्सरी के लिए ऊंचाई वाला स्थान उपयुक्त रहता है। समतल व अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि श्रेष्ठ होती है, जहां सिंचाई का साधन भी समीप हो एवं सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो। चयनित स्थान यथासंभव प्रतिकूल मौसम जैसे लू, शीतलहर एवं पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भूमि की तैयारी पौधशाला के लिए बहुत महत्व रखता है। भूमि की अच्छी तैयारी के लिए नर्सरी क्षेत्र की गहराई जुताई करें, मिट्टी को ढेले रहित एवं भुरभुरी बनावें व कंकर, पत्थर, खरपतवार आदि अलग करें। अच्छी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सरी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय ऊपरी सतह में मिलावें। पौध तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी छोटी क्यारियां उपयुक्त रहती है। सामान्यतः 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां उपयुक्त रहती है, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी बेड्स की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं हो, ताकि सिंचाई, खरपतवार हटाने एवं पौध संरक्षण आदि क्यार करने में सुविधा रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र 1/20 भाग में नर्सरी लगाई जाती है। टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर में रुपाई के लिए

100 से 125 वर्ग मीटर तैयार क्षेत्र में पौध लगाई जाती है, जबकि एक हेक्टेयर प्याज, बैंगन, मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए 500 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। तैयार क्यारियों में बीज की बुआई से पूर्व भूमि जनित बीमारियों व कीटों आदि से पौधों को बचाने के लिए 4 से 5 ग्राम थायराम या कप्तान व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% कण प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। नर्सरी में बुआई हेतु बीज में आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एवं सही किस्म का स्वस्थ बीज होना चाहिए। अतः बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए क्षेत्र विशेष के लिए उद्यान विभाग व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई किस्मों के बीज को ही बुआई के काम में लें। साथ ही बीज कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। बीज की बुआई ठीक समय पर करें। विभिन्न सब्जियों के लिए बीज की बुआई का समय अलग अलग होता है, जैसे कि टमाटर फसल के लिए वर्षा मौसम में बुआई हेतु जून जुलाई में करना चाहिए तथा 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वसंतकालीन टमाटर हेतु बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है तथा 150 से 250 ग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन बैंगन हेतु बुआई जून से जुलाई में करें तथा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। वर्षाकालीन तथा वसंतकालीन मिर्च की बुआई का समय मई जून होता है तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगेती फूलगोभी की बुआई का समय मई जून तथा बीज की आवश्यकता 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की होगी। प्रति हेक्टेयर मध्य फूल गोभी बुआई हेतु 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी तथा बुआई का समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। पछेतु फूल गोभी के लिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रखें तथा 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी का बुआई का समय सितंबर दिसंबर है तथा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। रबी प्याज की बुआई अक्टूबर नवंबर में करें तथा इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ प्याज की बुआई जून माह में करें तथा इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की बुआई से पहले उसे उपचारित करना आवश्यक होता है। उन्नत किस्म का बीज लेकर बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कप्तान प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। तैयार नर्सरी बेड्स में बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए, जिससे निराई गुराई, उर्वरक प्रयोग एवं पौध संरक्षण कार्य आसानी से किए जा सके व अच्छी स्वस्थ पौध तैयार हो। ध्यान रहे, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होवे। बहुत छोटे बीजों का उनकी मात्रा से दुगनी रेत मिलाकर बोना चाहिए ताकि क्यारियों में इनका वितरण सामान्य रूप से होए। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। इसके लिए बीज बोने के पश्चात उनके ऊपर खाद एवं रेत 1:1 के मिश्रण की हल्की परत बिछा दी जाती है ताकि सिंचाई करते समय बीज इधर उधर नहीं फैल पाए। बीज बुआई के तुरंत बाद झारे से सिंचाई करें। सर्दियों में कम तापक्रम के समय बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए क्यारियों को हल्के घास फूस से ढक देना चाहिए, परंतु अंकुरण होते ही इसे तुरंत हटा देना अच्छा होता है। अब सिंचाई की बात करें तो सब्जी नर्सरियों की क्यारियों में सिंचाई सामान्य रूप से तथा धीरे धीरे फुहारे से करना चाहिए, जिससे मिट्टी बहे नहीं।

0: पौध बड़ी होने पर नर्सरी बेड्स के चारों तरफ छोड़ी हुई खाली जगह में सिंचाई के लिए पानी को नर्सरी क्षेत्र से बाहर रोककर क्यारियों में पानी धीरे धीरे जाने दें। तेज हवा बहाव के साथ सिंचाई ना करें। सिंचाई करते समय नर्सरी बेड्स के ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। सिंचाई के बाद मिट्टी में पपड़ी आने पर गुराई करें, इससे जड़ों में वायु संचार बढ़ता है व खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। पौध संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में बीजों की बुआई के 10 से 12 दिन बाद जड़ गलन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए कप्तान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों की जड़ों के पास झाड़े से छिड़काव करें। बीज बुआई के 18 से 20 दिन बाद रस चूसने वाले कीड़ों से पौध को बचाने के लिए डाइमेथेट 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च आदि में विषाणु रोग के से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलते हैं, अतः नर्सरी तैयार करते समय पौध को इसके प्रकोप से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा रोगों का संक्रमण होने पर बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बाद भी इन रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका प्रकोप कम करने हेतु नर्सरी में नायलॉन जाली का उपयोग प्रभावी पाया जाता है, जिससे बेड्स को बीज की बुआई उपरांत 50 मैश की नायलॉन नेट से ढक दिया जाता है। इसके लिए नर्सरी के दोनों तरफ अर्धचंद्रकार तार लगाकर उस पर 50 मैश का नायलॉन जाली से नर्सरी की बेड्स को ढक लेते हैं, या फिर नर्सरी के चारों कोनों पर खूंटे गाड़ कर उन पर 50 मैश की जाली बिछाकर ढकने से ऐसी व्यवस्था करें कि जाली उड़े नहीं व हमेशा पौध क्षेत्र को ढकी रहे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जाली चारों तरफ से जमीन में दबी रहे, ताकि रस चूसने वाले कीट जो उपरोक्त विषाणु जनित रोग फैलाते हैं का प्रवेश ना हो सके। अब पौध का स्थानांतरण। पौध लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या फिर 4 से 6 पत्तियों की हो जावे, तब इसे मुख्य खेत में लगाएं। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि में यह अवस्था सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में आ जाती है, जबकि प्याज की पौध लगभग 8 सप्ताह में तैयार होती है। पौधे को मुख्य खेत में लगाने से पूर्व उसकी हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। इससे पौधे मजबूत हो जाते हैं व उनमें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए पौध तैयार होने के 4 से 5 दिन पहले नर्सरी में पानी बंद कर दें, लेकिन पौध उखाड़ने से 24 घंटे पहले बेड्स में अच्छी तरह पानी देवे, जिससे पौधे उखाड़ने समय जड़ों को कम से कम नुकसान हो। रोपाई से पूर्व पौध की जड़ों को फसल की सिफारिश अनुसार कीटनाशी रसायन में 15 से 20 मिनट तक डुबें। तैयार पौधे को मुख्य खेत की बनी हुई क्यारियों में फसल विशेष की सिफारिश के अनुसार निर्धारित फसलों पर कतारों में लगाएं व पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौध रोपाई का कार्य शाम के समय करना ठीक रहता है, जिससे रात की ठंडक में पौध स्थापित हो जाएं। इस प्रकार कुशल नर्सरी प्रबंधन से अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों व अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, यहाँ पर आपने आज जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का यह वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।

0: കൃഷി.
1: बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है.
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुढ़बा
1: खांसी?
2: हाँ,
1: इसको तो एक आध महीना हो गया.
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए.
1: डॉक्टर, खांसी तो है.
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए. दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है.
1: टीबी?
2: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.
1: ठीक है.
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है. सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ. तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं. स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. आइए जानते हैं मौसम का हाल. भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है. सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है. अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी. आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए. जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले. रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें. आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके. जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें. मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3. और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1. आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं. मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें. खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें. अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है. जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो. और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है. कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें. सघन बागवानी के लिए 5

5 गुना 5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2 गुना 2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5 गुना 1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम।

0: क्रम में पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
1: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
1: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
1: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
1: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
1: जी।
0: तो बिमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
1: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
1: जी।
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
1: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
1: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
0: जी। पूछिए पूछिए।
1: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
1: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे हुए अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
1: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन

0: मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोन व्हील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यही दूसरे कमरे में। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना।
3: हाँ,
0: टैक्सी
3: हाँ,
0: पे चलते हैं। हाँ, आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
0: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा

0: इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है, तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
0: सबसे पहले, किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछे, समझे, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहीं सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.

0: you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आरजे अनु, और आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे हर रोज के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम उन्नत कृषि है। इसमें हम बातें करते हैं उन्नत बातें खेती बाड़ी की, और आज एक ऐसा ही खास विषय जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो विषय है हमारा आज का, सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, सुगंधित धान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे चावल आपके दिमाग में उसके नाम आ रहे होंगे जिसकी खुशबू आपको यूं ही अपनी ओर खींचती होगी कि चलो हम इसे पकाएं घर में और खाएं। तो कुछ ऐसे ही सुगंधित धान की बात करेंगे हम, और उसकी वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता दूँ कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैडम।
2: सर, अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो इसकी क्या खासियत है और इसकी खेती कहाँ होती है?
4: मैडम, धान की विभिन्न किस्मों में सुगंधित धान का विशिष्ट स्थान है, जो उसमें विद्यमान खास गुणों के कारण है। यूँ तो सुगंधित धान की किस्मों में भी काफ़ी विविधताएं हैं, परंतु इसके चावल की क्वालिटी, खुशबू और महक लोगों के आकर्षण का मुख्य वजह बन जाता है। वैश्विक स्तर पर सुगंधित धान के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिकांश सुगंधित धान का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत में सुगंधित धान की खेती कहाँ होती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सुगंधित धान की खेती प्रायः हिमालय के तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में की जाती है, और ख़ासकर ये सुगंधित धान जो है ये अपनी खुशबू के कारण काफ़ी
2: प्रसिद्ध है,
4: प्रचलित है, और इसी खुशबू के वजह से ये लोगों की चाहत भी बनी हुई है, और हर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी हम खेती करें।
2: बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसकी खुशबू जो है वो आकर्षित करती है लोगों को, और इसकी खुशबू ही इसे अन्य धानों से अलग करती है, तो वो किस वजह से है इस सुगंधित धान में खुशबू?
4: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि खुशबू से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें खुशबू क्यों होती है।
2: जी,
4: तो मैं आपको और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में महक या खुशबू का होना ही उसका सबसे प्रमुख गुण है, और इस खुशबू के लिए बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें 2-acetyl 1-pyrrolin कंपाउंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो लगभग 12-13 की संख्या में हैं, लेकिन 2-acetyl 1-pyrrolin, जिसको संक्षेप में 2-AP भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सुगंधित धान में इस 2-AP की मात्रा और सुगंधित धान से लगभग 15 गुना ज़्यादा होती है।
2: अच्छा।
4: और सुगंधित धान में यह 2-AP 0.14 PPM होती है, जबकि असुगंधित धान में इसकी मात्रा 0.009 PPM होती है।
2: जी।
4: और अच्छी

0: मात्रा में ये 2 AP का निर्माण हो, इसके लिए धान की खेती, खासकर सुगंधित धान की खेती का जो उपयुक्त तापक्रम है और उसका रेंज है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है।
1: तो सर, अगर किस्मों की बात करें हम कि सुगंधित धान की हम अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं, तो इन किस्मों के हम नाम जानना चाहेंगे और साथ ही हम उसे कब लगाएं ये भी जानना चाहेंगे सर।
0: जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्में हैं, प्रभेद हैं, उसमें सुगंधा, टाइप 3, भागलपुर कतरनी जैसी अच्छी प्रभेद है जो प्रकाश संवेदी है, और इनमें एक खासियत है कि इनका जो पुष्पन होता है वो खास तापक्रम आने पर ही होता है, और ये किस्में लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब इनकी लंबाई, ये लंबी लंबे पौधे वाली किस्में हैं। और दूसरे किस्म हैं जो प्रकाश असंवेदी हैं, और उन किस्मों में राजेंद्र सुभाषिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सबौर सुरभित आदि श्रेष्ठ हैं, जिनके पौधे बौना किस्म के होते हैं।
1: तो सर, अगर स्वस्थ बिचड़े की हम बात करें तो इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए?
0: देखिए, सुगंधित धान को खासकर खुशबू के मकसद से ही लगाते हैं, तो उसका बिचड़ा तैयार करने के लिए भी किसान भाई को काफ़ी सावधानी की काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और किसान भाइयों को चाहिए कि सुगंधित धान की खुशबू का संबंध जो है, चूँकि वायुमंडलीय तापमान के साथ है, इसलिए उनको ये चाहिए कि अच्छी खुशबू या सुगंध के लिए पुष्पन का समय जो तापक्रम होता है वायुमंडल का, वह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इसके लिए सुगंधित धान के बिचड़ा हेतु बीज की नर्सरी में बुआई को सोच समझकर करनी चाहिए, और सुगंधित धान के बीजों की बुआई नर्सरी में जून के अंतिम सप्ताह से 10 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा होता है, और ख़ासकर भागलपुर कतरनी का जो बिचड़ा डालना है उसके लिए थोड़ा आगे का समय आपको लेना है, और भागलपुर कतरनी का बिचड़ा आप या हमारे किसान भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर डालते हैं तो उसमें अच्छी खुशबू प्राप्त होती है।
1: तो कितने दिनों के बिचड़ों की हमें रोपाई करनी चाहिए और कितने दूरी पर?
0: मैडम, यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बिचड़ा को रोपने से पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिचड़े की तैयारी हम अच्छी से करें।
1: अच्छा।
0: और बिचड़ा स्वस्थ हो तभी हमको फसल अच्छा मिल सकता है। तो स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए पहले हमको नर्सरी में बीज को बोना है, और बीज को बोने से पहले उससे हम बीज से उपचारित करेंगे। और किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 1 एकड़ में आपको धान की रोपाई करनी है, सुगंधित धान की रोपाई करनी है, तो उसके लिए नर्सरी का जो एरिया होगा वो लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा, और इसमें बीज बोने से पहले आपको लगभग 2 क्विंटल सरी गोबर की खाद को 10 से 15 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना होगा, और अंतिम कदबा के समय आपको खेत में, यानी 400 वर्ग मीटर की नर्सरी वाले प्लॉट में 3 किलो यूरिया, 2 किलो DAP एवं 1.5 किलो MOP यानी पोटास को समान रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी या राख में मिलाकर नर्सरी प्लॉट में आपको डालना है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिचड़ा जब लगभग 15 दिनों का हो जाए तो उस समय फिर आपको उसमें एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको नर्सरी वाले प्लॉट में लगभग 2 से 3 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है, और बिचड़ा उखाड़ने से पहले, यानी जब बिचड़ा आप उखाड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि उखाड़ते समय बिचड़े के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये सावधानी आपको स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए बरतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिचड़े की रोपाई कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुगंध

0: धान का बिचरा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तब उसकी रोपाई करनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि बिचरा उखाड़ने से पूर्व नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए ताकि बिचरा आसानी से उखड़ जाए और जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और बिचरा की रोपाई आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर लगाएं और एक स्थान पर एक से दो बिचरा को ही लगाएं, इससे ज़्यादा बिचरा नहीं लगाएं, अन्यथा फिर टिलरिंग में कमी आ जाएगी। और बिचरे को रोपने से पूर्व उसकी जड़ों को जैव उर्वरक जैसे एजो एस्पिरिलम पीएसबी और केएसबी कल्चर के घोल में 15 से 20 मिनट तक आप डुबो कर रखें, यानी धान के बिचरे के जड़ों को इन जैव उर्वरक दवा के कल्चर के घोल से उपचारित करके ही रोपाई करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
1: सुगंधित धान के लिए ज़रूरी है खाद और उर्वरक की मात्रा जानना, तो कितनी मात्रा दें और इन्हें हम कब डालें?
0: तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में जैसे आप राजेंद्र सुवासिनी या सवौर सुरभित जैसे प्रभेद को लगा रहे हैं, यानी सुगंधित बौनी किस्मों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो उर्वरक डालना है उसे अंतिम कदवा के समय एक एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम डीएपी, 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर समान रूप से आपको खेत में बराबर रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को राख या मिट्टी में मिलाकर अकेले डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, इसको अकेले इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी या राख में मिलाकर उसको कदवा के समय खेत में समान रूप से छींट देना है। और जब फसल 25 दिनों का हो जाए मतलब रोपनी के 25 दिनों बाद आपको पुनः 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पहला टॉप ड्रेसिंग करना है और दूसरा टॉप ड्रेसिंग करना है जब गाभा निकलने की अवस्था आवे तो उस समय फिर 20 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के समय कोशिश ये करना चाहिए कि खेत में पानी लगा हुआ नहीं रहे और बेहतर हो कि खेत में अगर पानी ज़्यादा लगा है तो पानी को निकाल दें, टॉप ड्रेसिंग करें और टॉप ड्रेसिंग करने के तीसरे दिन फिर खेत में पुनः पानी लगा दें। यहाँ मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में जो हमने बताया है उर्वरक की मात्रा वो राजेंद्र सुवासिनी और सवौर सुरभित के लिए था, लेकिन अगर आप भागलपुर कतरनी लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कदवा के समय आपको डीएपी देना है 25 किलोग्राम, यूरिया देना है 10 किलोग्राम और पोटास देना है 15 किलोग्राम। और जब इसकी टॉप ड्रेसिंग प्रथम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 दिनों के बाद तो उसमें मात्र 10 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करना है पहला, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग फिर गाभा वाली अवस्था में करेंगे तो उसमें भी मात्र 10 किलोग्राम यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो धान में लॉजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो धान के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है।
1: तो ये बातें हो गई सावधानियों की। और डॉक्टर साहब अब ये जानेंगे हम, सिंचाई प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह हमें सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए सुगंधित धान की खेती में?
0: मैडम ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान को कहते हैं कि जल ज़्यादा प्रिय होता है, धान के लिए जल प्यारा होता है, और एक कहावत भी है कि धान के खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए। तो धान के खेतों की सिंचाई में ये किसानों को पहले से पता है और उन्हें सावधानी भी बरतनी है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि रोपाई के बाद लगातार 2 सप्ताह तक खेत में पानी लगाकर रखें ताकि खरपतवार का अंकुरण ना हो, और अगर आप खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किए हैं तो उस दवा का भी प्रभाव सही ढंग से हो सके। उसके बाद यह ध्यान रखें कि 2 दिनों से ज़्यादा खेत पानी के बिना ना रहे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार ना पड़ने पाए, और यहाँ मैं

0: ये भी बताना चाहूँगा कि पुष्पन के समय मतलब फ्लावरिंग के समय खेत में पानी की बिल्कुल कमी ना हो, और धान कटाई के 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 दिन पहले अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें, और ऐसा करने से बाद की जो रबी फसल की बुआई आप करने जा रहे हैं उसकी बुआई भी समय से संभव हो पाएगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपके खेतों में किसी भी परिस्थिति में दरार न पड़े। पानी मतलब अगर 2 दिन तक अगर खेत खाली है तो आपको 3रे दिन हर हाल में पानी खेत में डाल देना अनिवार्य है।
1: तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार की समस्या हो जाती है तो उसका निदान कैसे करेंगे?
0: जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खरपतवार की समस्या से हर किसान रूबरू होते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर खेत में आप गोबर की खाद या FYM डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि गोबर की जो खाद आप डाल रहे हैं वह पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ हो, ताकि उसमें खरपतवार के बीज जीवंत रूप में ना रहे, वो बिल्कुल गोबर के साथ ही वो भी सड़ जाएं। तो आपको पूर्ण रूपेण सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि आप जो बिचरा डाले हैं या बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज भी जो है खरपतवार से मुक्त हो, तो आपको ऐसे संस्थान से बीज लेना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसमें खरपतवार के बीज ना हो। तीसरी बात कि कदवा के समय बहुत किसान भाई लापरवाही बरत जाते हैं, जैसे तैसे कदवा कर देते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे खरपतवार खेतों में जिंदा रह जाते हैं। तो कदवा करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि हम कदवा ठीक से करें, ताकि खेत में जो भी खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से उनका जड़ उखड़ जाए और मिट्टी में पूरा लिपट के वो सड़ जाए। तो कदवा की तैयारी भी आपको ठीक से करनी है। और इसके अलावे अगर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आती है तो धान रोपाई के 2रे या 3रे दिन ब्यूटा क्लोर 50 EC या प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1 से 1.25 लीटर दवा को आप 15 से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर 1 एकड़ खेत में समान रूप से छींट दें। और कंडीशन ये है कि जिस समय आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपके खेत में कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी लगा हुआ रहे, ताकि पानी के लेयर के ऊपर ये दवा का लेयर आ जाए और जो भी नीचे से खरपतवार निकलने वाले हों उसको निकलने ना दे, वो खरपतवार नाशी दवा के संपर्क में आकर वहीं मर जाए।
1: जी,
0: तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर उसके बाद भी आपको या किसान भाई को खरपतवार की समस्या नजर आती है तो धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद पुनः 20-pyrivec सोडियम नाम 10% के नाम से दवा आती है, और इस दवा का 80 से 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव अगर किसान भाई करते हैं तो उनको खरपतवार से निजात मिल जाएगी और फिर उनका फसल स्वस्थ हो जाएगा। और अच्छी टिलरिंग जब हो जाएगी, उसके पौधे जब घने हो जाएंगे, तो फिर उसके फसल को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा।
1: जी, तो ये तो बातें हो गई खरपतवार की जो समस्या उसका निदान कैसे करें। और डॉक्टर साहब, अगर कीट और रोगों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं जो धान सुगंधित धान में लग सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
0: देखा जाए सुगंधित धान, जैसा नाम है सुगंध, तो सुगंध सबको प्यारा होता है।
1: जी,
0: तो सुगंधित धान में कीट और रोग के प्रकोप भी काफ़ी होते हैं।
1: जी,
0: और खासकर यह देखा जाता है कि सुगंधित धान में धर छेदक जो कीट हैं उसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, और इसके लिए फसल की देखभाल किसान भाई को नियमित रूप से करनी चाहिए। और जैसे ही उनको ये नज़र आए कि 2% से ज़्यादा मृत मूल कल्ले अथवा सफ़ेद बालियाँ नज़र आ रही है खेत में, तो शीघ्र उन्हें उचित कीटनाशी दवा का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आप

क्लोरपाइरीफॉस 20 EC की 1 लीटर मात्रा को अथवा फिप्रोनिल 80% WG की 15 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे तो धर छेदक कीट से फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई अपने खेतों में फेरोमन ट्रैप 5 फेरोमन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं या ट्रैको कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्ड पर्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कीड़े के प्रवेश को या कीड़े के भक्षण में या कीड़े को मारने में ये कारगर सिद्ध होगा। और दूसरा कीट है गंधी कीट। दूध बनने की अवस्था में गंधी कीट दानों से रस चूस लेते हैं जिस कारण दाने खखरी हो जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मालाथियान 5% धूल या मिथाइल पाराथियान 2% धूल की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिस समय पौधे पर ओस होते हैं उस समय इसका अगर भुड़काव करेंगे तो ये गंधी कीट जो हैं आपके खेतों से भाग जाएंगे और फिर आपके फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कीट से अपने फसलों की बचाव कर सकते हैं। और रोग भी सुगंधित धान में लगते हैं जिसमें खास करके पत्र लांछन जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, झोंका जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं, और जीवाणु पत्र झुलसा जिसे BL भी कहते हैं, और आवरण झुलसा जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक है सुगंधित धान के लिए। तो किसान भाइयों इन रोगों से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार और बिचरा उपचार करें, अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और रोग के लक्षण दिखते ही उपचार हेतु संबंधित विभाग के वैज्ञानिकों से अथवा विश्वविद्यालय के किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके फसल में पत्र लांछन रोग लगा है तो इसे बचाव हेतु आप डाइथेन Z78 या मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 3 से 4 बार छिड़काव करें और शीत ब्लाइट से बचाव के लिए वैलिडामाइसिन नाम की दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 3 बार खरीफ फसल में छिड़काव करें और BLB से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा की 20 ग्राम मात्रा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो BLB से भी आपके फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे मैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहूँगा, चूँकि फसल की कटाई और तैयारी भी सुगंधित धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, तो सुगंधित धान की गुणवत्ता खुशबू और उत्पादन पर कटनी के समय का काफ़ी असर पड़ता है और विलंब से कटाई करने से दाने झड़ जाते हैं चावल की मात्रा में और उसकी खुशबू में भी कमी आती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि सुगंधित धान के फसल की कटाई 50% फूल आने के 30 से 35 दिनों बाद जिस समय दाना में लगभग 20 से 24% नमी हो उसी समय उसकी कटाई कर लें और खेत का पानी कटाई के 10 से 15 दिनों पूर्व बाहर निकाल दें। कटाई के दूसरे दिन ही कोशिश करें कि उसकी हम थ्रेसिंग कर लें और जो थ्रेसिंग करने के बाद आपको धान मिला है उसको सीधा धूप में ना सुखाकर उसको छाया में तब तक सुखाएं जब तक कि उसमें 12 से 14% नमी ना आ जाए। ऐसा करने से मिलिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जब इसका भंडारण आप करेंगे तो भंडारण करने से पूर्व आपको ये एश्योर कर लेना चाहिए कि सुगंधित धान का भंडारण हम उस समय करें जब धान में नमी का स्तर 12 से 14% तक आ जाए और भंडारण गृह की सही ढंग से सफाई और कीटनाशक दवा से अच्छी तरह से वो उपचारित हो तभी आपको भंडारण करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर
सारे सही तरीके को अपना

0: आकर किसान भाई अगर सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और ये पैदावार लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो सकती है और जिसका बाजार भाव भी उनको अच्छा मिल सकता है।
1: तो जैसा कि किसान भाइयों और श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप सही तरीके से सुगंधित धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार और बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। तो ये वैज्ञानिक खेती और इसकी तैयारियां पूरी यहां पर बताई गई हैं, आपको किस तरीके से बिचड़े को तैयार करना है और इसके साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए, कौन सी किस्में सही हैं और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तो वैज्ञानिक खेती आपको यहाँ पर बताई गई पूरी की पूरी सुगंधित धान की। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को सुने और ज़रूर इसे अपनाएं और जब आप खेती कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर

0: चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request.

0: protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था इसकी यही प्रॉब्लम है
4: कब से
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात
3: खांसी
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर खांसी तो है
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है
3: टीबी
4: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए
3: ठीक है
4: टीबी किसी को भी हो सकता है अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए अब फिट हो जाइए नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है समझ गए भाई साहब आप आइए दो हफ्ते से ज्यादा खांसी तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन आइए जानते हैं मौसम का हाल भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1 आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 है जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च अगाध गोभी टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें लंबी किस्मों जैसे अल्पान कंथली मालभोग चिनिया G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन रोबस्टा बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद 500 ग्राम अरंडी की खली 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें रोपाई से

पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक संतूर, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 5,
3: पेज 105, यूनिट 5, वर्क इज वर्शिप, चैप्टर 9, वोकेशन। देयर इज अ QR कोड गिवन एट द टॉप राइट साइड ऑफ द पेज। Clicking on the QR code will take you to additional information about this chapter. Let us recite. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I met the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There's nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. The image on this page illustrates a cartoon scene of a boy walking home from school with a backpack. He is walking alongside a man carrying bangles on his head in a purple tray. The man is wearing a pink shirt and white dhoti. They are on a road with houses and trees around. The scene depicts a morning moment with sun shining through clouds. Page 106. When at 4 in the afternoon, I come back from the school, I can see through the gate of that house, the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. The image on this page depicts a boy coming back from school on a sunny day. While walking on a path beside a garden, he saw a gardener who is digging the ground with a spade. The gardener is wearing a white shirt. His clothes are muddy as he is digging the soil. The boy is walking past. He has a backpack and a water bottle. There are trees.

0: Sixth, a construction worker is mending shoes. For example, a chef's job is to cook delicious meals, not to drive a fire engine. That's something firefighters do. Write two sentences in your notebook for each picture, following the example provided for you. Page 116. Let us explore. There are four images on this page. In the first illustration, a beekeeper wearing protective gear is opening a beehive with bees around. In the second image, a photographer in a yellow dress is clicking a photo. In the third image, a teacher is teaching in her classroom. In the fourth image, a dancer is standing in traditional attire and dancing with expressive movements. Page 117. There are four images on this page. In the first image, a chef is cooking food. In the second image, a person in a green fight suit and helmet is standing beside a grey fighter jet with the Indian flag on its tail. Third, a farmer wearing pink shirt, white dhoti and yellow turban is standing in a field. He is keeping a check on his field through a tablet and a drone. Fourth, a florist in white shirt is arranging flowers on a wooden table with potted plants. Part A. Which vocation from the above illustrations would you choose for yourself and why? Part B. Is there any other vocation not mentioned in the pictures that you would like to take up as your dream job? Support your answer with a reason. Page 118. Note to the teacher. Point 1. Use this activity to create an opportunity to speak about various professions which may even go beyond the text. Point 2. Facilitate a discussion on not only traditional occupations but also new kinds of professions. Point 3. Help learners understand that no work is superior or inferior. Part C. Draw yourself in the selected vocation in the blank space provided. Blank space is provided for students to draw. Chapter 9 ends here.
1: Santoor, you were just listening to this audiobook, textbook of English for grade 5. Narrator, Mansi Chauhan. Sound recordist, Amarjeet Sarkar. Production assistant, Amarjeet Sarkar. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहाँ वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुँच।

0: या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
3: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
5: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है। और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं। और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है। बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है। और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है। और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है। और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबौर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैंगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबौर कृष्णकली भी शामिल है।
3: मैम, अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
5: बैंगन को लगाने के लिए एक हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग 250 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और दो जो जैसे क्यारी बनती है तो दो लाइन के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीज, क्योंकि बैंगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो लगभग

0: एक सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौध है उसका रुपाई का समय होता है एक महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में, तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रोपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में जिसकी बुआई करते हैं, और एक महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रोपाई करते हैं।
1: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
0: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रोपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में।
1: जी, और रुपाई की विधि क्या होती है?
0: बैगन की बिजड़ा जब एक महीने के लगभग हो जाते हैं उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रोपाई करते हैं। तो रोपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रोपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं, और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे, और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए, जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
1: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
0: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रुपाई के 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
0: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौध की वृद्धि जो है ये उस

0: सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
0: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं। और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे। और जब शरतकालीन जो फसल होता है, जब हार्वेस्ट होने लगते हैं, फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है, उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यही भी जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खरपतवार बहुत उगाते हैं, तो खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंटीमिथिलीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
1: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं, तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए, हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको, तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना का छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में

0: दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग लगभग एक हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है, उसके आधा मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसकी छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
1: और मैम रोग भी काफ़ी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: बैंगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है, तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा। बीज को हम लोग थाइरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बेंडाजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटालाक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप ख़त्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु ख़त्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं, तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो ख़त्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
1: मैम अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए, और उपज कितना होता है बैंगन का?
0: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है, तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी

0: चौड़ाई किया जाए, तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तोड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तोड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पे करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक। लेकिन बाजार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
1: सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से। सर आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है?
8: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक, या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
1: सर जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं ज़रूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
8: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत

0: मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
1: अच्छा।
0: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले, और ये अपने तरीके से मैक्रो माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
1: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
0: इनके कई सारे महत्व हैं, मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेजी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है, लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है, और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है, और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
1: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
0: जी
1: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
0: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बाजार में उपलब्ध हैं वो हैं यूरिया है, DAP है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर है, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20-25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहाँ पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की, और लागत में भी उसके मुकाबले पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले इसमें लागत भी कम है, भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं अपनी कृषि प्रणाली में, इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
0: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन, 44% तक फॉस्फोरस का पौधों तक पहुँचा सकते हैं फॉस्फोरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियाँ अपनाते हैं, जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी?
0: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हो या जल विलय उर्वरक हो, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य करें। मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें।

0: स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
1: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी है। सर और कुछ?
0: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है, तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय क्षति में, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, वहाँ पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
1: सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं
0: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड।

और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर

एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दुख का अधिकार।
1: समाज कई बार अलग अलग आधारों पर लोगों को बांटता रहा है, कभी धर्म और मजहब के लिए, कभी सामाजिक और आर्थिक असमानता के नाम पर। अक्सर हमारी वेशभूषा ही समाज में हमारे अधिकारों को तय करती है। एक ओर यह हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल देती है, तो दूसरी ओर जब भी हमारा मन किसी गरीब की अनुभूतियों को समझने की कोशिश करना चाहता है, हमारी पोशाक एक बंधन सा बनकर हमारी संवेदनाओं पर हावी हो जाती है। इस वर्ग संघर्ष की चेतना को यशपाल ने दुख के अधिकार कहानी में बखूबी उभारा है। यह सच है कि दुख की अनुभूति हर व्यक्ति को एक जैसी होती है, उसका दिल टूटता है। मगर यह कैसी मानवीय त्रासदी है कि निर्धन को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता और ना ही उसके पास इसका समय होता है, क्योंकि उसके जीवन का मूल प्रश्न रोटी से जुड़ा रहता है, जिसके सामने संवेदनाओं या भावनाओं की शायद कोई जगह नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है।
2: बाबूजी, बाबूजी, टमाटर ले लो, एकदम ताजे और दाम भी कम है।
3: क्या भाव
2: जी? ये मिल जाएंगे आपको 40 रुपए किलो।
3: 40 रुपए?
4: अरे ये महिला क्यों रो रही है? इसके विलाप का क्या कारण हो सकता है? खरबूजे का टोकरा लिए बैठी है और अपना मुंह घुटनों में छिपाए रोए जा रही है। मन कर रहा है इसके पास जाकर पूछूं, पर लोग क्या कहेंगे, मुझ पर फप्तियां कसेंगे। कहां ये कीमती पोशाक पहने मेरी छवि और कहां ये मलिन कपड़ों वाली स्त्री। चाहकर भी मैं उसका दुख बांटने में असमर्थ हो रहा हूं। ये हमारे समाज की कैसी विडंबना है।
5: अरे बाबूजी, जाइए अपनी राह, सोच क्या रहे हैं, ये तो बड़ी बेशरम है। अभी कल ही इसके जवान बेटे की मौत हुई है और आज ये बाजार चली आई सौदा बेचने।
3: सही कह रहे हो।
6: अरे मियां, लाहौल मिला कुवत, क्या जमाना आ गया है, खुदा खैर करे।
7: कलयुग है, घोर कलयुग, इन जैसे लोगों के लिए रोटी कमाना ही जैसे सब कुछ है। बस रोटी मिल जाए किसी भी तरह, ना माँ बेटे का रिश्ता, ना कोई धर्म करम, तभी तो अगले ही दिन आ गई माल बेचने।
6: हाँ भैया, अब इसे कौन बताए कि इसकी घर में सूतक लगा है, ऐसे में इसके खरबूजे खाने से किसी का धर्म कैसे बचा रह सकेगा।
4: हे भगवान, किस कदर कोस रहे हैं सब इस बेचारी को, क्या सब संवेदना शून्य हो गए हैं। इसने अपना

0: जिगर का टुकड़ा खोया है। क्या इसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है? जरा चलकर आसपास पूछता हूं, आखिर इसके बेटे को हुआ क्या था। इन महाशय से पूछता हूं, जरा सुनिए श्रीमान।
1: जी बाबूजी।
0: आप बताइए कि इस महिला ने अपना बेटा कैसे खोया?
2: लगता है आप यहाँ नए नए आए हैं। ये बुढ़िया मंडी में हर रोज आती है। इसका लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेतों में सब्जी बोने का काम करता था। इसी से इसके परिवार का गुजारा चलता था। लड़का कभी खुद आ जाता था और कभी खरबूजों की टोकरी उठाकर माँ को दे जाता था। यही सिलसिला बरसों से चल रहा था।
0: तो फिर
2: क्या, परसों सुबह सुबह जब वो खरबूजे तोड़ने गया तो उसका पैर सांप पर पड़ गया।
0: ओहो।
2: हाँ, और सांप ने उसे डस लिया। बुढ़िया ओझा को बुला लाई। ना जाने उसने कितने मंत्र फूके, पर इन सब उपायों से कुछ ना हुआ। डॉक्टर के पास जाने की हैसियत नहीं थी, सो इसका बेटा भगवाना चला गया।
0: ओहो।
2: अब पूजा की भी तो दान दक्षिणा का मसला भी उठा। घर में जो अनाज था सब दक्षिणा के भेंट चढ़ गया। रह गए रोते कलपते इसके बेटे के 2 बच्चे, पत्नी और खुद ये लाचार बुढ़िया।
3: भला हो समाज के पाखंडी पंडितों ओझाओं का, चाहे कुछ भी हो अपनी झोली भरना नहीं भूलते। किसे परवाह है उस दीन दुखियारी मां की मनोव्यथा की, उन भोले मासूम बच्चों के रुदन की और उस विधवा की जो कई दिनों से बुखार में तप रही थी। कौन लेगा इन सबकी खबर? इस प्रश्न पर समाज मौन रह जाता है, इनका रुदन गूंजता रह जाता है अनंत दिशाओं में।
4: हे भगवान, उठा क्यों नहीं लेता मुझको, उठा ही क्यों नहीं लेता।
3: इस गहन पीड़ा में भी मां को चिंता थी अपने बेटे भगवाना का तन ढकने की, उसके लिए नया कपड़ा लाने की, चाहे उनके हाथों में बजे खुचे मामूली जेवर छन्नी ककना भी क्यों न बिक जाएं। भूखे बच्चों को ढाढ़स भी बंधाना था।
4: लो बच्चों, खरबूजा खा लो, चुप हो जाओ। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
3: और फिर दुस्साहसी बुढ़िया अपने बेटे के लाए हुए खरबूजे समेट कर बाजार में बेचने चलती थी। किसी मानवीय संवेदना की शायद वो हकदार नहीं थी। दुनिया ने उसे निर्मोही और पत्थर दिल करार दिया था, फिर भी वो मुस्तैद थी बेटे को अंतिम विदा देने के लिए। पर इससे भी पहले उसके सामने बड़ा क्रूर प्रश्न था, रोटी का।

कैसा है ये सामाजिक न्याय। अचानक मुझे याद आई अपने पड़ोस में घटी एक घटना की, जिसमें एक संपन्न परिवार की महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। 2.5-3 महीने तक डॉक्टर उसकी सेवा में लगे रहे उसकी मूर्छा को ठीक करने के लिए। उस समय तमाम शहर उसके दुख में दुखी था। वो अमीर थी, उसके इर्द गिर्द एक सभ्य समाज की छत्र छाया थी, संपन्नता ने सब अधिकार उसे सौंप दिए थे। क्या पता इस बुढ़िया जैसी हजारों गरीब महिलाएं कौन कौन सी यातनाओं से आज भी गुजर रही हों।

0: मेरा मन कितना चाह रहा था कि उस बुढ़िया के कंधे पर सांत्वना का हाथ रख दूं, उसे भी दुख का अधिकार मिल जाए, पर ऐसा कर ना सका।
1: दुख का अधिकार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, सुनील लोहिया, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। वाचन स्वर परवेज गौहर। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
6: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
8: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू।

0: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है, या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं, तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है, और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है, और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं, जिस खेत में मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं, तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके, उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है, और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे, तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं, और आपके की मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के, उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट पोटाश का देना चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है, और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है, और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा, फिर बढ़ेगा, अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर 2 बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से 1 महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है, और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है, और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो

0: दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये बेटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके, और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई, अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है, तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का, और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके, और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है, तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया, तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है, तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है, और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम लोग जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खर पतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खर पतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खर पतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पे आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पे कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है, तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है, तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है, और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जो हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं, तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है, और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं, तो इसमें एक टेबलेट लगा

होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप, एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गोंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है, और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड सूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है, और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है, और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है, और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मल मूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड सूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए, या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा, उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं, और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है, जो नीम का जो तेल है उसका, जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड सूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है, घुलाना है, और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है, और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपके जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो एलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक एलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है, और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो

0: खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि वाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है, खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है, जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे, तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है। कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है, तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, ये येल्लो भेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जा कर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों, इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है। और उसके बाद जो कीटनाशी है, जैसे थायोमेथोक्सिम 25WG, इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सिम उपलब्ध नहीं है, देन आप जो है थायोमेथोक्सिम 25WG एक टारा के नाम से भी आता है, एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इमीडा क्लोपीड 17.8 SL, इसकी आधा ML मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो येलो भेन मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है, तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में तुकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है। और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया, थायोमेथोक्सिम या इमीडा क्लोरोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों का बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाइयों को, जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है, लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है, अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भ्रिंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भ्रिंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5%, उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से वो उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है, कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है, तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियोर ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है, देन आप जो है ये तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस्ट से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को, खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन रह जाती है तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीज़ें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगी हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई है, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आए सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
7: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ। पोषण वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका, उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहाँ पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियाँ उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना है। आजकल बाज़ार में

0: बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है,
1: या फिर यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी
0: कमजोर हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
1: तो मैम, इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्व से भरपूर, पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है, सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है, गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं, पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम, जेली, केचप, ये सब बनाया जा सकता है, और जब मौसम नहीं हो इनका तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है, तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
1: वैसे देखा गया मैम कि अभी शहरों की भी बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है जैसे नींबू के पौधे हो जाएं, मिर्च के पौधे हो जाएं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतरकर बाहर आकर हम बात करें शहरों के, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं। वैसे छोटे छोटे जो ज़्यादा वज़न वाले जो फल या सब्जी ना हो, वैसे पौधे लगाने लगे हैं। अब आप उनके टेरेस पर, छत पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वज़न वाले जो फल हैं, जो सब्ज़ी हैं, आप लगा सकते हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ हैं इसके। और मैम, अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
0: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन, उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज़्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं, जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है, तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुँच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो, ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है, तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है।
1: जी,
0: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए, जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके, ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बाड़ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे

0: तीन तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, चपन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई चौथी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए। फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के दो कोनों पर गड्ढों होने चाहिए जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए जो कि पोषण तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
1: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज़ कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
1: अच्छा।
0: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
1: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
1: अच्छा।
0: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवें प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी या दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर, अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू, अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट, ककड़ी आदि लगा सकते हैं और जून से अगस्त के बीच में हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं। कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छपन कद्दू, परवल, करेला मैंने पहले भी बताया को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा

0: तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है, बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमत्ता की एक कुंजी है।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं अपने घर के आगे जो बची खुची ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल करके। इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना, साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए, अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
7: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो सुनो, एक जरूरी बात आया।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है।

अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच करें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन. स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें. बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में. तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आर.एन. गुप्ता. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले. सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं. तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं. अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हजार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है. तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती ही है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है. तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा.
1: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए. कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं. और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो. अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व का जो प्रबंधन की समस्या हो, उससे ये कमी हो जाती है. तो ये भूमि समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है, इसलिए हमारा जो ज़मीन है जो खेत है वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है. तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जमने की समस्या ये ना हो. तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें. दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है.
0: जी.
1: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं. तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना जरूरी है, ताकि जो है इसमें रोग की समस्या, कीड़ों की समस्या, साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है. तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है.

0: जी।
1: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं, गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 केजी प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
0: जी।
1: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणु या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजिम है जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है जो बीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर उसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुंचता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है 2 क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने की समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है

उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दो कम से कम अवश्य रूप से करें ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने, जो दाल बने, उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है। तो कीटों में जो है कुछ कुछ बीमारियां लगती है, जो फली में फली मक्खी है, जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमीडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी निगरानी करना जरूरी है। और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरीपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाजार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं। और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणु जनित रोग होती है जैसे लीफ क्रिंकल रोग, जिसमें पत्तियाँ जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है और इसमें बहुत कम फलियां लगती है और यह पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होती है, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियां जो है फफूंद जनक होती है और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्राय सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसल में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं लाइन स्विंग

करते हैं तो उसमें जो है हमारी बीमारियाँ कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं, और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियाँ आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं, पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन

0: एक ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है, चूर्णी रोग बोलते हैं जिसको, पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर से है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है। ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह का ये बीमारियाँ हैं। कुछ बीमारियाँ जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियाँ हैं जो पत्तियों पे होती हैं उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजीम और मैनको जो मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियाँ जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जैंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और कालांतर में पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं छिड़काव करते हैं तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और महीने 3 के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर

0: जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो, तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन माताओं की, जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है, और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज़्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज़्यादा खून बहा हो, उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज़्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज़्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज़्यादा पानी हो या फिर दो बच्चे हों, तो उन्हें भी इस बात का, यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है, यानी कि एनेमिक है, उन्हें भी PPH का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार

डिलीवरी होती है उन्हें भी पीपीएच होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें पीपीएच का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमजोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो, तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को पीपीएच हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं है। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। वहीं सबसे जरूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या पीपीएस से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है, कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना जरूरी है, और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है, वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर पीपीएच की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है।
कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और माता का विशेष ध्यान रखें, और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: Yo, what's up?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़ुआ यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
6: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेशा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15 से 20% जो रेशा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5 से 3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है।

0: इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिसे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
0: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है। इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है। अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें, और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्बेंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई 2 तरह से की जाती है। एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है, एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए, ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की धूप को मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उसे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें। और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि तीन चार दिन बाद

0: जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 केजी नेत्रजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 केजी नेत्रजन, 30 केजी फास्फोरस P2O5 और 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए, और दूसरी जो आधी मात्रा जो शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण। जो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोप्रोट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आधारित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.1 liter एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें, और रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
1: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
0: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379 जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में ये मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526। ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी इसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352 जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये सौ ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109

0: नौ दिनों की है। औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404 ये BAU रांची से विकसित की गई और RAU8 ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110 115 दिन में तैयार हो जाती है और ये इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं और रोकथाम कैसे करें हम।
0: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी प्रमुख रोग व्याधियाँ हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तिया को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है। इससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियां पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदनाशक दवा जैसे मैनकोजेब कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में झुलसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर की दर से छिड़काव करें और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएं तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है। जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379 VL 356 VL 352 OEB 536 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें ये जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटली रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग। यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्त कीट एक पतंगा होता है जबकि लार्वा तने को भेद कर छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है एवं फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेढ़ हट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमिथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुआई करें जिससे कि रोग से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है और बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियाँ रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुआई करें तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं।

0: तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 40 क्विंटल 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा, जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर में 60 से 70,000 रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
1: जी, तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और

आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी जरूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांवों और दूरदराज इलाकों में। और जहां उपलब्ध भी होती है, वहां हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है?

0: क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधा लगा कर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: ओ, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफ़ी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफ़ी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोधे में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई, उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ। यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के, सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है। आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं, ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण सी चीज, लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू

0: ट्रू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगा कर यही केयर दे सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
0: जी हाँ बिल्कुल, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
1: तो साथियों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज़ के साथ कुछ सावधानियाँ भी ज़रूरी होती है। क्या कंगारू मदद केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फ़ोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
1: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय तय होता है?
0: कम से कम 1 घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
1: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
0: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
1: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं।
1: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे

0: पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, अब बलगम की जांच कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, और खास तौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं। और पशुओं की देखभाल इस मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर। सर, आप हैं KVK सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए। खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उसका छत कहीं से लीकेज नहीं हो। अगर कहीं से लीकेज वगैरह है तो आप उसको ज़रूर हटा दें, उसको सही दुरुस्त करवा लें। दूसरी बात कि आप अपने इस मौसम में अपने पशुशाला को बिल्कुल ड्राई रखें, पानी जमा नहीं हो, ये नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तीसरा जो हम लोगों को करना है कि उसमें वाटर लॉगिंग, आपके जहां पर भी आप पशु रख रहे हैं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो उसका बेडिंग जो यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ हस्क वगैरह यूज़ करते हैं आप, उसको आप ज़रूर सूखा बेड मटेरियल उसमें यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को क्राउडिंग नहीं करें, उसका जो एक प्रॉपर स्पेस है उस स्पेस में अपने पशुओं को रखें।
1: सर, ये तो बात हो गई रहने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए। अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए?
3: देखिए किसान भाइयों, इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बारिश भी का सीज़न आ जाता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि जरूर सीख लें पहले, और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें, जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो। दूसरा, आप मिनरल मिक्सचर आप ज़रूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए। चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा किए हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर आप ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
1: सर, बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
3: देखिए, बस अभी के मौसम में खास करके खुराए व मुंहपका रोग, जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये ज़रूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अक्रेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपने पशुओं को साल में 2 बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें। दूसरा, जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमेक्टिन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है तो थनैला बीमारी

0: कि पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी डिटर्जेंट साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें। और पोटासियम परमैंगनेट, जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में एक चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको, जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनैल से आप परेशान रहते हैं, इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा, जो अभी जो मौसम आता है, देखिएगा कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है, HS, जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो आप ये कोशिश करें, और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD, HS, BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो, तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा, जो खास करके जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है, उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें, और दूसरा बरसात ख़त्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
1: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें, और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रिन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं, वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी। और आपको ज्ञात नहीं है या है ये बता दें कि ये जो बाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, थिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोका, नठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वह परजीवी इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियाँ हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
1: जी सर। सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में ज़रूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें, बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
0: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा का जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से, तो उसको अच्छे सीजर से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करें उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें, और कम से कम 1 घंटे के बाद, जन्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं, बछड़े हों या बाछी हो, उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको ज़रूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं, जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप बच्चे के वजन का 1/10 भाग एक दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का 1/10 भाग कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर काफ़ी, खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप वृद्ध बच्चों, जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है, उससे बचाव के लिए कम से कम

0: उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में, तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से, ग्रेजिंग से भी बचें। आप अगर उससे उसमें क्या होता है, सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं, वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण, बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है, FMDHS BQ, इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं, और खाने की, भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो साइलेज और हे बनाना, जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसका, इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए, ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का, और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके

0: से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
1: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्य की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहां पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है?
1: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में, तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाए BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत, मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं वहाँ। अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ,

0: 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके ज़मीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया है, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार हो गया, 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
1: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
0: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2 से 3 बार जुताई करके पटा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पर लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज़्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा, जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
1: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
0: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं, तो चेना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये तमिलनाडु की, हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151 TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं, इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7 जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7, इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम में, खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है, हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है, 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है, आप श्री अन्य की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने

0: खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इसमें 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,4-D दवा नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D हम लेकर के जैसे उसका रिकमेंडेशन 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,4-D जो 58% इसी का आता है उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें, और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता है। बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों, जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों, आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2 भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए 1 बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद, और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा,
1: जी, जा रहा है, जी। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: उन्नत कृषि।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया।
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है HPV टीका किस लिए लगाया जाता है। दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है। जी हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण

आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2,

राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगाध गोभी टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान कंथली मालभोग चिनिया G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन रोबस्टा बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद 500 ग्राम अरंडी की खली 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें पशुओं में PPR MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किसान भाई बहनों को

0: संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू, नमस्कार सभी को।
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं, तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से

लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं। पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं, यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर। तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपके सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए, क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं, उससे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने। और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया, बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बन लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं, आप उसकी स्पेसिंग 20 into, मतलब 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी
फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम, पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम एमओपी यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको

0: वैसे डालना है, तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है यानी जब उसकी फलियां आती हैं तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में, वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, पूसा RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे अपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: या ना।
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा

0: अच्छा
1: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं काफ़ी हटकर एक अलग विषय, और वो हमारा विषय है आज सिंदूर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे श्रोतागण हैं वो समझते होंगे भाई सिंदूर को बस किसी केमिकल या रंग को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी भी खेती आप कर सकते हैं, इसके भी पौधे तैयार किए जाते हैं, और पूरी प्रोसेस को वैज्ञानिक तरीके से कैसे बनाया जाता है सिंदूर, आज वो सारी बातें लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर वी साजिता बानू। और मैडम मैं आप सभी को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और पूरी जानकारी आज विस्तार से हम उनसे जानेंगे कि सिंदूर की खेती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद अनु।
5: मैडम बिहार में सिंदूर की खेती की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
7: बिहार में सिंदूर की खेती इसीलिए इसका ज़रूरत हो रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे जो नेचुरल कलर है, जो प्राकृतिक रंग है, इसका आज के डेट पे बहुत ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो भारत में कहीं ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो बंद कर दिया गया है सिंथेटिक कलर उसके, और उसके बजाय सिंथेटिक कलर के बजाय प्राकृतिक रंग को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो जैसे कर्नाटका है, वहाँ पर प्राकृतिक रंग का पूरी तरह से इस्तेमाल करने को कहा गया है। और बिहार में जैसे आप देखेंगे जो सिंदूर है, इसके 2-3 पौधे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन जो है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान पे रखते हुए जहाँ पे ऐसा एक स्टेट जहाँ सिंदूर का इतना महत्व है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मैंने देखा है जहाँ पे सिंदूर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा में सिंदूर की काफ़ी उपयोग होता है, और इसी तरह से होली है जहाँ पे रंग प्राकृतिक रंग की इस्तेमाल की ज़रूरत है, और मेन जो खाने पीने में जो आप रंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अगर आप सिंथेटिक कलर्स यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत तरह की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर उसमें से एक बीमारी है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंदूर की खेती बिहार में हमें शुरू करनी चाहिए, और हम लोगों ने इसको कहीं हद तक हम लोगों ने इस पर काम भी

0: कर दिया है, पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं।
1: अब हम बात करना चाहेंगे बिहार क्षेत्र की, तो मुख्यतः आपने बिहार क्षेत्र को इसकी खेती के लिए क्यों फोकस?
0: जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऑलरेडी इसकी खेती की जाती है, और बिहार एक ऐसी रीजन है जहाँ पे अब तक इसकी खेती की शुरुआत नहीं हुई है। तो अब समय आ चुकी है जहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसकी खेती को शुरुआती तौर पर शुरुआत करना है।
1: जी, तो अभी तक बिहार में सिंदूर की खेती नहीं की गई थी, लेकिन अब इस पर रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्द बिहार क्षेत्र में भी सिंदूर की खेती की जाएगी। श्रोताओं, अब हम थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। तो पौधा इसका हम कैसे तैयार करेंगे?
0: अच्छा, इसका जो पौधा है, देखिए इसके तो आप मेनली इसको बीज से भी पौधा तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीज से पौधा जो तैयार करते हैं इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे मेन इसकी जर्मिनेशन पे अगर हम बात करें तो इसकी जो जर्मिनेशन है काफ़ी लो है। जो सीड होती है सिंदूर की ये काफ़ी हार्ड होती है और बहुत कम जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो हमें पाया गया है। तो हमने और दूसरे इसका जो है अल्टरनेटिव ढूंढा है जिसपे हम टिश्यू कल्चर पे भी काम कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने कुछ हद तक सफलता हासिल किया है।
1: अब इसके रखरखाव के बारे में बात करते हैं। पौधे तो हम लगा लेंगे जो भी वैज्ञानिक तरीका है उसे, लेकिन अब इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, तो किस प्रकार हमें इसकी देखरेख करनी चाहिए?
0: जो मेंटेनेंस है, आपको जो इनिशियल टाइम है, जो शुरुआत में क्या होता है, जो जैसे बीज से आपका पौधा जैसे जर्मिनेट होती है, तो उस समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीज को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो उस वक्त बारिश होना बहुत ज़रूरी है। बरसात के मौसम पे इस बीज को जर्मिनेट करते हैं हम। अगर गर्मियों के मौसम पे ये बहुत जब सीड अगर जर्मिनेट कर भी जाता है तो ये बचता नहीं है और ये डेथ कर जाती है। और इसमें एक बार आपकी सीड अगर जर्मिनेट हो भी जाती है तो कुछ जैसे शुरुआत में आपको इस जैसे कंटिन्यूसली इसको पानी देना, दिन में दो बार आपको इसमें पानी देना पड़ता है, और जैसे एक साल तक तो पूरा इसको मेंटेन करना पड़ता है आपको, और जैसे एक बार जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो आपको इसकी मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस पे भी ये काम करता है, ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है।
1: जी, हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। मैडम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें?
0: जैसे आप, अच्छा क्वेश्चन है अनु आपका। तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी का ये मेन जो है हमारा टिश्यू कल्चर है। जैसे सभी को पता है टिश्यू कल्चर जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग इसके प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों और बहनों को जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू जब हम पौधा तैयार करेंगे तो इसे हम कभी भी ये पौधा उनको दे सकते हैं। जैसे अगर हम सीड के थ्रू अगर इसे जर्मिनेट करते हैं तो हमें बरसात के दिनों ही इसको जर्मिनेट करना पड़ता है, तो उस ये सब समस्या हमें नहीं देखना होगा। और हम जो है थ्रू आउट द ईयर साल भर हम पौधा जो है अपने किसान भाइयों और बहनों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और दूसरी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम ये जो प्राकृतिक रंग है प्लांट को प्लांट है उसमें से ना लेकर हम उसको अपने लैब में ही प्रोड्यूस करें, ये भी हमारी कोशिश है जिस पे हम काम कर रहे हैं।
1: और इसके उपयोग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
0: जी, जैसे मैं आपको बता दूं, जो सिंदूर है इसके बीज, ये जो पौधा होता है इसके जो बीज होते हैं इसमें से इसका रंग को निकाला जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है ये मेनली जो है अगर आप देखो तो खाने जो खान पान है आपके उसमें जो प्राकृतिक रंग के इस्तेमाल होता है उसमें ये यूज़ होता है। और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स में जैसे लिपस्टिक में आप इसका यूज़ किया जा सकता है, और जैसे इसका सिंदूर जो आप लगाते हैं वो उसमें टीका इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेनली अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो जो ये कमर्शियली ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे इसका पूरा इस्तेमाल जो वो करते हैं वो खाने पीने के लिए करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे आप लोग जो अमूल बटर खाते होंगे और जो भी बटर आप खाते हैं यहाँ पर, जो हमारे बिहार में जो सुधा डेयरी काफ़ी फेमस हो रखी है, अगर आप उनके भी बटर अगर आप देखो तो उसमें जो प्राकृतिक

0: रंग की इस्तेमाल हुई है। अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा पैकेट में एनाटो। एनाटो जो है ये सिंदूर का जो है इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नाम है। जैसे सिंदूर जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम एनाटो के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप कुछ बटर के पैकेट में भी अगर आप देखेंगे जो पीले पीला जो कलर होता है बटर का, वो इस सिंदूर का ही रंग होता है जिसे हम एनाटो भी कहते हैं।
1: जी, तो अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा इससे?
0: देखिए, सबसे पहला तो ये लाभ होगा हमारे किसान भाइयों और बहनों के कि वो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो काम कर रहे हैं, कि वो प्राकृतिक रंग को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप शुरुआती दौर में आपको इसकी मेंटेनेंस है और उसके बाद ये ज़ीरो मेंटेनेंस है, तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पे इसकी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार में खासकर मुझे लगता है कि आप इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको बहुत लार्ज एरिया में अगर कल्टीवेट करते हैं, इसकी फार्मिंग करते हैं, तो इसको हम आगे चलकर कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ में कनेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं जहाँ पे इसकी डिमांड है। हालांकि मुझे लगता है कि बिहार में भी इसका काफ़ी उपयोग है, जहाँ जैसे सिंदूर जो नेचुरल सिंदूर है वहाँ पर, और तो बिहार में ही पहले इसकी इस्तेमाल की जा सकती है और अदर स्टेट में भी दे सकते हैं हम इसको, कुछ फैक्ट्रीज में भी इसको हम कनेक्ट करके दे सकते हैं जहाँ पे आजकल एनाटो जो है ये सिंदूर जो है काफ़ी ग्रोइंग है। पिछले सालों से भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डिमांड है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि ये जो नेचुरल जो केसर का जो रंग है ये केसर को रिप्लेस कर रहा है। तो हम जो ये सिंदूर से हम तीन तरह के रंग को निकाल सकते हैं, जैसे नारंगी, लाल और पीला। तो ये और केसर जहाँ पे बहुत महंगा होता है, ये जो सिंदूर का रंग है ये काफ़ी आपको सस्ते में मिल जाती है।
1: जी, और अगर हम इसके फल देने की बात करें तो ये जो पौधा हम लगाएंगे वो कितने साल बाद फल देगा?
0: जैसे अगर आप इसके पौधा लगाते हैं तो 3 साल बाद आप इसका फल को आप ले सकते हैं, और फल से आप उसके जो बीज उसके अंदर होती हैं, जिसमें एक फल में आपको 40 से 50 बीज मिल जाते हैं, तो उस बीज से आप इसका रंग निकाल सकते हैं।
1: जी, तो एक पौधा वो कितने साल तक जीवित रहता है, इसकी आयु कितनी रहती है?
0: लगभग 20 साल तक ये पौधा रहता है और जीरो मेंटेनेंस पे ये रहता है।
1: किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आज आपने सिंदूर की खेती के बारे में जाना, किस प्रकार सिंदूर बनता है और प्राकृतिक तरीके से कैसे बनाया जा सकता है सिंदूर, और हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे आय का स्रोत बन सकता है, व्यवसाय का स्रोत बन सकता है। आज पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे बीच लेकर आई थी डॉक्टर वी शाजिदा बानू, और ये पूरी जानकारी आप सभी और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हम समय समय पर अपडेट आपको करते रहेंगे सिंदूर की खेती के बारे में। और फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी।

0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में

10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
1: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
2: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है।

0: खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
1: तो मैम, खरीफ प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो आसानी से किया जा सकता है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या

0: क्या उपाय कर सकते हैं?
1: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
0: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
1: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
1: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडार

0: भंडारण नहीं किया जा सकता है, इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
7: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
7: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है, और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है, जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
8: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
4: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
9: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
9: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है, और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है, और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है।
1: बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर

निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था, अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं, अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर में जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए, आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी
साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए पर

अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। पीरियड्स में हाँ प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज़ करना वो रिस्की होता है, और ख़ास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ़ किए रीयूज़ करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ़ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखा कर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज़ है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है। तो इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं। होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं,

0: आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिलाएं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर, और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं, और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it

0: saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़

है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस एन रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
1: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है। यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बभनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
0: जी डॉक्टर साहब, तनाव भेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: तनाव भेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की

0: अति कोमल में बेधक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
1: जी।
0: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्म जहां साल में धान की फसल दो या अधिक बार ली जाती, तना बेधक का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम जानना चाहते बताना चाहते हैं, इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काटकर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपायरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना बेधक का बचाया जा सकता है। तना बेधक व्यस्त को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना बेधक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना बेधक की आर्थिक क्षति होने पर कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफ्रॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें
1: जी। तो ये बात हो गई तना बेधक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। अब मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए।
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रुपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 ml या थायोमिथोएक्जेन दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर

0: छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसके इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है, उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से, ताकि वयस्क कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हील दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोल डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें, जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें?
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिससे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का वयस्क हल्का बादामी रंग का होता है, ऐसा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। वयस्क मादा पत्तियों के सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा, जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं, फसल ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेड़ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें, ताकि इस कीट के वयस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा क्लोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1,000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी। जी डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक

0: कीट ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
1: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या एक वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहां पहुंचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों में मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
6: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
6: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
7: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
8: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
8: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक। आइए

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता श्री मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और आज हमें बताएंगी सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन के बारे में। तो क्या महत्व है और कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, बीज बुआई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, सारी बातें आज मैडम से जानेंगे हम। मैडम, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैडम, तो सबसे पहले सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दें।
1: किसान भाइयों, मैं आपको जैसा कि अनु बता रहे थे कि इसका क्या महत्व होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले महत्व के बारे में बताती हूँ। सब्जी की नर्सरी तैयार करना सब्जी उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पौध तैयार करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि नर्सरी में पौध तैयार करते समय उचित सावधानी व उन्नत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे तैयार होने वाली पौध व उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। टमाटर, मिर्च आदि फसलों की पौध तैयार करते समय कृषकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखने से तैयार होने वाली पौध में विषाणु जनित बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे मुख्य खेत में पौधरोपण के बाद बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद कृषकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कृषकों को पौध तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रहे कि नर्सरी के लिए ऊंचाई वाला स्थान उपयुक्त रहता है। समतल व अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि श्रेष्ठ होती है, जहां सिंचाई का साधन भी समीप हो एवं सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो। चयनित स्थान यथासंभव प्रतिकूल मौसम जैसे लू, शीतलहर एवं पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भूमि की तैयारी पौधशाला के लिए बहुत महत्व रखता है। भूमि की अच्छी तैयारी के लिए नर्सरी क्षेत्र की गहराई जुताई करें, मिट्टी को ढेले रहित एवं भुरभुरी बनावें व कंकर, पत्थर, खरपतवार आदि अलग करें। अच्छी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय ऊपरी सतह में मिलावें। पौध तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी छोटी क्यारियां उपयुक्त रहती है। सामान्यतः 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां उपयुक्त रहती है, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी बेड्स की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं हो, ताकि सिंचाई, खरपतवार हटाने एवं पौध संरक्षण आदि क्यार करने में सुविधा रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र 1/20 भाग में नर्सरी लगाई जाती है। टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर तैयार क्षेत्र में पौध लगाई जाती है, जबकि 1 हेक्टेयर प्याज, बैंगन, मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए 500 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। तैयार क्यारियों में बीज की बुआई से पूर्व भूमि जनित बीमारियों व कीटों आदि से पौधों को बचाने के लिए 4 से 5 ग्राम थायराम या कप्तान व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% कण प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। नर्सरी में बुआई हेतु बीज में आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एवं सही किस्म का स्वस्थ बीज होना चाहिए। अतः बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए क्षेत्र विशेष के लिए उद्यान विभाग व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई किस्मों के बीज को ही बुआई के काम में लें, साथ ही बीज

कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। बीज की बुआई ठीक समय पर करें। विभिन्न सब्जियों के लिए बीज की बुआई का समय अलग अलग होता है, जैसे कि टमाटर फसल के लिए वर्षा मौसम में बुआई हेतु जून जुलाई में करना चाहिए तथा 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वसंतकालीन टमाटर हेतु बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है तथा 150 से 250 ग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन बैंगन हेतु बुआई जून से जुलाई में करें तथा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। वर्षाकालीन तथा वसंतकालीन मिर्च की बुआई का समय मई जून होता है तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगेती फूलगोभी की बुआई का समय मई जून तथा बीज की आवश्यकता 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की होगी। प्रति हेक्टेयर मध्य फूल गोभी बुआई हेतु 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी तथा बुआई का समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। पछेतु फूल गोभी के लिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रखें तथा 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी का बुआई का समय सितंबर दिसंबर है तथा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। रबी प्याज की बुआई अक्टूबर नवंबर में करें तथा इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ प्याज की बुआई जून माह में करें तथा इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की बुआई से पहले उसे उपचारित करना आवश्यक होता है। उन्नत किस्म का बीज लेकर बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कप्तान प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। तैयार नर्सरी बेड्स में बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए, जिससे निराई गुराई, उर्वरक प्रयोग एवं पौध संरक्षण कार्य आसानी से किए जा सके व अच्छी स्वस्थ पौध तैयार हो। ध्यान रहे, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होवे। बहुत छोटे बीजों का उनकी मात्रा से दुगनी रेत मिलाकर बोना चाहिए ताकि क्यारियों में इनका वितरण सामान्य रूप से होए। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। इसके लिए बीज बोने के पश्चात उनके ऊपर खाद एवं रेत 1:1 के मिश्रण की हल्की परत बिछा दी जाती है ताकि सिंचाई करते समय बीज इधर उधर नहीं फैल पाए। बीज बुआई के तुरंत बाद झारे से सिंचाई करें। सर्दियों में कम तापक्रम के समय बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए क्यारियों को हल्के घास फूस से ढक देना चाहिए, परंतु अंकुरण होते ही इसे तुरंत हटा देना अच्छा होता है। अब सिंचाई की बात करें तो सब्जी नर्सरियों की क्यारियों में सिंचाई सामान्य रूप से तथा धीरे धीरे फुहारे से करना चाहिए, जिससे मिट्टी बहे नहीं। पौध बड़ी होने पर नर्सरी बेड्स के चारों तरफ छोड़ी हुई खाली जगह में सिंचाई के लिए पानी को नर्सरी क्षेत्र से बाहर रोककर क्यारियों में पानी धीरे धीरे जाने दें। तेज हवा बहाव के साथ सिंचाई ना करें। सिंचाई करते समय नर्सरी बेड्स के ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। सिंचाई के बाद मिट्टी में पपड़ी आने पर गुराई करें, इससे जड़ों में वायु संचार बढ़ता है व खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। पौध संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में बीजों की बुआई के 10 से 12 दिन बाद जड़ गलन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए कप्तान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों की जड़ों के पास झाड़े से छिड़काव करें। बीज बुआई के 18 से 20 दिन बाद रस चूसने वाले कीड़ों से पौध को बचाने के लिए डायमेथिन

0: 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च आदि में विषाणु रोग के से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी, रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलते हैं। अतः नर्सरी तैयार करते समय पौध को इसके प्रकोप से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा रोगों का संक्रमण होने पर बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बाद भी इन रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका प्रकोप कम करने हेतु नर्सरी में नायलॉन जाली का उपयोग प्रभावी पाया जाता है, जिससे बेड्स को बीज की बुआई उपरांत 50 मैश की नायलॉन नेट से ढक दिया जाता है। इसके लिए नर्सरी के दोनों तरफ अर्धचंद्रकार तार लगाकर उस पर 50 मैश का नायलॉन जाली से नर्सरी की बेड्स को ढक लेते हैं, या फिर नर्सरी के चारों कोनों पर खूंटे गाड़ कर उन पर 50 मैश की जाली बिछाकर ढकने से ऐसी व्यवस्था करें कि जाली उड़े नहीं व हमेशा पौध क्षेत्र को ढकी रहे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जाली चारों तरफ से जमीन में दबी रहे, ताकि रस चूसने वाले कीट जो उपरोक्त विषाणु जनित रोग फैलाते हैं का प्रवेश ना हो सके। अब पौध का स्थानांतरण। पौध लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या फिर 4 से 6 पत्तियों की हो जावे, तब इसे मुख्य खेत में लगाएं। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि में यह अवस्था सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में आ जाती है, जबकि प्याज की पौध लगभग 8 सप्ताह में तैयार होती है। पौधे को मुख्य खेत में लगाने से पूर्व उसकी हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। इससे पौधे मजबूत हो जाते हैं व उनमें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए पौध तैयार होने के 4 से 5 दिन पहले नर्सरी में पानी बंद कर दें, लेकिन पौध उखाड़ने से 24 घंटे पहले बेड्स में अच्छी तरह पानी देवे, जिससे पौधे उखाड़ने समय जड़ों को कम से कम नुकसान हो। रोपाई से पूर्व पौध की जड़ों को फसल की सिफारिश अनुसार कीटनाशी रसायन में 15 से 20 मिनट तक डुबें। तैयार पौधे को मुख्य खेत की बनी हुई क्यारियों में फसल विशेष की सिफारिश के अनुसार निर्धारित फसलों पर कतारों में लगाएं व पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौध रोपाई का कार्य शाम के समय करना ठीक रहता है, जिससे रात की ठंडक में पौध स्थापित हो जाएं। इस प्रकार कुशल नर्सरी प्रबंधन से अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों व अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, यहाँ पर आपने आज जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का यह वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा। देश जीतेगा।

0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है।

इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ करें।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी

0: जानते ही हैं
1: जी,
0: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
0: जी
1: तो बिमलेश जी, करते हैं शुरुआत। जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
0: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉनबील मेले की।
1: जॉनबील मेला?
0: जी।
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
0: जी।
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
0: अजीत जी, ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है?
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही। लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: विमलेश जी, लेन देन तो होता था लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉनबील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉनबील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी।
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉनबील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जॉनबील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉनबील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉनबील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वलरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
3: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
4: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
3: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
4: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
4: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा
1: आजा। नमस्ते सर पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
5: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
5: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना। हाँ, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
4: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
6: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते
5: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
6: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
6: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
0: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
6: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
6: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
6: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
6: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
6: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ। पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल। ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
6: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये है

0: चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
0: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
0: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
0: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
1: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमले।

0: चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांग केन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: Neha and Children, recorded by Butty Langlingdo, produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, आज ये फार्मिंग की बात करें हम तो इसमें कुछ नए नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, कुछ नए नए तरीके आ रहे हैं खेती करने के, और उसी में एक बहुत ही अच्छा तकनीक है, वो है टिश्यू कल्चर। और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, और हमारा विषय जो है बहुत ही अच्छा है, केले के टिश्यू कल्चर से पौधे लगाने के फ़ायदे। बिल्कुल, और ये जो बातें हैं, जो चर्चा है, वो लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर तुषार रंजन जी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
7: डॉक्टर साहब। ये सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बता दीजिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है।
9: देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में ढेर सारा पौधा तैयार करते हैं
7: जी।
9: अगर हम बोलें तो इस विधि में हम पौधे के किसी भी अंग को, चाहे वो अंग उनका पत्ती हो, तना हो, जो भी हो, पौधे के किसी भी एक पार्ट को, एक अंग को हम कांच के एक पात्र